ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 जून सन 2026, सुबह के 8:55 होने को हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

सबसे पहले आप सुनेंगे आज सुबह 9:10 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस, और उसके बाद होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना 9:20 पर। 9:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए में राजस्थान न्यायिक सेवा में चयनित श्री शुभम भाटी से संजय दत्त की बातचीत।

0: सुबह 10 बजे आप सुनेंगे गाने पुराने जमाने के, और उसके बाद में 10:30 पर गाने नए तराने नए। आज दोपहर 3 बजे आप सुनेंगे श्री महर्षि जनार्दन गिरी पुष्टिकर माध्यमिक विद्यालय नागौर में विधायक कोष से निर्मित कंप्यूटर कक्ष के लोकार्पण कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। और उसके तुरंत बाद यानी 3:30 पर आप सुनेंगे एक और रेडियो रिपोर्ट, सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान बड़ी खाटू में आयोजित कबीर जयंती समारोह की रेडियो रिपोर्ट। किसान मणि आज आप सुनेंगे 4 बजे। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रम। लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी। प्रदेश के राष्ट्रीय बाघ अभयारण्यों के कोर एरिया कल से पर्यटकों के लिए 3 महीने तक बंद रहेंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में शुरू होगा और प्रदेश भर में उमस भरी गर्मी से जनजीवन बेहाल। 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ, और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने

0: और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निवेश की मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं और इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया था। इसी वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का आज से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। ये आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य कल से पर्यटकों के लिए 3 महीने तक बंद रहेंगे। वन्य जीवों का प्रजनन काल और मॉनसून सत्र शुरू होने के कारण पर्यटन गतिविधियों में बदलाव किया गया है। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में पर्यटक नहीं जा सकेंगे, हालांकि बफर जोन में 2 रूट सैलानियों के लिए खुले रहेंगे। दूसरी ओर सवाईमाधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में आज वर्तमान पर्यटन सत्र का आखिरी दिन है, जिसके चलते वहां बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं। और अधिक ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता।
1: बीते कई दिनों से देशी विदेशी तथा खास और आम सैलानियों की भारी भीड़ है। आज अंतिम दिन बाघों के दीदार के लिए पर्यटकों की विशेष भीड़ देखी जा रही है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के दिशा निर्देशों तथा मानसून के चलते कल से आगामी 3 माह के लिए प्रमुख भाग जोन नंबर 1 से 5 में पर्यटन पर पूरी तरह रोक रहेगी। हालांकि पूर्व की भांति जोन नंबर 6 से 10 में पर्यटन चालू रहेगा। अंतिम दिन बाघों के दीदार के लिए आज स्थानीय लोगों की भी विशेष भीड़ रहेगी। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ भी संबोधित करेंगे। इस वर्ष सम्मेलन की थीम विकसित भारत 2047 AI enabled, data driven and secure digital governance रखी गई है। सम्मेलन में डिजिटल शासन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तकनीकी पहलुओं पर देश भर के विशेषज्ञ मंथन करेंगे। सम्मेलन के दूसरे दिन केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह देश भर में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विजेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। कोटा बूंदी क्षेत्र को नशा मुक्त करने के लिए अगले 3 महीनों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा में जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अपराध नियंत्रण के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने और कैमरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने की बात कही। इससे पहले श्री बिरला ने श्रीनाथपुरम स्टेडियम में विभिन्न खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित हों, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है।
2: लेकिन यहाँ बड़ी संख्या के अंदर लोग घूमने भी आते थे और इसलिए उनके लिए भी एथलेटिक का एक रास्ता बने और इसलिए 900 मीटर का ये वॉक वे भी उनके लिए बनाया ताकि खिलाड़ी भी परेशान है वॉक। और इसी स्टेडियम में सारी सुविधाएं हैं, चाहे आप देखो शानदार रूप से बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, जिम हो, लॉन टेनिस हो, सारी सुविधाएं एक स्टेडियम की एक छत के नीचे, ताकि खिलाड़ी बहुआयामी प्रतिभा से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले सके। आज जिम भी है।
0: राज्य सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत चूरू जिले के लिए राज्य वृक्ष खेजड़ी को एक जिला एक वनस्पति के रूप में चयनित किया गया है। उपवन अधिकारी ने बताया कि जिले की विभिन्न पौधशालाओं में इस वर्ष 1.5 लाख से अधिक खेजड़ी और उसकी सह प्रजातियों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही वन विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर खेजड़ी वाटिकाएं भी बनाई गई हैं।
3: इसके लिए चूरू वन विभाग 1.5 लाख के आसपास खेजड़ी उसकी सह प्रजातियों की कर रहा है, जिनका वितरण 5 जून से प्रारंभ हो गया है। ये वितरण आमजन व अन्य विभाग के लिए है, उचित रूपे है विभागीय योजनाओं के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत हमने इसी पंच गौरव योजना के 2026 के अंतर्गत हमने 5 खेजड़ी वाटिकाएं बनाई है, जिन जो कि चूरू, तारानगर, राजगढ़, सरदारसर और रतनगढ़ में।
0: और अब मौसम। प्रदेश में उमस भरी गर्मी से जनजीवन बेहाल है। राज्य में अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। औसत तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर कल सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं चूरू और बीकानेर में 42.8, बाड़मेर में 42.1 और जैसलमेर में 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 3-4 दिन अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। इस दौरान हवा में नमी की मात्रा अधिक होने से उमस का असर बना रहेगा। इस बीच राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगामी दिनों में सक्रिय होने के आसार हैं। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभाग में अगले 3-4 दिन गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी है। प्रदेश के राष्ट्रीय बाघ अभयारण्यों के कोर एरिया कल से पर्यटकों के लिए 3 महीने तक बंद रहेंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में होगा। और प्रदेश भर में उमस भरी गर्मी से जनजीवन बेहाल। 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर 9:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस।
5: एपिसोड नंबर 143

राजा दशरथ ने कैकेयी को कई प्रकार से समझाया, अनुनय विनय की कि वो विवेक से सोच समझकर दूसरा वर मांगे, क्योंकि राम के बिना उनका जीवन नहीं रह पाएगा। किंतु राजा के कोमल वचन कैकेयी की क्रोधाग्नि में मात्र आहुति का काम कर रहे हैं। रानी की एक ही टेक है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहां आपकी माया नहीं चलेगी। या तो जो वर मैंने मांगा है वो दे, नहीं तो ना ही करके अपयश के भागी बने। सवेरा होते ही यदि राम मुनिवेश धारण करके वन को नहीं जाते तो हे राजन, निश्चय जानिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। इतना कहकर कैकेयी ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे क्रोध की नदी उमड़ी हो। दो वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का हठ उस नदी की तीव्र धारा है, मंथरा की प्रेरणा भंवर है, और क्रोध रूपी वो नदी राजा दशरथ को मूल रूप से ढहाती हुई विपत्ति के समुद्र की ओर ले चली है। राजा ने समझ लिया कि स्त्री के रूप में मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है। उन्होंने कैकेयी के चरण पकड़कर विनती की कि वो सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी न बने, वो उनका मस्तक मांग ले जो वो शीघ्र दे देंगे, राम के विरह में उन्हें न मारें। किंतु राजा की गुहार व्यर्थ हुई। उन्होंने जान लिया कि रोग असाध्य है। अत्यंत आर्तवाणी से हा राम कहकर वो पृथ्वी पर गिर पड़े।

अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमे चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह है पहली प्रस्तुति। आवाज हरिओम शरण की है।

के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

अभी आपने सुनी ये भक्ति रचना जगदीश सिंह की आवाज में। लीजिए सुनिए वंदना में ये अगली भक्ति रचना, आवाज पंडित छन्नूलाल मिश्रा की है।

इसी भक्ति गीत के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल। सुबह के 9:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। इनसे मिलिए के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजस्थान न्यायिक सेवा में चयनित श्री शुभम भाटी से संजय दत्त की बातचीत।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आपको जैसे कि पता है कि हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आपको विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराते रहते हैं, तो आज इसी कड़ी में हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। हाल ही में घोषित RJS परीक्षा 2025 में सफलता का परचम लहराने वाले शुभम भाटी जी, जो कि नागौर जिले से ही आते हैं, आज हमारे स्टूडियोज में आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियोज में।
1: धन्यवाद सर।
0: तो श्रोताओं, बातचीत का सिलसिला शुरू करें, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जब RJS परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित हुआ तो वो एक ऐसा पल होता है कि पता नहीं क्या होगा, किस तरीके से रिजल्ट आएगा, तो वो पल कैसा था?
1: सर, वो जो पल था वो बड़ा संतुष्टि का था, क्योंकि पिछले वर्ष जो रिजल्ट आया उसमें जरूर थोड़ी सी मायूसी हुई, क्योंकि मैं 4.5 नंबर से रह गया था, बट इस बार जब रिजल्ट आया तो संतुष्टि थी।
0: जैसे कि न्यायिक सेवा की जो परीक्षा होती है सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, तो किस तरीके से आपने अपनी दिनचर्या को मेंटेन किया, क्या आपका मतलब शेड्यूल रहता था, किस तरीके से इस तैयारी को किया आपने, क्या कोई सीक्रेट मंत्र था इसका?
1: सर, क्या है कि इसका बड़ा ओपन मंत्र है कि आप को बहुत कंसिस्टेंट होना पड़ता है। तो मेरी जो दिनचर्या थी वो सुबह से ही चालू हो जाती थी, सुबह 5-6 बजे जनरली मैं उठ जाता था और फिर अपना सारा काम एक बार पूरा करके, ताकि बीच में कोई भी ज्यादा ब्रेक ना लेना पड़े, तो मैं फिर अपनी पढ़ाई चालू कर देता था।
0: तो शुभम जी, तैयारी के दौरान कई बार मन हमारा ऐसा विचलित होता है, असफलता का डर भी हमारे सामने होता है, तो ऐसे में तो आपने खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा?
1: सर, एक तो मैं क्या कविताएं और कहानियां पढ़ने का शौकीन हूँ, कविताएं जो जनरली मोटिवेशन वाली होती है उनको पढ़ता था, और मेरे जो दोस्त हैं वो जो साथ में तैयारी करते थे उन्होंने हमेशा मेरे को मोटिवेट किया, और परिवारजनों का तो हमेशा से सपोर्ट रहा ही है।
0: अब आज के जो समय की बात करें, क्योंकि युवा जो है आजकल, एक तो मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के युवाओं के सामने कि एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के साथ रहें, क्योंकि डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस और ये सारी समस्याएं बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। साथ ही एक चैलेंज और है सोशल मीडिया से दूरी बनाना, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग हो गया है युवाओं के लिए खासतौर पर। तो तैयारी के दौरान आपने फ़ोन, इंटरनेट, इन सबसे दूरी किस तरीके से बनाई?
1: जो फ़ोन और सोशल मीडिया है मैं उसको यूज़ करता था, कई बार एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी यूज़ करता था, बट ये हमेशा मैंने ध्यान रखा कि वो मुझे कभी कंट्रोल ना करे। और जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात है, अपने दोस्तों से, अपने परिवारजनों से लगातार बात करते रहें, उन्हें अपनी जो भी तकलीफ है वो बताते रहें।
0: तो मतलब आपका कहना है कि सामाजिक संबंधों को साथ साथ भी मेंटेन करना है, और इसके अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज हैं, जो मतलब आपने एकेडमिक्स के साथ साथ उन हॉबीज को रखा?
1: जैसे मैं बैडमिंटन खेलने जाता था जब भी प्री और इंटरव्यू का टाइम होता था, मेंस में मुझे उसके लिए टाइम नहीं मिलता था।
0: वो कौन सा समय था या कौन सा मोड था जब आपने ये सोचा कि मुझे जज ही बनना है?
1: 10वीं के बाद में एक फील्ड चुनना था, तब मैंने क्लैट की तैयारी के लिए जोधपुर जाने का डिसाइड किया, उसके लिए प्रयास भी किए, लेकिन उसमें पहले प्रयास किया तो मैं असफल रहा, और फिर मुझे लगा कि अब मुझे समय उसमें नहीं लगाना चाहिए, कोई दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तब मैंने रूलेट के माध्यम से राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और जब कॉलेज में एडमिशन लिया तब ये निर्धारित किया कि 3rd ईयर के बाद से RJS की तरफ ही रुख करना है।
0: शुभम जी, जैसे कि राजस्थान जैसे राज्य में जहाँ पर ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा को तवज्जो देते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र है राजस्थान, और अपने नागौर में तो मारवाड़ी का प्रचलन है आप जानते ही हैं, तो आपको नहीं लगता कि RJS परीक्षा में ये हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, क्योंकि कानून की जो पढ़ाई है वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही है, तो ये आपके सामने कोई चुनौती रही थी इस प्रकार की कि इंग्लिश मीडियम में आप गए तो हिंदी माध्यम में होने, अगर छात्र कोई हिंदी माध्यम का है और फिर वो RJS की तैयारी करता है तो उसके सामने कोई चुनौती आती है, कोई बाधा आती है इस तरीके की, आपको लगता है?
1: आपको एक इंसिडेंट बताऊं, जब 10वीं के बाद में हम ERU में जोधपुर में हमने एडमिशन लिया, तो वो पहला दिन ही था जब लगा कि जो चेंज आया है वो कहीं चैलेंजिंग ना हो हमारे लिए। 11वीं 12वीं हमने इंग्लिश मीडियम से की, 11वीं में बहुत दिक्कत आई, लेकिन धीरे धीरे लगातार अभ्यास से वो चीजें सही होती गई, और फिर जब LLB किया RU में जाके, तब ये समझा कि वो डिसीजन लेना कितना सही था, क्योंकि आगे फिर दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जो पूरी LLB थी वो इंग्लिश मीडियम से थी, आगे पेपर का जो मीडियम रखा वो भी इंग्लिश ही रखा। तो समय पे ये डिसाइड करना और उसकी तरफ लगातार काम करना बड़ा जरूरी था।
0: जी, तो आपकी इस सफलता के पीछे परिवार का कितना योगदान था, और जो नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, उनका कितना योगदान था, उसके बारे में जानना चाहूँगा। साथ में ये भी जानना चाहूँगा कि क्या इस प्रकार की कोई बैकग्राउंड आपकी, कोई पृष्ठभूमि थी कि न्यायिक प्रक्रिया, या तो कोई घर में कोई जज वगैरह रहे हों, या कोई कानून की पढ़ाई की हो, उन्होंने आपको प्रेरित किया हो, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: जहाँ तक बात करें परिवारजनों के सहयोग की, तो उनका हमेशा से यह था कि उन्होंने मुझे समय दिया, उन्होंने कभी भी किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं किया। और पहले तो इस फील्ड में आने का ही डिसीजन था, उन्होंने सपोर्ट किया और मुझे

0: LLB करने दी। और जहाँ तक पृष्ठभूमि की बात करें इस फील्ड में, तो मेरे पिताजी हैं जो जिन्होंने LLB की है, और मेरे बड़े भाई हैं कज़न जो अभी ADJ सुजानगढ़ हैं, पोस्टेड हैं। उनसे मैंने इंस्पिरेशन ली, उन्होंने मुझे गाइड किया इस दिशा में। और प्री मेंस या इंटरव्यू, तीनों जो स्टेज थे एग्ज़ाम के, उन्होंने हमेशा मुझे सही राय दी, और मेरी जो भी मेंटली जो भी मेरे सामने प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व आउट किया।
1: तो बात करें तैयारी की रणनीति की, तो जो प्री मेंस और जो इंटरव्यू है, तो इनकी तैयारी किस तरीके से आपने किया? अलग अलग तैयारी की थी या एक साथ ही तैयारी की थी?
0: मैं ये मानता हूँ कि पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, लेकिन इंटरव्यू जो है वो उसकी तैयारी सबसे पहले चालू होती है। आप मेंटली प्रिपेयर होना चाहते हो उस एग्जाम के लिए, जो थोड़ा सा, एक तो बहुत जल्दी होता है, 6 महीने के अंदर सारा प्रोसेस हो जाता है और टायरिंग भी है ही है। प्री के लिए पेपर सॉल्व करना, अलग अलग जुडिशरी के जितने ज़्यादा आप पेपर सॉल्व कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप माइनर डिटेल्स में जा सकते हो उन पे ध्यान देना, और मेंस के लिए लगातार लिखने की जो प्रैक्टिस है, और हिंदी का भी एक ऐसे का पेपर होता है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों अपनी समान उन पे ध्यान देना, और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करना। और आपने जो टेस्ट के पेपर लिखे हैं उनको लगातार देखते रहना कि क्या कमी है और कहाँ आप ध्यान दे सकते हो।
1: अब हम बात करें कानून की, जैसे कि राजस्थान की कानून व्यवस्था जो है उसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? जो स्थानीय कानून जो बने हुए हैं उनको किस तरीके से आपने तैयार किया? क्योंकि कानून बहुत सारे हैं और RJS के सिलेबस में स्थानीय कानूनों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तक पढ़ने पड़ते हैं, तो वो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए?
0: तो आपको लगातार अपडेट रखना पड़ता है। लोकल जो लॉस थे वो इस बार और बढ़ाए गए, पिछले बार 18 लॉस थे अगर मान के चले, तो इस बार उन्होंने 32 कर दिए उनको। तो लगातार उनको पढ़ते रहना, और जहां लगे कि अब संभव नहीं है उसको ज्यादा पढ़ना, तो आप बाकी पे ध्यान दें। एक अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आप छोड़ दें। ऐसी भी मेरी रणनीति रही थी इस बार। और जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं वो लगातार कोई वेबसाइट है या कहीं कोई बुक्स हैं उनमें आते हैं, तो उनको अपने नोट्स में या प्री और मेंस के जो भी आपके टेस्ट सीरीज के जो पेपर्स हैं उनमें आपको ऐड करने पड़ते हैं। वही है कि लगातार प्रयास और कंसिस्टेंसी है, वही जरूरी है, कमिटमेंट रखना जरूरी है।
1: शुभम जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि कानून की शब्दावली में बेयर एक्ट्स का बहुत जिक्र आता है। आम आदमी नहीं समझ पाता कि बेयर एक्ट होता क्या है, तो बेयर एक्ट क्या है इसके बारे में थोड़ा बताएं। फिर आपने जो तैयारी की उनको किस तरीके से आपने बेयर एक्ट का ज्ञान प्राप्त किया?
0: RJS की तैयारी में बेयर एक्ट एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, वो की टू सक्सेस है। अगर हम ये मान के चले बेयर एक्ट, उसकी बहुत भूमिका है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो बेयर एक्ट मस्ट है, वहां से तो क्वेश्चन आने ही है, और बड़ा मेजर पार्ट है वो बेयर एक्ट ही है, तो आपको वो बहुत ढंग से याद होने चाहिए। बेयर एक्ट का मतलब है कि जो कोई भी लॉ पास हुए हैं पार्लियामेंट से या स्टेट लेजिस्लेचर से, तो उनका जो मूल रूप है वो बेयर एक्ट है, उसमें बाकी कोई भी चीज नहीं होती है। तो वो बहुत जरूरी चीज है, और वही आप अगर आपका वो स्ट्रांग पार्ट है तो RJS में काफी हेल्प मिलती है उससे।
1: इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसा सवाल जो हमारे लिसनर्स के साथ आप साझा करना चाहें, जो बहुत ही आपको लगा हो कि बड़ा ही क्रिटिकल था, मेमोरेबल था, जो शेयर करने लायक है, आप हमारे लिसनर्स के साथ साझा करना चाहें, क्योंकि इंटरव्यू आपने दिया था इसका।
0: इस बार मुझसे पूछा गया था कि क्या आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं क्या, तब मैंने उन्हें बताया था कि मैं सोशल मीडिया का यूज नहीं करता, और उन्होंने पूछा था कि आप आगे करेंगे क्या, आप किसी ग्रुप्स में या उनका पार्ट बनेंगे क्या, तब मैंने मना किया कि मैं नहीं बनूंगा, और बोला कि अगर बनना पड़े तो आप क्यों उसका पार्ट बनेंगे। तब मैंने कहा अगर उस चीज का कोई पर्पज है, अगर ग्रुप्स में रहने का कोई पर्पज है, वो आगे जाके लीगल फील्ड में आने के लिए किसी को मोटिवेट करे या हेल्प करे, तब मैं उसका पार्ट बनूंगा, बट अगर कोई पर्पज नहीं है तो मैं उससे दूरी बनाए रखना ज्यादा उचित समझता हूँ।
1: शुभम जी, जैसे कि कानून की प्रक्रिया में क्या है कि देरी एक बहुत बड़ी चुनौती है, कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जब आप जज की कुर्सी पर बैठेंगे तो एक आम आदमी जो न्याय के लिए लड़ रहा है, तो आप अपने आप को कैसे देखते हैं कि कि किस प्रकार का आपका रुख होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए एक आम आदमी के प्रति, एज ए जज आप क्या सोचते हैं, क्योंकि जल्द ही आपको वो चेयर आप संभालने वाले हैं, तो आपका किस प्रकार का दृष्टिकोण रहेगा, क्या विजन रहेगा इस मामले में?
0: मानवीयता जो चीज है वो एक जज भी उससे दूर नहीं जा सकता, तो उनको आम नागरिकों की जो समस्याएं हैं वो ढंग से सुननी चाहिए। मेरी भी बात करें तो आप जितना ज्यादा हम्बल रहेंगे, जरूर आप एक पोस्ट पे हैं लेकिन उन सामने अगर एडवोकेट है या आम नागरिक है या कोई भी जो आपके सामने आया है, उसकी विचार, उसकी जो समस्याएं हैं वो उसकी जगह पे रह के अगर आप सोचें कि आप होते तो क्या करते या आपके साथ कैसा महसूस होता, तो वो बहुत जरूरी है।
1: आरजेएस का जो कैरियर है उसमें आप क्या सोचते हैं कि महिलाओं के लिए कैरियर कैसा हो सकता है, क्योंकि आज अगर बात करें तो महिलाएं भी समान रूप से, हमारी जो छात्राएं हैं वो भी समान रूप से कड़ी टक्कर दे रही हैं, तो उनके लिए ये करियर ऑप्शन कैसा है?
0: वास्तव में ये जो करियर ऑप्शन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले बैच की बात करें तो जैसे 222 सीटें थी तो लगभग 150 के करीब लड़कियां ही थी, और इस बार वाले बैच में भी देखें तो 44 सीटों में से लगभग 28 महिलाएं हैं, तो उनके लिए तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी कोई भी आए इस सेवा में, महिला आए पुरुष आए, वो सेवा भाव से आए, यही मैं चाहता हूँ कि सेवा ही इस सर्विस का मूल है।
1: अंत में हम ये जानना चाहेंगे, जो युवा हैं एक दो प्रयास करने के हार मान चुके हैं और तैयारी छोड़ चुके हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा, क्या रणनीति उनको अपनानी चाहिए, किस प्रकार वो नए सिरे से फिर शुरू करें?
0: सर, इसमें आप एक प्रयास और दे खुद को, और जहाँ तक हो सके परिवार अपने बच्चों को सपोर्ट करें कि हाँ, अगर वो मेंस दे रहा है या इंटरव्यू दे रहा है तो जरूर उस पोस्ट के लिए बना है। खुद भी ये समझे कि एक और प्रयास देना ही चाहिए खुद को, बाकी अगर सब कुछ होने के बाद में भी, पूरा प्रयास करने के बाद में भी आप इस सर्विस में ना आए, तो बाकी आपके लिए और भी दूसरे फील्ड्स हैं जो आपका नॉलेज कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा, वो हमेशा काम आएगा। तो इस गर्व से दूसरी सर्विस या लिटिगेशन में जाएं कि हाँ, मैंने जितना हो सके प्रयास किया था ईमानदारी से।
1: तो एज ए आरजेएस आप राजस्थान की न्याय व्यवस्था में क्या बदलाव देखना चाहेंगे?
0: एक तो जो पेंडेंसी है वो जल्दी खत्म हो, उसकी तरफ प्रयास हो, और जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो और बढ़ाई जाए कोर्ट्स में, और बाकी बार एंड बेंच का जो रिलेशन है वो और मजबूत हो, यही मैं चाहता हूँ।
1: अंत में जो युवा, हमारे युवा साथी हैं वो आपको सुन रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा अंत में, आसान टिप्स और वो मंत्र जो आप शेयर करना चाहें उनके साथ?
0: कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और करेज, ये बहुत जरूरी है कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो आप ये तीनों अपने जो व्यवहार में लाएं। बाकी कोई भी काम करें तो अच्छे से मन से करें, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करें, तो सारी चीजें आसान हो जाएगी।
1: तो श्रोताओं, आज हमारे बीच थे शुभम भाटी जी, इन्होंने आरजेएस परीक्षा 2025 को क्रैक किया और ये सफलता अर्जित करके न केवल अपने परिवार का, समाज का, जिला नागौर का और पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। आज आप हमारे स्टूडियोज में आए, इतनी बहुमूल्य जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: अभी आपने सुनी राजस्थान न्यायिक सेवा में चयनित श्री शुभम भाटी से संजय दत्त की बातचीत। लीजिए अब सुनते हैं ये गैर फिल्मी गजल, जिसे गाई है जगजीत सिंह ने और इसको लिखा है वसीम बरेलवी ने।

अभी आपने सुनी है गजल जगजीत सिंह की आवाज में। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं गाने पुराने जमाने के। यह है पहली पेशकश रफी साहब की आवाज में, फिल्म का नाम चिराग।

फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: लीजिए सुनिए गाने पुराने जमाने के में, ये गाना मिस्टर एंड मिसेस 55 का।

अभी आपने सुना ये गाना मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में मिस्टर एंड मिसेज 55 से, और ये है अगली पेशकश। आशा भोसले की आवाज़ है और फिल्म का नाम

और गाने नए गाने पुराने जमाने के में यह है आखिरी पेशकश।

रफ़ी साहब की गाए फिल्म लाल पत्थर के इसी गीत के साथ गाने पुराने ज़माने के यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं गाने नए तराने नए। यह है पहली पेशकश।

गाने नए तराने नए में ये थी पहली पेशकश। फिल्म का नाम लव आजकल। नीरज श्रीधर, मास्टर सलीम और सूजी की आवाजें थी और ये है अगली पेशकश। ये गाना हमने लिया है फिल्म मुन्ना माइकल से, अमित मिश्रा और अंतरा मित्रा की।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagaur@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagaur@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

अभी आपने सुना ये गाना फिल्म हाउसफुल 3 से। आवाजें थी शारिब तुसी, नक्श अजीज, दिव्या और साथियों की, और यह है गाने ने तराने ने की अगली पेशकश।

अभी आपने सुना ये गाना फिल्म दबंग 2 से राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में। लीजिए गाने नए तराने नए के आखिर में सुनिए ये आखिरी पेशकश फिल्म सुल्तान से मीका सिंह की आवाज में।

और इसी गीत के साथ गाने नए तराने नए कार्यक्रम यही हुआ खत्म। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं मुंबई से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे सुदर्शन फाकिर का कलाम। और अब समाज फरमाइए, प्रेम वर्मदानी का ये गीत नीना और राजेंद्र मेहता की आवाजों में।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रंग तरंग कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मधुकर राजस्थानी का लिखा ये गीत, खयाम के संगीत निर्देशन में, आवाज है मोहम्मद रफी की।

आइए अब सुनते हैं पंकज उदास की आवाज में नूर नारवी का कलाम। यह है पंकज उदास की आवाज और नूर नारवी का कलाम।

ये थी राजेंद्र मेहता की आवाज, गुलजार का कलाम। और अब सुनते हैं मिताली सिंह और भूपिंदर सिंह की आवाज में इब्राहिम अश्क का कलाम।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं राजकुमार रिजवी की गाई ये गजल। शायर हैं ताहिर फराज रामपुरी।

0: ये थी मिताली सिंह की आवाज और रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गीत।
1: न जवानी नल चल दी

0: इस गजल के साथ ही अब आज का रंगारंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: रंग तरंग
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे के क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक स्तर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों

0: लोगों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरन ने बताया कि हवाई हमलों में 36 नागरिक मारे गए हैं और 163 अन्य घायल हो गए हैं, साथ ही 3 आवासीय मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया, सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान और तेज कर दिया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, आपात राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी नोटिस का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेच रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में IOCL ने कहा कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। घरेलू शेयर बाजार के आज के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 38 अंक गिरकर 76,690 और निफ्टी 13 अंक गिरकर 23,933 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। कुछ ही पलों में कार्यक्रम सुनेंगे यादों की महफिल।

यादों के महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं विधाता फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: साप्ताहिक भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और किशोर कुमार का गाया हुआ पिघलता आसमान फिल्म का गाना। इंदिवर के बोलों को संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: उनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो आशा भोसले और शब्बीर कुमार ने गाया है, वर्मा मलिक ने लिखा है और कल्याण जी आनंद जी ने धुन तैयार की है। फिल्म का नाम है राज तिलक।

0: इनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनते हैं एमजी हशमत का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, संकोच फिल्म का नाम है और आवाज है सुलक्षणा पंडित की।

गुलशन बाबरा का लिखा गीत आपने सुना रफू चक्कर फिल्म से, कंचन और शैलेंद्र सिंह की आवाजें थी। आइए अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में घुंघरू फिल्म का ये गाना।

लीजिए सुने इंदिवर का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ कलाकार फिल्म का गाना, आवाजें सुरेश वाडकर और साधना सरगम।

राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, प्रोफेसर प्यारे लाल फिल्म का ये गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। और अब आपको सुनवा रहे हैं इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन, मुकेश और कंचन की आवाजें। फिल्म का नाम है पाप और पुण्य।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण, यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के एक बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नई दिल्ली के जोधपुर हाउस में यमुना जल समझौते को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। श्री शर्मा ने 29 जून के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस समझौते से राजस्थान की धरती को पानी मिलेगा। उन्होंने प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य की पानी की पीड़ा को समझा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में राज्य को केंद्र सरकार की ओर से कई सौगात मिली हैं।
2: यह योजना लगभग 34,000 करोड़ रुपए की योजना, इसमें 295 किलोमीटर पाइपलाइन से, 3 पाइपलाइन से पानी जाएगा। कितनी बड़ी बड़ी सौगातें राजस्थान के लिए 12 साल के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हमारी ईआरसीपी की योजना हो, कल जो समझौता हुआ है हमारा यमुना जल का वहां काम हो, या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हो, नॉर्दर्न जयपुर रिंग रोड हो, अमृत भारत रेलवे स्टेशन हो, वंदे भारत ट्रेनें हो, और यही नहीं, आपने देखा होगा राजस्थान में पहली साल में राइजिंग राजस्थान माने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और विश्व भर के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत, स्वतंत्र और जवाब देह संसद ही लोकतंत्र की सच्ची शक्ति और नागरिकों के अधिकारों की सबसे बड़ी संरक्षक है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हमें लोकतंत्र की आत्मा, संवाद, सहमति, जवाबदेही, पारदर्शिता और संवैधानिक मर्यादा को और मजबूत करने का संकल्प लेने का अवसर प्रदान करता है। प्रदेश में आज रात 12 बजे से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी योजना लागू हो जाएगी। इसके साथ ही मनरेगा से लगभग 1,00,000 काम वीबीजी रामजी में ट्रांसफर हो जाएंगे। मनरेगा आयुक्त पुष्पा सत्यानी ने बताया कि प्रदेश में कुल मिलाकर 6,00,000 काम वीबीजी रामजी में कराने की तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि योजना के लिए राजस्थान को 1200 करोड़ रुपए का बजट मिला है। नई योजना में प्रशासनिक कामों के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक मद में कुल बजट बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। इस राशि से 1,03,00,000 नए जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। बालोतरा के पचपदरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य रिफाइनरी परिसर को स्वच्छ, हरा भरा और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। रिफाइनरी प्रबंधन के अनुसार इस विशेष अभियान के तहत परिसर में 21,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इससे पहले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भी

0: यहां 20,000 पौधे रोपे गए। वृक्षारोपण के साथ साथ परिसर में साफ सफाई, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सक्रिय भागीदारी निभाई जा रही है। केंद्र सरकार ने माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी जीएसटी ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार करदाता आगामी 31 जुलाई तक अपनी अपील दर्ज करा सकेंगे। इससे पहले सरकार ने इसके लिए 30 जून तक की समय सीमा तय की थी। मंत्रालय ने बताया कि अंतिम दिनों में पोर्टल पर बढ़े दबाव और तकनीकी दिक्कतों को लेकर विभिन्न हितधारकों से मिले ज्ञापन के बाद ये निर्णय लिया गया है। प्रदेश में पुलिस के विशेष जांच दल एसओजी ने फर्जी एफएमएजी सर्टिफिकेट के मामले में कार्रवाई करते हुए 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि विदेश से एमबीबीएस करने वाले इन आरोपियों ने भारत में पंजीयन के लिए अनिवार्य योग्यता परीक्षा का फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करवाया था। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं मुंबई से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।
2: और बहुत खूबसूरत गजल है, हमें अच्छा लगेगा अगर आप अपनी बात लिखकर भेजें तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज आप अपने साथ लहरें लाई हैं या फिर लहरों के संग आने वाली हैं और हम सब लहरों के साथ कहीं बहुत दूर हम सबको लहरों के साथ कहीं बहुत दूर बहुत दूर ले जाने वाली हैं, जहां हो सुकून के कुछ पल और हम जी सकें अपने मन के हिसाब से, जहां कोई रोकने टोकने वाला भी ना हो, जो ना करना चाहे वो काम भी ना हो, बस साथ हो सिर्फ लहरें, फिर तो उनके साथ गुनगुनाना अपने आप ही हो जाएगा। नहीं भी आता होगा तो भी क्या बात है भाई, ये बात तो है ही कि गीत संगीत और जब मनचाह साथ हो या अपने मन की बात हो तो फिर कितना खूबसूरत वक्त गुजरता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो चलिए हम गीतों की शुरुआत करते हैं। रिमझिम शब्द को लेकर बहुत सारे गीतों के कयास आए हैं, तो चलिए एक झलक उन सभी की सुन लेते हैं।

तो भाई ये कुछ गीत हैं जो हमने आपकी पसंद से चुने और उनके थोड़े थोड़े अंश आपको सुनवा दिए। हमने ये गीत चुना है और इसे भी बहुत सारे श्रोताओं ने पसंद किया है। लेकिन पहले सवाल पूछ लेते हैं। एक तो आपको बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है और किन कलाकारों पर फिल्माया गया है, और जो सबसे पहला रिमझिम का गीत था उसे एक फीमेल वॉइस में भी आपने सुना होगा, तो बताइए कि वो किसकी आवाज में आपने सुना है। गायिका का नाम आपको बताना है जो सबसे पहला गीत आपने रिमझिम का सुना था।

बड़ा खूबसूरत तराना छेड़ देता है ये गीत। शैलेंद्र का लिखा, सचिन देव बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ, बिल्कुल सही नाम हमारे श्रोताओं का आया। बहुत बहुत शुक्रिया काला बाजार, देवानंद, वहीदा रहमान और रिमझिम गिरे सावन बरसात का जो गाना हमने आपको सुनाया था, सबसे पहला गाना मंजिल फिल्म का लता मंगेशकर की आवाज में। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से प्रॉम्प्ट जो जवाब आते हैं ना, उनमें बहुत कार्यक्रम की को एक गति मिल जाती है और इस गति के साथ जो संदेश आते हैं

और अपनापन भी लहरों के माध्यम से प्रेम मिलन विरह और प्रकृति के अद्भुत तालमेल को बयां किया गया है। शब्दों का चयन इतना कोमल और संगीतमय है कि पढ़ते ही मन शांत और रूहानी एहसास से भर जाता है। आंखों के सामने बारिश की बूंदों के बीच नाचती झूमती लहरों का दृश्य सजीव हो उठता है। लहरों का उठना ठहरना और फिर लौट जाना प्रकृति के शाश्वत नियम को दिखाता है। और एक और संदेश में कहा गया है कि कुछ लहरें समंदर से नहीं यादों से उठती हैं। वे जब भी दिल के किनारे आती हैं अपने दूर गए साथी से मिला जाती हैं उनकी कई यादें याद दिलाकर। एक और संदेश में तो रिमझिम के तराने से लेकर बहुत सारे गीतों का जिक्र हो गया है। पिछली रात से रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात के आगमन से हमारे दिल के समंदर में भीगी भीगी ठंडी ठंडी लहर सी दौड़ रही है। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के क्यों धड़के, आज सुरीले सफर के मिलन की बेला में। जैसे दो दिल धड़क रहे हैं और आवाज एक है, सांसों के तार पर देश की सुरीली धड़कन के ताल पर जब गीत गाया समंदर की लहरों ने, तब लहरों की तरह यादें टकराती हैं, तूफान उठाती हैं, रेत पर लिखे नाम भले ही मिट जाएं, दिल पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और एक और संदेश में कहा गया है कि विविध भारती के सुरीले सफर में आज समंदर की लहरों के साथ खेलते हैं, ऐसे गीतों का लुत्फ उठाते हैं जिसमें नायक नायिकाएं बेखौफ समंदर किनारे बेतहाशा दौड़ते लहरों के साथ मस्ती करते हैं। कभी रेत पर ताजमहल बनाते हैं तो कभी उसे मिटाकर फिर समंदर के उथले पानी में एक दूसरे को भिगोते लोटपोट हो जा रहे हैं। चलिए इसी से सवाल निकल आया, हमें बताइए कि क्या आपने कभी समंदर की सैर की है, किसी समंदर के किनारे घूमे हैं या वहां से सीपियां इकट्ठी की हैं। अगर ऐसा किया हो तो हमें जरूर बताएं और कहां गए हैं। अलग अलग तटों पर हमारे देश के अलग अलग समुद्री तट हैं जहाँ का पानी और जहाँ के समुद्री किनारे अलग अलग होते हैं, तो हमें ज़रूर बताएं कि आपका वो अनुभव कैसा रहा और कहाँ गए थे आप। और अब ये जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, बताइए पर्दे पर कौन

कन्याकुमारी की बात की है जो कि तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, बहुत रोमांच होता है, ऐसी अनोखी दुनिया होती है, यह हमारे एक श्रोता ने बताया है उस सवाल के जवाब में जो हमने पूछा था कि समुद्र के किनारे आप कहाँ गए हैं। और हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि मुंबई गए हैं। बाकी जवाबों का भी इंतजार हो रहा है, जरूर आप लोग कहीं घूमने गए हैं और जल्दी से बताइए। एक श्रोता कह रहे हैं कि आपने जैसे ही रिमझिम के तराने छेड़े वैसे ही हमारे यहाँ भी रिमझिम फुहारें पड़ने लगी हैं, मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है। वाह क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं हम तो दीघा पश्चिम बंगाल गए थे। अब दूसरे सवाल की बारी, वैजयंती माला फिल्म मधुमती, घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, ये जो गाना भी आपने सुना, सलील चौधरी का संगीत निर्देशन था, ये जवाब भी आ गया है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथियों ने बताया है कि ना बाबा मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है, तो मैं जयपुर से ना अजमेर नाव में बैठी ना जलमहल और पानी से दूर ही रहती हूँ। ओहो अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि पानी का डर जो है वो बहुत सी चीज़ों से दूर रहना के लिए मजबूर कर देता है। आप ये बताइए कि समुद्र के किनारे बहने वाली हवाओं का भी एक बड़ा खास अहम भूमिका होती है, तो क्या कभी उन हवाओं के साथ आपकी कुछ मुलाकात हुई है जो तेज़ तेज़ हवाएं बहती हैं बारिश के समय में? अगर याद हो तो वो ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी जिन श्रोताओं ने नहीं बताया है कि वो किस समुद्र के किनारे टहले हैं या क्या बनाया है उन्होंने, जो घरौंदे बनते हैं उन घरौंदों को कई बार बच्चे भी बनाते हैं और आजकल तो बहुत सुंदर सा सेट भी मिलता है बच्चों के उन घरौंदों को बनाने वाला, वो अगर सेट किसी बच्चे को गिफ्ट किया हो तो ये भी बताएं। अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को सुनने के लिए आपको बताना होगा कि ये गाना किस फिल्म का है।

संदेशों की बात करें तो हमारे एक श्रोता ने बताया कि एक और रिमझिम का गाना याद दिला दिया, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, लता मंगेशकर की आवाज। वैसे तो रिमझिम शब्द वाला पहला सुना गीत मराठी है। रिमझिम पाउस पड़े सारखा, यमुनेला हुपूर चढ़े, पाणीच पाणी चहुड़के चहुकड़े। वाह क्या बात है। और ये एक और श्रोता ने कहा है कि रिमझिम के तराने की गीत मालाएं बुन रहे हैं और सभी मुखड़े उम्मीद के अनुसार। मंजिल ढूंढता गाना शुरू हुआ और काला बाजार पर रुक गया। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि सागर की अपनी शांत गुफाएं हैं, गहरी शांत और एकांत। यद्यपि लहरों में उग्रता हो लेकिन उसके नीचे कोई शांति नहीं है। शायद कोई टाइपो एरर हुई है, अशांति लिखते हुए इन्होंने अशांति लिखना चाहा होगा। एक और श्रोता ने कहा है कि वैसे हम अपनी कुछ दिन पहले की एक बात बताते हैं आपके साथ साथ सभी हंसेंगे सुनकर। तो हुआ यूं कि हमारी बेटी ने कुछ पंक्ति लिखकर अपनी एक पोस्ट डाली स्टेटस पर, समुद्र के किनारे की पिक के साथ। तो हमने उसे लाइक किया और लिखा कि हम लिखते तो कुछ ऐसा लिखते। तो जवाब में उसने लिखा, आप दिल से सोचती हैं और हम दिमाग से। फिर हमने लिखा, अरे नहीं, हम विविध भारती सुनते हैं ना। तो उसका रिप्लाई, सारा क्रेडिट मम्मी ने विविध भारती को दे दिया। फिर उसने ये बात सब दोस्तों को बताई, सब इतना हंसे ऑफिस में। तो सोचो एक छोटी सी बात ने कितनों को हंसाया। बस यही तो हम चाहते हैं, सब खूब हंसे, वरना परेशानियां तो सबके साथ हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और श्रोता ने कहा है कि जीवन दर्शन समंदर की भांति ही गहरा ही नहीं अपितु रहस्यमय भी है। भले ही हम उसके अंदर अपने कौशल विकास से केबल बिछाकर पूरी दुनिया को ही मुट्ठी में भर लेने की होड़ में लगे हुए हैं, फिर भी ये समंदर अब भी रहस्यमय ही है। क्योंकि बहुतेरे तो किनारे के सीप घोंगों से ही खुश हो जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एक कुशल गोताखोर ही समंदर में गोते लगाते हुए उसमें छुपे जीवन दर्शन स्वरूप हीरे मोतियों तक अपनी पहुंच बना पाते हैं। आगे भी लिखा है, लेकिन यहीं से एक सवाल का जन्म होता है। और वो सवाल ये है कि इस लाइन पर एक बड़ा प्रसिद्ध मुहावरा है कि गोताखोर लंबी जब अंदर तक जाते हैं समुद्र में, तभी वो हीरे मोतियों को पा लेते हैं। तो एक दोहा है, अगर वो दोहा याद आ रहा हो तो वो भी हमें बताएं और इस फिल्म का नाम बताएं जो गीत आप सुन रहे हैं।

बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए। एक तोहफे की तरह आया ये जवाब। और मुकेश और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, इंदीवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन, समंदर की भी बातें हमारे साथियों ने बताई हैं। वैसे एक सवाल आ रहा है मन में कि तोहफों को चुनते वक्त सबसे ज़्यादा किस बात का ध्यान रखा जाता है जेब के अलावा? ये जो हमारे साथियों ने बताया है समुद्र की यात्रा के बारे में, तो एक श्रोता कह रहे हैं कि हम तो समुद्र कनाडा में इन्होंने देखा था कई बार और बहुत देर तक वहाँ बैठकर आती जाती लहर को देखा, जो बस यही कह रही थी काश हमारे साथी को कुछ जीवन और मिल जाता तो आज वो भी हमारे साथ इस प्यारे से नज़ारे को देख पाते। पर बड़ी मस्ती की छोटी सी अपनी परी के साथ छोटे छोटे पत्थर, रंग बिरंगे पत्थर पानी में डाले और पानी में पैर डालकर बैठे रहे। कन्याकुमारी दीघा छूट गया लिखने में, ऐसा हमारे एक श्रोता कहते हैं। और मुंबई में तो अक्सर ही जाना होता है, वहां चौपाटी पर कई बार गए, चेन्नई में भी जाना हुआ, कन्याकुमारी भी गए हैं, ये हमारे एक और श्रोता ने बताया है। एक और श्रोता कह रही है कि वैसे तो हमारा शहर समुद्र के पास ही है, अक्सर हम वहां जाया करते हैं, डुमस बीच, सवाली बीच और गोवा दो बार गए, पर सबसे अलौकिक अनुभव हमें धनुषकोडी और कन्याकुमारी का रहा। दक्षिण भारत की यात्रा का अनुभव बेजोड़ था, क्या बात है। मुंबई के जुहू बीच दो तीन बार, अक्सा बीच और गुरई बीच का जिक्र किया है हमारे एक श्रोता ने। द्वारकाधीश और सोमनाथ गया हूं समुन्दर के पास, ये हमारे एक और श्रोता बता रहे हैं। एक श्रोता ने साझा किया है एक दुर्घटना होते होते बचने का जो अनुभव था इनका। हम लोग पूरा ग्रुप करीब 80 लोग उड़ीसा गए हुए थे, वहां पर समंदर की सैर करते हुए अचानक समंदर में तूफान आ गया और हमारी बोट ते खाने लगी। तभी एक अन्य बोट वाले ने तूफान के सामने अपनी बोट लगाकर हमारी बोट को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। एक कौशोता कह रहे हैं कि जुहू चौपाटी मरीन ड्राइव दोनों जगह पर दो तीन बार गई हूं, पर वहां का पानी जो अजीब सा पानी की जो अजीब सी गंध होती है मैं अपने को अच्छा महसूस नहीं कर पाती, इसलिए मैं पानी के किनारे पर जाना पसंद नहीं करती हूं। और एक कौशोता बता रहे हैं कि पुरी के समुद्र में रस्सी पकड़कर लहरों का आनंद ले रहे थे, पर एक बहुत बड़ी लहर ने उठाकर पटक दिया और मोबाइल में पानी लग गया, थोड़ी सी लापरवाही की बड़ी सजा मिल गई। और समझौता फिल्म का ये गाना हमारे साथियों ने बताया, साथ ही अनिल धवन और शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम का जिक्र हो गया। अब संदेशों की बात करें तो और भी कई संदेश आए हैं। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि मुंबई की कुछ बारिश आप ऑनलाइन ट्रांसफर करके हमारे शहर अजमेर में भेज दें प्लीज, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं लग रही। अभी यहाँ तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑफिस के बाहर तेज धूप है। ओहो, ये तो बहुत खतरनाक है। चलिए जल्दी ही हम दुआ करते हैं बारिश आएगी। एक और श्रोता कह रहे हैं कि वीबीएस सर्विस मुंबई में मानसून के आगमन के साथ पानी बरसना शुरू हो गया, ऐसे में समंदर किनारे हवाओं के साथ लहरें अटखेलियां करती नजर आ रही हैं। पहली रिमझिम बारिश में धरती को छूती हुई पानी की बूंदें मिट्टी की सूंधी खुशबू बिखेरती हैं, तो वहीं समंदर किनारे किसी चट्टान पर बैठकर बीती यादें मस्तिष्क को दूसरी ही दुनिया में ले जाती हैं। और बताया है कि समुद्री लहरों के आसपास फिल्माए गए गाने बच सकते हैं। एक और संदेश में कहा गया, शांत लहर में कुछ खामोशियां भी गीत होती हैं, उन्हें सुनने के लिए कान नहीं बस समझने

वाला दिल होना चाहिए। क्या बात है, चलिए अब इसी बात पर अगला गाना। इस गाने को सुनिए और हमें ये बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है और गीतकार कौन है।

आवाज पर ये गाना तो हो गया और इसके साथ ही बहुत सारी आवाजें, भावनाएं आवाज बनकर हम तक पहुंच गई हैं। सच में ऐसा लग रहा है जैसे हम आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो पानी से बड़ा डर लगता है, मैं तो तालाब में भी नहाता हूं तो साथ में बाल्टी या मग ले जाता हूं, समुद्र में जाना तो दूर की बात है। वैसे हमारे साथियों ने ये जरूर बता दिया जो हमने एक दोहे का जिक्र किया था कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न दरा रहा किनारे बैठ। कबीर दास की का ये दोहा हमारे साथियों ने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता कह रही कि समंदर से बड़ा गहरा नाता है मेरा, क्योंकि समंदर के काफी नजदीक रहती हूँ, अपनी हर खुशी के पल में समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं, टहलना हो तो भी वहीं जाते हैं, लहरों से अपनी दोस्ती है, समंदर की हवाओं से यारी है अपनी। क्या बात है, वैसे बहुत बातें करती हैं हवाएं जब आप समंदर के किनारे हो। एक और श्रोता कह रहे हैं कि गुजरात के दमन दीव बीच और सोमनाथ विराग बीच, चेन्नई के मरीना बीच और

रामेश्वरम के धनुषकोडी और कन्याकुमारी केरला के कोवलम बीच की सैर करके आई हूं, पर जो चौपाटी की बात है वो सबसे निराली है क्योंकि उसमें बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। क्या बात है। एक और श्रोता ने बताया है कि रेत पर नाम लिखने का किस्सा कि बचपन इनका मुंबई में ही गुजरा था, समुद्र से गहरा लगाव है, जब भी हम मुंबई आते हैं तो जुहू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी या अन्य बीचेस में जरूर जाते हैं। धर्मपत्नी जब बच्चों के साथ होती हैं तो मैं चुपके से हर बार रेत पर दिल का शेप बनाता हूं धर्मपत्नी का नाम लिखकर, आई लव यू भी लिखता हूं और सबको बुलाता हूं, तो धर्मपत्नी और बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट ही मेरा तोहफा होता है और वहां का वीडियो भी सेव करके रखता हूं। हां, हम यही बात कहने वाले थे कि ऐसे नजारों की तो फोटो तुरंत खींच लेनी चाहिए। क्या बात है। एक और श्रोता कह रही हैं कि मैं वो खुश नसीब हूँ जो समुन्दर के किनारे रहती हूँ, मेरा बेटा रोज शाम को खिलौने लेकर रेती में खेल खेल के खेलते खेलते बड़ा हुआ है। मैं भी सीपियां इकट्ठा करके उनसे अलग अलग डेकोरेटिव चीजें बनाती थी, लेकिन अब समंदर किनारे बहुत गंदगी रहती है, सीपियां मिलना भी बंद हो गया है। सच में ये एक बहुत ही दुखद बात है और इसलिए समंदर को साफ रखें। अगर समंदर के किनारे आप जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मुंबई चेन्नई जगन्नाथपुरी रामेश्वरम कन्याकुमारी जाना हुआ, हर बार का रोमांच अलग अलग रहा। मेरी बिटिया का बेटा पुरी में पिछले साल हमारे साथ था, उसके साथ समंदर के किनारे लहरों से खेलते खेलते वो अचानक किसी लहर के साथ बह निकला, बस थोड़ी दूर जाते ही हमने लपक कर उसे पकड़ लिया, वो तो मजे लेता रहा पर हम सबके तो हाथ पैर जम से गए थे। कन्याकुमारी में सनराइज की वो झलक का अनुभव इतना सुंदर और आत्मिक अनुभव से भरा हुआ है, वो नजारा वीडियो में आज तक कैद है जिसे हम यदा कदा देखते रहते हैं। एक गीत सुलक्षणा पंडित का गाया हुआ, तू ही सागर है तू ही किनारा। और अब वो सवाल जो हमने पूछा था, प्रेम गीत फिल्म का गाना अनीता राज का जिक्र किया, इंदीवर का लिखा हुआ ये गीत था, ये भी हमारे साथियों ने बता दिया। और अब हम अगले गाने की तरफ चलें, उसके पहले एक संदेश है। प्रकृति और मनुष्य आदिकाल से सहचर हैं, जब रिमझिम बारिश की बूंदें समंदर की लहरों पर पड़ती हैं तो मानो बिछड़े हुए प्रेमियों का मिलन हो रहा हो। यह दृश्य और अदृश्य का मिलना मानव मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस माहौल में मनुष्य के भीतर की तार्किकता मौन हो जाती है और संवेदनशीलता जागृत हो जाती है। क्या बात है। एक और संदेश में कहा है कि सुख का सुंदर चैतन्य आत्मा है, उसमें से आनंद की तरंगें उठती हैं, खुशी की लहरें उठती हैं और फिर उसी चैतन्य समुद्र में समाती भी हैं। एक और श्रोता ने कविता साझा की है, कहीं पढ़ी हुई ये कविता साझा की है इन्होंने। बादल बरसे धुल गई मन पर बैठी धूल, सब कुछ अपने हो गए समंदर नाव और मस्तूल, खिली जुलाई खुल गया बारिश का स्कूल, बस्ता लेकर सज रहे गुलमोहर के फूल। क्या बात है। तो चलिए अब अगले गीत की बारी है, बताइए कि गीत संगीत किनका है और फिल्म में कौन से कलाकार हैं।

भाई, हमारे श्रोताओं ने शशि कपूर और मुमताज का तो जिक्र किया, चोर मचाए शोर का नाम भी बता दिया, लेकिन गीत संगीत नहीं बताया। चलिए हम बता देते हैं, गीत संगीत रविंद्र जैन का था। और एक श्रोता ने बताया है कि चेन्नई के मरीना बीच की वे यादें केवल एक सैर की याद नहीं बल्कि परिवार के साथ बिताए गए उन अनमोल पलों की धरोहर हैं जिन्हें याद करके आज भी मन मुस्कुरा उठता है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि एक बार गोवा गए थे तो उनका फोन जो था पानी में गिर गया और उसके बाद सैंड में दब गया, ढूंढने पर भी नहीं मिला, इनका ट्रिप खराब हो गया। वैसे बहुत एहतियात के साथ इस दौरान रहना पड़ता है, समुंदर कई बार आपके साथ अटखेलियां करते करते कुछ ऐसा कर जाता है कि आपने उम्मीद भी नहीं की होती है। एक और श्रोता ने बताया कि भोपाल में आज सुबह से ही बादल और हल्की बारिश का सिलसिला चल रहा है, मौसम बहुत सुहाना है, कभी बरसात के मौसम में आप यहाँ आए तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। क्या बात है, हम दुआ करेंगे कि हम जरूर आए। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि सूरत में बारिश हो गई, कल रात 10:30 बजे के बाद शुरू हुई, सुबह 10 बजे तक जारी थी, लेकिन मैं राजस्थान में हूं, अभी जमकर बारिश नहीं हुई। एक और श्रोता ने अंडमान निकोबार जाते हुए बे ऑफ बंगाल समंदर हवाई जहाज से 2.5 घंटे का सफर पूरा किया, ये बताया है, नीचे देखो तो नीला समंदर था, मन में डर लग रहा था लेकिन थ्रिल भी लग रहा था। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आप लोग मुंबई में पानी की बारिश से भीग रहे हैं, सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ बनारस में भी पानी से भीग रहे हैं लेकिन सेल्फ सर्विस पसीने से, दुआ कीजिए जी। बिल्कुल, हम तो हाथ जोड़कर दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से ये बादल पहुंचे। मेघदूतों को के बारे में आपने सुना है ना, हमने मेघदूत से कह दिया है कि जल्द से जल्द हमारे सभी साथियों तक पहुंचे। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश कर्नाटक और गोवा के समुद्र तटों को छोड़कर शेष सभी समुद्र तटों पर हो आए हैं, यहां तक कि गंगा सागर भी हो आए हैं, क्या बात है। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि अभी इन्होंने वृंदावन की यात्रा की और यमुना की सैर की, सागर के साथ पूरा भारत देखा, दादर की चौपाटी याद आती है। अच्छा, वैसे समुद्र जो है वो कई जगह बड़ा रिझाता है और कई जगह चेतावनी भी देता है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रामेश्वरम के धनुषकोडी और कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद स्मारक पर तेज हवाओं का सामना करना पड़ा था। और एक और श्रोता ने बताया कि हमारे शहर कटक से पूरी नजदीक होने के कारण अक्सर जब मूड किया चल दिए समंदर की सैर को, क्या बात है। और अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इस गीत को सुनिए और हमें ये बताइए कि ये किस नायिका पर फिल्माया गया है।

हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हेर आई शब्द का मतलब बुंदेलखंडी में ढूंढ आई, वैसे हेराई यहाँ पर प्रयोग हुआ है खो आई। और हमारे श्रोताओं ने तुरंत जवाब दिया कि अभिमान फिल्म का गाना नायिका जया भादुड़ी, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मजरू दादा की रचना, सचिन दा का संगीत, ऐसा हमारे एक और साथी बता रहे हैं। और मुंबई में अरब सागर पर बना हुआ सीलिंग देखने जाना है एक श्रोता की ये ख्वाहिश है, और उनकी ये ख्वाहिश जल्दी से जल्दी पूरी हो, हम तो यही दुआ करेंगे। एक श्रोता ने बताया है कि हम लोग समंदर के किनारे, हमने काम भी किया है और अच्छा घूमे भी हैं। एक बार नीलोफर तूफान भी आया था, दो बार रहा, दोनों बार तूफान था, एक तीन चार लगातार लाइट भी नहीं थी, फिर भी आज भी किनारे रहने की बहुत इच्छुक हूँ। एक और श्रोता ने एक दोहा साझा किया है समुद्र तट के वर्णन के बारे में, रामचरितमानस का दोहा है, बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारीस, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। समुद्र के ये 10 नाम हैं जो वाकई बड़ी खूबसूरती से तुलसीदास जी ने पिरोए हैं इस दोहे में। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि बदलते मौसम में जब रिमझिम की बूंदें बरसती हैं तो रेत पर लिखे वो अधूरे नाम भी भीग जाते हैं, लेकिन जहां समंदर की लहरें इन पथरीली चट्टानों से टकराती हैं वहां आज भी दो दिल एक ही ताल पर धड़कते हैं। मानो कह रही हूं कि कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते। एक और श्रोता ने कहा है कि एक सुंदर स्वप्निल काव्य शिल्प यानी आज की इबारत, समुद्र की लहरों पर जो बिखरा रही है रिमझिम की दौलत, क्या बात है। कल कल फेनिल सागर लहरें किनारे को जो छुएं, धड़कते प्रेमी दो दिलों पर प्रणय रस वो छिटकाएं, आते जाते मधुर सुरीले प्रेम गीत वो गुनगुनाए, और कुछ गाने भी इन्होंने साझा किए हैं। और एक और श्रोता ने कहा है कि सागर के अनंत विस्तार में उठती गिरती ये लहरें कभी शांत कभी उग्र, जैसे जिंदगी की ही कोई अनकही दास्तान कहें, कुछ दूर क्षितिज में उठकर किनारों को छूकर ये बिखर जाती हैं, हार नहीं मानती, बस एक बार एक नया हौसला लेकर आती हैं, कभी थपेड़ों से चुभती हैं तो कभी मखमली स्पर्श सी हो जाती हैं। लहरें जिंदगी के सफर में बहुत कुछ सिखा जाती हैं, हर लहर हमें ये बताती है कि गिरना तो बस उठने की तैयारी है, ठहरना नहीं, निरंतर बहते जाना ही इस बहते हुए जीवन की बाजी है, क्या बात है। और अब ये गीत सुनिए और बताइए स्वर किनका है,

लता जी और भूपेंद्र सिंह, ये हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है। फिल्म किनारा बहुत गंभीर फिल्म और बहुत सारे श्रोताओं ने जिक्र किया है। लता दीदी बिल्कुल सही, इनकी आवाज ही पहचान है। और अभिमान फिल्म के गाने के लिए भी जया भादुड़ी, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, एस डी बर्मन का जिक्र हुआ है। संदेश बहुत सारे हैं और मुझे लगता है कि मुझे सारे संदेश कैसे पढ़ने होंगे। सागर के अनंत विस्तार में उठती गिरती ये लहरें, कभी शांत कभी उग्र, जैसे जिंदगी की ही कोई अनकही दास्तान कहें, ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और एक और श्रोता ने कहा है कि आज दरिया समंदर नदियों की उनके अविरत बहती लहरों का जिक्र होगा, बिना भीगे मन को प्रसन्न करने वाली लहरों का वो अनहद संगीत शोरगुल में भी कर्णप्रिय लगता है। मैं घंटों तक समंदर के किनारों से चलता हुआ लहरों का आनंद लेता हूं, थकान मिट जाती है। शाम को ढलते हुए सूरज की किरणों का दृश्य मनोहर होता है। और इन्होंने कुछ गीत भी लिखे हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि सागर परम चेतना है, जिसमें बहुत गंभीर स्थायित्व और गहराई है, और उसकी गहराई ज्ञान का प्रतीक है। लहरें चंचलता, भाव और उमंग को दर्शाती हैं, जो कुछ कुछ अहंकार का रूप लगती हैं। मानो ये कहना चाहती हैं कि उन्होंने ही सागर का निर्माण किया है, यथार्थ में तो वो सागर का अंश मात्र ही हैं। काफी गहरा संदेश है ये। और अब ये गीत सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के मित्र की भूमिका किन्होंने निभाई है।

हमारे श्रोताओं ने कहा है, जवाब बिल्कुल सही दिया है। अमिताभ बच्चन के मित्र हैं अमजद खान, किशन और बिशन। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि कॉलेज काल की ये फिल्म है। एक और श्रोता ने कहा है कि किशन चाचा के अमजद खान ने ये गीत गाना, याराना के संगीत राजेश रोशन का संगीत, इन्होंने ये लिखा है। और एक और श्रोता ने अमजद खान उर्फ गब्बर सिंह को याद किया है। एक संदेश है।

0: शौक, शौक बड़ी चीज होती है ना? जो मन करे वो कर लेना, क्या यही शौक है? नहीं, जो मन को अच्छा लगे वही कर लेना, ये शौक है? ये भी गलत है। सही तो तब है जब हम वो काम करें जिससे हमारे मन को खुशी मिले और करते करते मन में आह्लाद यानी बहुत सारी प्रसन्नता आ जाए, उसे ही कहेंगे शौक। अब शौक जो है उसका मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। शौक वो कार्य है जो अपनी खुशी, रुचि और मन की संतुष्टि के लिए करते हैं। अब कई लोग होते हैं जो चित्रकारी करते समय कहीं खो ही जाते हैं, कई बार आवाज देने के बाद ही वो उस ओर ध्यान देते हैं। कई बार कोई खेल खेल रहा होता है उसका ध्यान ही नहीं होता, कोई गाना गा रहा होता है उसमें ही खो जाता है, और कोई तो किताबें पढ़ते पढ़ते एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। नृत्य करने वाला अपने जीवन की सारी परेशानियों से मुक्त हो जाता है, और बागवानी करते करते तो कोई फूलों के साथ हंसना और बोलना शुरू कर देता है। शौक जीवन को आनंदमय, उत्साहपूर्ण बनाते हैं। और आज का जीवन कितना व्यस्त है, कितने तनावपूर्ण जीवन में जी रहे हैं, तो ऐसे में जो शौक है ना वो आपको ताजगी देते हैं और शांति प्रदान करते हैं, और इसी शौक के साथ में हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं।
1: पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नशा, शराब,
2: तो फिर
1: हमको तो नशा।

0: शेख चिल्ली का ये ख्वाब, हर एक जर्रे की ये जुर्रत, छूना चाहे आफताब।
1: किबला खादिम पे न कीजिए इस कदर गुस्सा फिजूल, मैं हूँ आशिक इश्क में, मरना भी है मुझको कबूल।
0: तो मरेगा?
1: हाँ जी मरेगा।
0: ये जो कहेगी करेगा?
1: हाँ जी करेगा करेगा।

0: नहीं बाप कहूंगा।
1: What?
0: ये जो कहे ये जो

फॉग कब आता है, कहां से आता है और कैसे आता है, ये प्रश्न सबके मन में होते हैं। कभी कोई कहता है कि पिछले जन्म में यही काम करते रहे होगे, इसीलिए तो इस जन्म में उस चीज का शौक है। पर ऐसा नहीं है, शौक अलग ही चीज है। बस वो काम करते करते मन को सुकून मिल जाए और जिस काम को भी कर रहे हैं वो करते करते आत्मिक शांति मिल जाए, शायद इसे ही शौक कहेंगे। और ये जो शौक है इसके कई सारे फायदे हैं। मानसिक तनाव कम होता है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई काम करने का मन नहीं है, परंतु जबरन या आवश्यकता अनुसार उसे करना पड़ता है। और करते करते, लगातार उस कार्य को करते करते जब बोर हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, तो थोड़ी देर, किंचित समय के लिए ही अपने शौक को पूरा करना शायद मन को शांति ही दे दे, और फिर से नई ऊर्जा के साथ हम वो कार्य कर सकते हैं जो करने में हमें बहुत ज्यादा मन नहीं लग रहा है। या आज के जमाने में मोबाइल इंटरनेट पर रहने की जगह कोई व्यक्ति अपने शौक के काम करके अपना समय बचा सकता है और अच्छे कार्यों में लगा लेता है, और व्यक्तित्व का विकास भी होता है।

एक और बात मन में आती है कि यदि किसी व्यक्ति ने शौक को ही पेशा बना लिया, जैसे बचपन से कोई गाना गाना चाहता था और वो गायक बन गया, जैसे किसी को बातें करने का शौक था और वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताने लगा, या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे चित्रकारी का शौक था और उसने उसे ही अपना शौक, उस शौक को ही अपना पेशा बना लिया और निकल पड़ा इस दुनिया के उस युद्ध में जहां से उसे कमाना है पैसा भी और भोजन भी। तो इससे फायदा क्या होता है या नुकसान क्या होता है? तो हालांकि इस बात से तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि आपने अपने शौक को ही पेशा बना लिया तो और अधिक मेहनत लगन से आप काम करेंगे, उसमें नई नई आवश्यकताएं खोजेंगे, नए नए अनुसंधान करेंगे, काम में खुशी और संतोष मिलेगा, व्यक्ति अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर पाएगा, तनाव तो बढ़ेगा ही नहीं, सफलता और प्रसिद्धि भी मिल जाएगी और आर्थिक लाभ तो होगा ही, साथ में होगी मानसिक संतुष्टि भी। तो कभी अगर मौका मिले अपने शौक को अपना व्यापार या अपना व्यवसाय बनाने का तो जरूर बना लीजिए।

एक और प्रश्न आता है कि बच्चों को किस चीज का शौक है ये कैसे पता करें। बहुत आसान है, माता पिता ही अपने बच्चे का मूल्यांकन करके उसकी गतिविधियों को ध्यान से देखकर उसके बारे में पता कर सकते हैं। बच्चों की गतिविधियों से कैसे पहचाने, तो सबसे पहली चीज यह देखें कि खाली समय में वह क्या करना पसंद करता है, किस विषय पर अधिक प्रश्न आते हैं। कभी उसे खेल खिलाएं, कभी संगीत की ओर ले जाएं, कभी चित्रकारी कराएं, कभी नृत्य कराएं। जिसमें वो अच्छा है वही उसका शौक है। आज की त्रिवेणी में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए विधि जैन को। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान को गति देने के लिए # झारखंड एसआईआर के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
3: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सेक्रीफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
4: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
5: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने

0: विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए UPI के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के लिए

0: अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम में

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 0152-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।

0: फिल्म तपस्या का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आरती मुखर्जी का गाया हुआ। एमजी हशमत के बोल थे और रविंद्र जैन का संगीत था।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में मेरा साया फिल्म का ये सदाबहार नगमा। राजा मेहंदी अली खान के बोलों को संगीत से सवारा है मदन मोहन ने।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 20 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

वासना फिल्म का ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, साहिल लुधियानवी के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। और अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति जब जब फूल खिले फिल्म से, मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजें हैं, आनंद बख्शी का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

0: इस रेडियो रिपोर्ट के प्रायोजक हैं श्री महर्षि जनार्दन गिरि पुष्टिकर माध्यमिक विद्यालय नागौर।
1: हर कहीं अपने बच्चों को पढ़ाने की क्या है मजबूरी।
2: अच्छे स्कूल की आपकी खोज हुई अब पूरी।
1: अब मत करो भूल
2: और शीघ्र पहुँचो
1: MJP इंग्लिश स्कूल।
2: जी हाँ, कड़ा अनुशासन, शांत माहौल, शानदार पढ़ाई और जोरदार परिणाम के लिए
1: श्री पुष्टिकर सेकेंडरी स्कूल और MJP इंग्लिश स्कूल, रामबाग माही दरवाजा, नागौर। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें 9414244352।
0: सोमवार दिनांक 29 जून सन 2026 को श्री महर्षि जनार्दन गिरि पुष्टिकर माध्यमिक विद्यालय में विधायक कोष से प्राप्त कंप्यूटर उपकरण और कंप्यूटर लैब के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। नागौर के माननीय विधायक श्री हरेंद्र मेधा द्वारा बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा मिले इस उद्देश्य से अपने विधायक कोष से 5 लाख रूपए स्वीकृत किए गए, जिससे 7 कंप्यूटर, 1 डिजिटल बोर्ड और 1 एयर कंडीशनर विद्यालय को मिले। कार्यक्रम की शुरुआत माननीय विधायक श्री हरेंद्र मेधा द्वारा मां सरस्वती स्वामी जनार्दन गिरिजी और ओम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर तिलक और माल्यार्पण करके की गई। पूजन पंडित भगवान भारद्वाज ने करवाया, वहीं दीप मंत्र का उच्चारण श्रीमती सरिता पुरोहित ने किया।
3: समीहसे ततो नो अवयं गुरु सन्न गुरु प्रजाभ्यो भयं।

0: उसके बाद माननीय मुख्य अतिथि श्री हरेंद्र मृधा नागौर विधायक का अभिनंदन श्री गोविंद लाल व्यास अध्यक्ष पुष्टिकर पंचायत नागौर और श्री पुखराज व्यास राजा साहब ने माला और साफा पहनाकर किया। विशिष्ट अतिथियों पूर्व उप प्रधान श्री आयदान भाटी, पूर्व सभापति श्री अशोक कुमार मच्छी, श्री मांगीलाल भाटी, पूर्व प्रधान श्री राजेंद्र फिड़ोदा, श्री कृष्ण जोशी रिको के अध्यक्ष श्री हीरालाल भाटी, श्री शौकत, श्री दिलफराज, श्री पुनाराम मेघवाल का भी माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया।
1: भाई थारो छोरो तो दसवीं में होनी, काहे रिजल्ट रियो बीरो?
2: अरे लाडली बार भी वो दसवीं में ही हो, पर फेल हो गयो। पच मन कोई बतायो कि श्री महर्षि जनार्दन गिरी पुष्टिकर माध्यमिक विद्यालय में भर्ती कराए दियो और मैं भी की बात मान ली।
1: पच रिजल्ट काहे रियो?
2: अब की बार वो सेकंड डिवीजन पास हो गयो। धन्यवाद है स्कूल ने जिको मारा छोरा की पढ़ाई में रुचि घाल दी।
1: जी हाँ, पुष्टिकर सेकेंडरी स्कूल नागौर।
0: इस अवसर पर बोलते हुए संस्थापक सदस्य श्री ओम प्रकाश मुथा ने कहा,
3: सबका मैं सर्वप्रथम मुझे जैसा कि आदेश मिला है कि स्वागत के शब्द में दो शब्द कहूं, तो सबसे पहले मैं इस विद्यालय के छोटे छोटे बालकों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, जिनके लिए आपने जो है ये कंप्यूटर लैब लगाई।

0: सबसे ज्यादा इसका फायदा उन्हीं को होना है। उसके बाद मैं आपका स्वागत करता हूँ विद्यालय के रेल मिशन परिवार की ओर से, जो विद्यालय के शुभ चिंतक है। उसके बाद मैं आपका स्वागत करता हूँ इस विद्यालय की शिक्षण संस्थान की ओर से, और सबसे अंत में मैं आपका स्वागत करता हूँ पुष्टिकर समाज की ओर से, जिनके लिए आपने ये कार्य किया। स्वागत की परंपरा के रूप में मैंने आपका स्वागत कर दिया। स्वागत करना मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, क्योंकि जो आदमी सहयोगी हो जाता है वो उस संस्थान का विद्यालय का सदस्य हो जाता है। आपने इस विद्यालय में छोटे बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब उपलब्ध करवा करके आप हमारे परिवार के सदस्य बन गए। सदस्य का स्वागत करना मैं औपचारिकता है, लेकिन फिर भी मुझे इसका निर्वहन करना था, मैंने कर दिया। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो ये सहयोग है वो हमें निरंतर मिलता। जैसा कि आप सबको पता है कि एक छोटे से एक समाज की छोटी सी संस्था है, चुनाव से पहले तो नेताओं को हर बार यही कहते फिरता है सर्व समाज के नेता, सर्व समाज के नेता, लेकिन आपने हकीकत में सर्व समाज के लिए ये कार्य करके दर्शा दिया है कि आप वाकई सर्व समाज के। क्योंकि चुनाव जीतने के बाद कोई किसी भी समाज की तरफ ध्यान नहीं देता, लेकिन आपका ये कृत्य मुझे लगा वास्तव में सर्व समाज के नेता की ओर से प्रैक्टिकल कर, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके साथ क्षमा चाहूंगा, एक निवेदन भी करूंगा कि आपने हमें कंप्यूटर लैब लगा करके सिर्फ चोंच दी है, चुगा अभी बाकी है। इस संस्थान के द्वारा कंप्यूटर लैब लग जाने के बाद बिजली का बिल भरना बहुत भारी हो जाएगा। तो आपसे मैं इस कड़ी में निवेदन भी करना चाहूंगा स्वागत के साथ साथ कि कम से कम हमारी इस विद्यालय में सोलर प्लांट लगाने के लिए आपका हमें सहयोग मिल जाए, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। एक बहुत बड़ा सा सोलर प्लांट लग जाए आपके लिए छोटा काम है, लेकिन हमारी संस्था के लिए बहुत ही बड़ा काम होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इस काम के लिए मना कर ही नहीं सकते।
1: इसके बाद श्री रविशंकर व्यास ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे।
2: पधारे समाज एवं नागौर नगर के प्रतिष्ठित महानुभाव, आज दूसरा अवसर है जब मैं न केवल इस विद्यालय अपितु संपूर्ण नागौर क्षेत्र की जनता की ओर से आपके प्रति आभार एवं कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मान्यवर, वैसे तो ये एक विद्यालय नहीं, नागौर क्षेत्र के लगभग सभी विद्यालयों में आपका किसी न किसी रूप से योगदान रहा है। इस शहर के विकास के प्रति भी आपका गहन चिंतन सदैव रहा है, और जो हमारी मांग इस विद्यालय की है, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कुछ और प्रयास करने पड़ेंगे। आज ही आपने आश्वासन दिया राजकीय विद्यालय में कि जिस विद्यालय में जिस प्रकार की आवश्यकता हो आप निसंकोच होकर लिखें, सभी विद्यालयों की यथा आवश्यकता पूरी की जाएगी। ये आपकी सहृदयता है, आपका बड़कपन है, और आपका अपनत्व और लगाव है नागौर क्षेत्र की जनता से। आपके परिवार और इस समाज का लंबे अरसों से लगाव है, पूरे समाज का आपके परिवार से लगाव है, और यही कारण है कि हम परिवार के सदस्य के रूप में जो विदाई फंड आपका है उससे हम प्राप्त कर सकते हैं, और आने वाले समय में शासन की ओर से भी जो सुविधाएं हमें मिलेगी उसके प्रति भी हम आशान्वित रहेंगे। मान्यवर, लंबे समय से ये विद्यालय विभिन्न प्रकार की समस्याओं से चलकर आगे बढ़ रहा है, और आपके सहयोगी आदरणीय बीडी कला साहब ने एक बार घोषणा की थी कि पुष्टिकर महाविद्यालय बने, तो इस निमित्त भी आपका यथापेक्षित सहयोग सादर निवेदित है। हम उम्मीद करते हैं जब भी संस्था की कार्यकारिणी इस निमित्त आपसे निवेदन करें, आप उसमें भी सहयोग करेंगे। एक और निवेदन नागौर जनता की ओर से कि जो मांग सोलर की इस विद्यालय में की गई है, अधिकांश विद्यालयों की विकास समितियों में आपके प्रतिनिधि सभी में हैं, उन प्रतिनिधियों के माध्यम से सभी विद्यालयों में यदि ये सुविधा प्रदान की जाए तो एक राष्ट्रीय सेवा भी है, और विद्यालयों के जो खर्चों का भार है वो स्वतः ही कम हो जाएगा। उन्हें मैं नागौर शहर की जनता, विद्यालय परिवार, पुष्करणा समाज एवं शिक्षा विभाग के समस्त संगठनों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं आभार प्रकट करता हूं कि आपने व्यस्तम समय निकालकर जो समय इस विद्यालय को दिया और अन्य विद्यालयों को आप दे रहे हैं और नागौर के समन्वित विकास के प्रति आप सदैव चिंतनशील और लगनशील है। आप जीवन पर्यंत स्वस्थ रहें, समाज और राष्ट्र की इसी प्रकार सेवा करते रहें। सभी हमारे युवा साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके दिशा निर्देशों की पालना करेंगे, ऐसा मैं आश्वासन देता हूं। जय भारत, जय हिंद।
1: भाभी जी इसे जा रहा हो?
3: टाबरा ने स्कूल में भर्ती करावन ने।
1: किसी स्कूल में?
3: देखी तो घनी ही पर पुष्टिकर सेकेंडरी स्कूल जिसी स्कूल को मिली कड़ो अनुशासन, शांत माहौल, शानदार पढ़ाई और जोरदार परिणाम।
1: तो बच्चे रुको, मैं भी चालू, हमारा टाबरा ने भी भर्ती कराना है। जी हाँ, श्री महर्षि जनार्दनगिरी पुष्टिकर माध्यमिक विद्यालय रामबाग नागौर। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें 9414244352।
4: विद्यालय की कक्षा 4 की छात्रा सुश्री मिष्टी हर्ष ने कुछ यूं आभार व्यक्त किया।
5: माननीय विधायक महोदय, विद्यालय के सम्मानित पदाधिकारीगण, गुरुजन, अभिभावक एवं मेरे प्रिय साथियों, आज का दिन हमारे श्री महर्षि जनार्दनगिरी पुष्टिकर माध्यमिक विद्यालय नागौर के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का अवसर है। आज का हम अपने विद्यालय की नवीन कंप्यूटर लैब का उद्घाटन के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। मैं विद्यालय परिवार की ओर से नागौर का माननीय विधायक श्री हरेंद्र मिर्धा जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करती हूँ। आपने अपने विधायक कोष से 5,00,000 रुपए स्वीकृत कर हमारे विद्यालय को 7 कंप्यूटर, 1 डिजिटल बोर्ड तथा 1 AC उपलब्ध करवाई है। आपका यह सहयोग केवल उपकरणों का दान नहीं है, बल्कि हमारे उज्जवल भविष्य में किया गया एक अमूल्य निवेश है। माननीय मिर्धा जी, आपका यह सहयोग हमारे लिए सवेर प्रेरणा स्रोत रहेगा। हम सभी विद्यार्थी आपको विश्वास दिलाते हैं कि इन सुविधाओं का पूरा सदुपयोग करेंगे, मन लगाकर अध्ययन करेंगे और अपने विद्यालय, अपने माता पिता तथा नागौर का नाम रोशन करने का हर संभव प्रयास करेंगे। अंत में विद्यालय परिवार की ओर से मैं एक बार पुनः माननीय विधायक श्री हरेंद्र मिर्धा जी का हृदय से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ और आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घ आयु तथा निरंतर जन सेवा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।
1: भाई थारो छोरो तो 10वीं में होनी, काहे रिजल्ट रियो बिरो?
3: अरे लाडली बार भी वो 10वीं में ही हो, पर फेल हो गयो। पच मन कोई बतायो कि श्री महर्षि जनार्दन गिरी पुष्टिकर माध्यमिक विद्यालय में भर्ती कराए दो और मैं भी की बात मान ली।
1: पच रिजल्ट काहे रियो?
3: अब की बार वो 2nd डिवीजन पास हो गयो। धन्यवाद है स्कूल ने जी को हमारा छोरा की पढ़ाई में रुचि घाल दी।
1: जी हाँ, पुष्टिकर सेकेंडरी स्कूल नागौर।
4: माननीय विधायक श्री हरेंद्र मिर्धा ने अपने उद्बोधन में कहा,
6: मैं बहुत खुशी है कि मैं आपके विद्यालय के किस्म के रूप में काम आ सका। मेरे प्रयास हमेशा रहा है, पिछले 4-5 बार तो मैं एमएलए यहाँ से मैं रह लिया और हर मोहल्ले में, हर समाज में, हर स्कूल में कहने का ही मैंने योगदान करने का प्रयास किया है। जैसे जैसे लोगों की मांग है उस मांग को पूरी मैंने की है और उसी क्रम में आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सोलर प्लांट भी मैं बहुत जल्दी मैं लगवा दूंगा और आपके माध्यम से और भी स्कूलों में, जैसे आपने कहा बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है, कि ये अच्छा है कि जो भी यहाँ की अच्छी स्कूल हैं उसमें अपन कोशिश करके जितना जल्दी और क्रम वाइज अपन इसको ऐसा कराएं कि अपने खुद के पांव पे खड़े हों। बिना जन सहयोग के हर चीज गवर्नमेंट पे छोड़ना ये अनिवार्य होगा और एक टेंडेंसी बन गई है कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ करना गवर्नमेंट ही करेगी। जब तक आम आदमी, जनता, समाज गवर्नमेंट के पॉलिसी में, गवर्नमेंट की मदद करके हम सब आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक सही मायने में विकास नहीं हो सकता। और विकास में आम आदमी की, समाज की भागीदारी बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं तो मेरे हिसाब से आपके जनप्रतिनिधि होने के कारण, चाहे वोट दिए चाहे नहीं दिए, एमएलए तो मैं आपका हूँ और 5 साल में एमएलए आपका रहूंगा। तो आपसे निवेदन मेरा इतना है कि जितना आप हमारा सहयोग ले सकें आप सहयोग लें, और विश्वास दिलाता हूँ कि आप जब कभी मुझसे सहयोग मांगेंगे मैं आपको निराश नहीं करूँगा। क्योंकि मेरे इस विधानसभा क्षेत्र में, किंगसर में, नागौर में अक्सर जो मेन काम है विकास के, वो सब हो चुके हैं। गांव में कोई लंबी चौड़ी आवश्यकता नहीं है किसी चीज की। और राजस्थान की सबसे विकसित कॉन्स्टिट्यूंसी में से नागौर किंग्स रही है, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं लड़ रहा हूँ। तो ये 500 करोड़ रुपए जो मुझे हर साल मिलते हैं आपके नाम से, अब जितना सहयोग लेने से आप लीजिए। मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब कभी आप लोग आएंगे आपके सहयोग में कोई कमी नहीं होगी। आपने बहुत स्वागत किया, मन से स्वागत किया, आशीर्वाद भी दिया, आगे के लिए आश्वासन भी दिया। इन सबको जोड़ते हुए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये सोलर प्लांट का ब्याज जो भी एस्टिमेट है, जितना भी इसका खर्चा होगा उसका डिटेल आप मुझे भिजवा दीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ की जल्दी से जल्दी हो जाए। और इसके अलावा और भी कुछ हो, मैं यहाँ सीमित नहीं कर रहा हूँ अपने आप को, और भी कुछ विद्यालय में आपको आगे जमाने के लिए, प्रोग्रेस के लिए, बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए अपन जो भी कर सके आप और हम लोग सब मिलके निश्चित रूप से करेंगे। और नागौर को एक नई दिशा देंगे, नागौर के बच्चों को नई दिशा देंगे कि वो बड़े होके अच्छा शिक्षा प्राप्त करके समाज में, देश में अपना भूमिका निभा सके और नागौर का नाम रोशन हो। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
1: विद्यालय प्रांगण में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में विधायक महोदय को अभिनंदन पत्र पूर्व पार्षद श्री नरेश पुरोहित और जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर श्रवण राव ने भेंट किया, जिसका वाचन संचालनकर्ता श्री आनंद पुरोहित ने किया।
7: श्री जनार्दन गिरी पुष्टि कर माध्यमिक विद्यालय नागौर, अभिनंदन पत्र। सेवा, समर्पण और शिक्षा के प्रति आपके अटूट योगदान के लिए श्री हरेंद्र मिर्धा माननीय विधायक नागौर द्वारा श्री महर्षि जनार्दन गिरी पुष्टिकर माध्यमिक विद्यालय नागौर हेतु अपने विधायक कोष से 5 लाख रुपए स्वीकृत कर विद्यालय में कंप्यूटर लैब हेतु आवश्यक सामग्री यथा 7 कंप्यूटर, 1 AC 2 टन क्षमता तथा 1 डिजिटल बोर्ड भेंट करने पर विद्यालय परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आपके उदार सहयोग से हमारे विद्यार्थियों के लिए आधुनिक तकनीक से सुसज्जित कंप्यूटर लैब की स्थापना संभव हुई, जिससे उनके उज्जवल भविष्य के द्वार और अधिक विस्तृत हुए हैं। यह सहयोग न केवल शिक्षा के क्षेत्र में आपकी गहरी संवेदनशीलता का प्रतीक है, अपितु समाज और राष्ट्र निर्माण के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का भी जीवंत उदाहरण है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सदा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और समाज सेवा के उस पुण्य कार्य में निरंतर अग्रसर रहें। हार्दिक आभार भेंट करता समस्त विद्यालय परिवार श्री महर्षि जनार्दन गिरी पुष्टि कर माध्यमिक विद्यालय नागौर।
8: भाभी जी इसे जा रहा हो
3: टाबरा ने स्कूल में भर्ती करावन ने।
8: किसी स्कूल में
3: देखी तो घनी ही पर पुष्टिकर सेकेंडरी स्कूल, जिसे स्कूल को मिली खड़ो अनुशासन, शांत माहौल, शानदार पढ़ाई और जोरदार परिणाम।
8: तो बच्चे रुको, मैं भी चालू, हमारा टाबरा ने भी भर्ती करावना है। जी हाँ, श्री महर्षि जनार्दन गिरी पुष्टिकर माध्यमिक विद्यालय रामबाग नागौर। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें 9414244352।
1: इसके पश्चात कंप्यूटर लैब का उद्घाटन फीता खोलकर किया गया। श्री महर्षि जनार्दन गिरी पुष्टिकर माध्यमिक विद्यालय के व्यवस्थापक श्री आनंद पुरोहित ने विद्यालय के बारे में जानकारी देते हुए कहा,
9: येषा न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम, न गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिन लोगों में विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म नहीं है, वे पृथ्वी पर केवल भार हैं। वे मनुष्य के रूप में पशुओं के समान विचरण करते हैं और पशुता से मनुष्यता की ओर ले जाने का काम करता है एक विद्यालय। आज से 43 साल पहले नागौर शहर में समाज में शिक्षा की अलख जगाने के उद्देश्य से एक संस्था की स्थापना हुई और इसकी स्थापना भी बड़ी रोचक है। नागौर के प्रसिद्ध मुंदियाड़ खरनाल मेले में मौज मस्ती के लिए जुटे पुष्टिकर समाज के युवाओं ने मेले के बाद चिंतन किया कि हमारी सकारात्मक ऊर्जा का सदुपयोग कैसे समाज और राष्ट्र के लिए हो सकता है। तो उस चिंतन के प्रतिफल के रूप में स्थापना हुई पुष्टिकर नवयुग मंडल की। उस पुष्टिकर नवयुग मंडल के तत्वावधान में संगठन का निर्माण हुआ श्री महर्षि जनार्दन गिरी पुष्टिकर शिक्षण संस्थान, और उसी संस्थान के अधीन श्री महर्षि जनार्दन गिरी पुष्टिकर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना मुथों की बारी में एक घर में हुई, और फिर वह क्रमोन्नत हुई जो माही दरवाजा के बाहर रामबाग में आज अपने दो मंजिला भवन में संचालित हो रही है, और अब इसके साथ अंग्रेजी माध्यम का भी स्कूल वहां संचालित होता है। महर्षि जनार्दन गिरी जी के नाम पर इस विद्यालय का संचालन होता है, जो नागौर में जन्मे एक महान संत थे जिन्होंने नागौर में बड़लेश्वर बगीची में गायत्री के 3 पुष्चरण किए, और बाद में आप कैलाश पीठ ऋषिकेश के दूसरे पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वर हुए। आप ही के आशीर्वाद से सामाजिक संस्था द्वारा संचालित इस विद्यालय को आज 43 साल पूरे हो चुके हैं। 18 अप्रैल 1983 के दिन स्थापित यह विद्यालय केवल शिक्षा के लिए समर्पित है और एक अलाभकारी संस्था है। आज इस विद्यालय में दोनों माध्यम की पढ़ाई के साथ कंप्यूटर शिक्षा, खेल के लिए इंडोर गेम्स, डिजिटल एजुकेशन, टीवी और प्ले ग्रुप के लिए बच्चों के लिए एयर कंडीशनर, खेल का मैदान और शुद्ध पेयजल जिसमें यूवी फिल्टर युक्त पानी और वाटर कूलर भी है। विद्यालय की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर बच्चे जब भोजन करते हैं तो वो भोजन जमीन पर नहीं रखते, उसके लिए भी पाटे बनवाए हुए हैं 6 फीट लंबे और 1 फीट चौड़े 6 इंच ऊंचे, ताकि बच्चों के टिफिन बॉक्स जमीन पर ना रखने पड़े। ये भी एक अलग व्यवस्था है जिसे हाइजीन को ध्यान रखते हुए किया हुआ है। विद्यालय की विशेषताओं में एक विशेषता ये भी है कि विद्यालय में नियमित रूप से गीता स्वाध्याय करवाया जाता है। महात्मा गांधी ने कहा, जब भी मुझे निराशा घेरती और कोई आशा दिखाई नहीं देती तब मैं भगवत गीता की शरण लेता हूँ। गीता का कोई ना कोई श्लोक मुझे सांत्वना देता है और मैं कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुराने लगता हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भगवत गीता का अध्ययन करते थे और उससे कर्म योग, आत्मानुशासन तथा कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा ग्रहण करते थे। स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो, विनोबा भावे आदि विभिन्न महान विचारकों, संतों, वैज्ञानिकों ने गीता के अध्ययन से और गीता के स्वाध्याय से अपने आप को निखारा है। आज बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित यह विद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है, और इसी विद्यालय में कंप्यूटर एजुकेशन के लिए कंप्यूटर लैब के निर्माण के लिए नागौर के माननीय विधायक श्री हरेंद्र मिर्धा ने अपने विधायक कोष से 5 लाख रुपए स्वीकृत कर 7 कंप्यूटर सेट, 1 एसी 2 टन का और 1 डिजिटल बोर्ड भेंट किया है। और आज हमारे इस उद्घाटन सत्र में आपने घोषणा की है कि आप 10 केवी का सोलर प्लांट भी हमारे विद्यालय में विधायक कोष से लगवाएंगे। आज विद्यालय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समस्त समाज की ओर से जो सहयोग किया जाता है वो अनुकरणीय है, क्योंकि एक अलाभकारी संस्था के लिए सभी लोग सहयोग करना चाहते हैं। हम उन सभी सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।
1: कार्यक्रम में संस्था के संस्थापक सदस्य और प्रथम अध्यक्ष श्री विजय शंकर व्यास, प्रथम व्यवस्थापक श्री बंशीलाल पुरोहित, श्री घनश्याम लाल आचार्य, श्री रविन्द्र कुमार बोड़ा, श्री इलाही बख्श खिलजी, पूर्व पार्षद नगेंद्र पुरोहित, पार्षद शिवदान चारण, संस्था की उपाध्यक्ष श्रीमती चंद्रकला व्यास, सचिव श्री सुनील हर्ष, कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती रेखा बोड़ा, श्रीमती सरोज पुरोहित, श्रीमती अनिता हर्ष, श्रीमती गीता पुरोहित, पुष्टिकर पंचायत के सचिव एडवोकेट देवेंद्र राज कल्ला, प्रधानाध्यापक महेंद्र सिंह चारण, दिनेश मेहरा, शकुंतला सोनी, कुसुम सेन, रानी ओझा, दीपक भाटी, दीपिका ओझा, हीना परवीन, जानवी हर्ष, अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित थे। इस रेडियो रिपोर्ट में वाचक स्वर और प्रस्तुति सहयोग अहमद अली का था।
10: हर कहीं अपने बच्चों को पढ़ाने की क्या है मजबूरी?
11: अच्छे स्कूल की आपकी खोज हुई अब पूरी।
10: अब मत करो भूल
11: और शीघ्र पहुँचो
10: MJP इंग्लिश स्कूल।
11: जी हाँ, कड़ा अनुशासन, शांत माहौल, शानदार पढ़ाई और जोरदार परिणाम के लिए
10: श्री पुष्टिकर सेकेंडरी स्कूल और MJP इंग्लिश स्कूल, रामबाग माही दरवाजा, नागौर। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें 9414244352।
1: इस रेडियो रिपोर्ट के प्रायोजक थे श्री महर्षि जनार्दन गिरी पुष्टिकर माध्यमिक विद्यालय नागौर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री महर्षि जनार्दन गिरी पुष्टिकर महाविद्यालय माध्यमिक विद्यालय नागौर में विधायक कोष से निर्मित कंप्यूटर कक्ष के लोकार्पण कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अशोक कुमार गोयल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देश का FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आइए सुनते हैं सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान बड़ी खाटू में आयोजित कबीर जयंती समारोह की रेडियो रिपोर्ट, जिसमें वाचन और प्रस्तुति सहायक हैं मोहम्मद शरीफ छीपा।
1: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत डॉक्टर नानक दास जी महाराज, अखिल भारतीय कबीर मठ सद्गुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान बड़ी खाटू, जिला नागौर, राजस्थान।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। संत शिरोमणि महान समाज सुधारक और निर्गुण भक्तिधारा के अमर गायक संत कबीरदास जी की जयंती के पावन अवसर पर नागौर जिले के बड़ी खाटू में आयोजित कबीर महोत्सव और कबीर जयंती समारोह के अवसर पर देशों से भी मेहमान पधारे। इसके अलावा भारत के कोने कोने से, अनेक राज्यों से इस महोत्सव में लोग शामिल हुए। संत कबीर ने अपने दोहों और वचनों के माध्यम से मानवता, समानता, प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया। आज भी उनके विचार समाज को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रेरणा को आत्मसात करते हुए बड़ी खाटू की पावन धारा पर हजारों श्रद्धालुओं, संत महात्माओं, समाज सेवियों और गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में कबीर जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। पूरे क्षेत्र में भक्ति, अध्यात्म और सामाजिक समरसता का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। पौथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया ने कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। संत कबीरदास जी का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। बड़ी खाटू में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव ने एक बार फिर समाज को प्रेम, सद्भाव, भाईचारे और मानवीय मूल्यों की प्रेरणा दी है। इस अवसर पर संतों के प्रवचन, भजन संध्या, सामाजिक चेतना से जुड़े संदेशों तथा विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान किए गए कबीर कोहिनूर सम्मान ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। श्रद्धालुओं की विशाल उपस्थिति और उनकी आस्था ने इस आयोजन की गरिमा को और अधिक बढ़ाया। हमें बताया,
1: अखिल भारतीय कबीर मठ सदगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत डॉक्टर नानक दास जी महाराज और 629वां कबीर महोत्सव को लेकर के पिछले 21 जून अंतर्राष्ट्रीय दिवस से 8 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारम्भ किया था, जिसमे अखंड हिंद फौज के बच्चों द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और रोज प्रतिदिन प्राथमिक सैन्य प्रशिक्षण शिविर के दौरान बच्चे रोज यहां पर अच्छा अपना गतिविधियां कर रहे थे, जिसमें नशा मुक्ति, समाज सुधार, राष्ट्रभक्ति का उन्होंने उनको पाठ पढ़ाया, उनको बताया और बच्चे सुबह 3:30 बजे उठ करके अपना क्रिया रोज करते थे। और इसी दौरान कबीर कोहिनूर कार्यक्रम में हर साल हम भारत के अलग अलग राज्यों से, पूरे भारतवर्ष से चुन चुन के हम 21 लोगों का चयन करते हैं और हमने अभी चयन करके उनको कबीर कोहिनूर सम्मान दिया है। साथ ही भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग यहाँ इकट्ठे हुए और राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम हुआ। बड़ी खाटू का और छापरी डूंगरी का ये जो स्थान है, ये सदगुरु कबीर साहब का एक आगमन पवित्र भूमि है, जहाँ पर कबीर साहब खुद यहाँ आए थे और उन्होंने बोला था, चलती चक्की दे के दिया कबीर सा रोय, दो पाटन के बीच में सबूत बचा नहीं कोई। ये साखी जो कबीर साहब ने बोली है वो बड़ी खाटू में आके बोली है, क्योंकि बड़ी खाटू छापरी डूंगरी की पहाड़ी पर जो पत्थर है वो ऋण जिण का पत्थर है और यहाँ पर घटिया बनती थी। खाटू की घटिया विशेष प्रसिद्ध है और कबीर जी जब भ्रमण करते थे और उन्होंने एक अपनी साखी में बोला है, बीजक में, कि देश विदेश में फिरा गांव गांव की खोरी। तो उस भ्रमण के दौरान कबीर साहब बड़ी खाटू में आए थे तो उस पुस्तक का विमोचन हुआ, बड़ी खाटू में सदगुरु कबीर साहब का प्रवास। ऐसे करके कम से कम 25 किताबों का यहाँ विमोचन हुआ और 21 कोहिनूर सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के कोने कोने से आए विभिन्न पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मेघराज सिंह जी रोयल, जिन्होंने भविष्य में कबीर के मिशन पर और कबीर की शिक्षा को समाज में लाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा एक प्लानिंग उन्होंने तैयार किया है और वो हमारे प्रोजेक्ट को भी उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में ऐड किया है। ऐसे महान विभूति यहाँ पधारे थे और आज का जो कार्यक्रम था वो हमारे आचार्य संतों के सानिध्य में कबीर साहब की गुरु गादी वैष्णव परंपरा में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की पीठ से जगत गुरु रामदृष्ट आचार्य जी महाराज के विरक्त शिष्य के रूप में उत्तराधिकारी जी राघव दास जी महाराज हमारे कार्यक्रम पधारे और उन्होंने सबको आशीर्वचन दिया। और इसी कार्यक्रम में उमेश योगी जी महाराज, जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उन्होंने भक्ति का और योग का प्रचार किया है, उमेश योगी जी महाराज भी पधारे और उनके साथ में जो यूरोपियन जो एक बहन है वो भी आई और उन्होंने अपना कबीर जी के प्रति अपना वक्तव्य रखा और एक साथ 3 पद्मश्री यहाँ पर पधारे, जो पर्यावरण के क्षेत्र में इमताराम जी बांबू साहब थे और मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टर भूपेंद्र जी थे और हमारे संगीत कला में कबीर वाणी पर कालूराम जी बामणे जी थे। ऐसे करके बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजन हुआ और कोहिनूर से सम्मान किया। हंसी खुशी आनंद उत्सव के साथ में आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ और सभी लोग भोजन प्रसाद करके अपने अपने घर आज प्रस्थान किया।
0: आप हैं?
2: मैं परवसर से ताराचंद बुगालिया लैब टेक्नीशियन पद पे सीकर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ और हम पिछले 6 साल से कबीर मठ बड़ी खाटू से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में हमने कार्यक्रम कराया है, देश के विभिन्न राज्यों से पधारे हुए लोगों का हमने सम्मान किया है। बड़ी खाटू कबीर आश्रम ने महंत नानक दास जी महाराज का अभिनंदन स्वागत हम करते हैं और उन्होंने देश से ऐसी महान हस्तियों को चयनित करके कबीर कोहिनूर से सम्मानित किया है और 2022 में मुझे भी कबीर कोहिनूर सम्मान मिला पर्यावरण और सामाजिक क्षेत्र में। धन्यवाद।

0: इस अवसर पर गुजरात, गुड़गांव, ऋषिकेश, करनाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, नाथद्वारा, छत्तीसगढ़ अनेक राज्यों से जो प्रतिभाएं सम्मानित हुई उनका कबीर कोहिनूर के नाम से सम्मान किया गया।
1: नमस्कार, मैं विजय कुमार शर्मा, सनातन धर्म रक्षा संघ अजय मेरू राजस्थान से। मैं पिछले काफ़ी लंबे समय से यहाँ महंत नानक दास जी महाराज से जुड़े हुआ हूँ, मगर आने का सौभाग्य मुझे पहली बार प्राप्त हुआ। इनकी कबीर वाणी हमें रेगुलर प्राप्त होती रहती है, हर सुबह हमारी कबीर वाणी से होती है, कबीर साहब के दोहों से होती है। इसके अलावा नानक दास जी ने जो बुक्स लिखी हैं, अभी हाल ही में जो बड़ी खाटू में नानक कबीर दास जी जो पधारे थे उस पर बुक का जो प्रकाशन किया गया है वो वास्तव में एक ज्ञानवर्धक बुक है। इसके अलावा आज जो 629वां कबीर प्राकट्य महोत्सव हुआ उसमें 3 पद्मश्री का एक साथ एक मंच पर विराजित होना, स्पेन और भारत के धर्म गुरुओं का एक साथ एक मंच पर होना, साथ में यूरोप से जो अभिनेत्री आई हैं, और अब ये साबित करता है कि अभिनेता और अभिनेत्री जो पश्चिमी देशों के हैं वो भी कबीर साहब से प्रभावित होकर हमारे धरती पर आने लगे हैं। कबीर साहब की वाणी को दुनिया भर में पहुंचाने का कार्य स्पेन से जैसे उमेश योगी जी महाराज कर रहे हैं, और महंत डॉक्टर नानक दास जी महाराज देश ही नहीं देश की सीमाओं को पार कर दुनिया भर में कबीर साहब के संदेश को, उनकी साखियों को, उनकी बंदगी को जो पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, ये वास्तव में सराहनीय कार्य है। और मैं सराहना करता हूँ, उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। अखिल भारतीय कबीर मठ यूँ ही तरक्की करता रहे और देश दुनिया में एक ऊंचा नाम करे सनातन धर्म के प्रचार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, कबीर जयंती के उत्सव पर बड़े खाटों में हमारे बीच में साधु संत भी आए हैं। आप यूरोप से पता रहे हैं सर, आपका नाम और कैसा लग रहा है आपको, और थोड़ा बताएं कबीर दास जी पे।
3: यह तो बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हम लोग सब कबीर जयंती छोटी खाटू में, ये कबीर आश्रम जो है जो नागौर में है छोटी खाटू में, हमारे जो डॉक्टर नानक दास जी हैं इन्होंने आयोजित किया, और यहाँ देश विदेश पूरे भारत से अनेकों लोग आए और हमें भी आने का यहाँ पर आमंत्रण और अवसर मिला। हम स्पेन से, स्वामी उमेश योगी नाम है मेरा, ऐसे हम भारत के हैं और स्पेन में रहते हैं, ऋषिकेश में भी आश्रम है। तो यहाँ आकर के सभी संत और प्रबुद्ध जनों के साथ में हम लोगों ने कबीर जयंती का जो समारोह मनाया, बहुत आनंद आया, बहुत ज्ञानवर्धक था, बहुत उत्साहवर्धक था। इसमें युवक और हर उम्र के और हर क्षेत्र के व्यापारी और संत और जो है राजनेता और हर तरह के लोग आए, किसान, देश की जनता ने के लिए बड़ा अच्छा मैसेज किया गया, और मैं समझता हूँ राजस्थान और देश के लिए यह एक अच्छा विषय है। कबीर के आदर्शों में भारत सरकार चल रही है, मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत जैसे आगे बढ़ रहा है, राजस्थान की प्रगति हो रही है, देश की प्रगति हो रही है। हम सब ऐसे ही इन संतों के आदर्श चरित्रों को और उनके शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, जीवन में धारण करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे, यही मेरी शुभकामना है। हरिओम, जय हिंद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कुछ श्रद्धालु जो हैं बहुत दूर दूर से आए हैं इस समारोह में, कबीर कोहिनूर सम्मान भी जिनको मिला है, हम बात करते हैं। आपका नाम?
4: संगीता शर्मा।
2: संगीता जी, आप क्या करते हैं?
4: मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ और लेखिका हूँ।
2: मनोवैज्ञानिक और लेखिका की आपको ये रुचि कहाँ से लगी, किससे इंस्पायर हुए आप?
4: मेरे खुद के अनुभवों से ही, मेरी जो जीवन में अनुभव रहे हैं उन्हीं से मुझे लेखक बनने की और मनोविज्ञान की प्रेरणा मिली।
2: आज आपको कबीर कोहिनूर सम्मान भी मिला है, कैसा लग रहा है?
4: बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे अच्छा लग रहा है कि यहाँ, मतलब ये सम्मान एक तरीके से सराहना है जो आगे लाइफ में बहुत मोटिवेट करेगा और इसी फील्ड में बेहतर करने के लिए।
2: आज के इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे?
4: आज के इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहूँगी, मतलब सब बहुत अच्छा था, और ये सम्मान आगे प्रेरणा का काम करेगा जिससे हम अपने, मैं अपने फील्ड को और बेहतर बनाऊंगी, अपने काम को और बेहतर ढंग से कर पाऊंगी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कभी किसी तरह की काम में कोई परेशानी नहीं होती है या किसकी सहायता लेते हैं?
4: सब फैमिली सपोर्ट रहता है मेरा, और फिर सब प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं लेकिन सब हो जाता है फैमिली सपोर्ट की वजह से।
2: आपकी एजुकेशन के बारे में बताएं आप।
4: मैंने मास्टर्स किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और मेरा UGC नेट क्लियर है, तो आगे अभी मैं PhD करने वाली हूँ और गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ।
2: हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू सो मच सर।

0: पौथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया ने कोई, ढाई आखर प्रेम का पड़े सो पंडित होई। संत कबीरदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य कबीर महोत्सव 2026 एवं कबीर कोहिनूर सम्मान समारोह का सफलतापूर्वक एवं गरिमामय समापन संपन्न हुआ। इस अवसर पर संत महात्माओं, अतिथियों, सम्मानित प्रतिभाओं, सैकड़ों श्रद्धालुओं की गरिमामय उपस्थिति ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। आयोजकों की ओर से सभी सहयोगियों, अतिथियों और सहभागी जनों का हार्दिक आभार। कबीर का संदेश प्रेम, सद्भाव और मानवता युगों युगों तक हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय, विश्वविख्यात ऑर्थोपेडिक्स एवं स्पाइन सर्जन देहरादून हिमाचल प्रदेश, ने अपने विचार यूं व्यक्त किए।
1: यदि मैं किसी का आभार सबसे पहले प्रकट करूं तो महान नानक दास जी का प्रकट करूं, क्योंकि उन्होंने बुलाया है। और आप सब लोगों को, जो लोग नए लोग हैं, खास तौर से जो बधाई ले रहे, आज सम्मान ले रहे हैं, कभी भी आप जाएं तो लोगों का जरूर आप धन्यवाद दें। एक तो आयोजक का, क्योंकि वही आपको बुलाता है, और दूसरे संचालक, उस संचालक ये है कि ऐसे सूत्रधार हैं कि जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है, बल्कि यही बता सकते हैं। तो यदि आपको सब कुछ अपने बारे में बतवाना है तो सबसे पहले संचालक को बताएं कि हमारे बारे में ये बात आप जरूर बताएं।

0: आइए, क्योंकि ये सम्मान मौसम अवसर है कबीरदास जी का, तो मैं तो ये कहूंगा कबीरदास जी से बहुत से अपने देश में समाज सुधारक हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन कबीरदास जी जैसा समाज सुधारक मैं नहीं समझता हूं कहीं कोई दूसरा। उन्होंने जो जाति और धर्म के बीच में या जो लेखों के लिए कहा हुआ है, और वैसे भी कट सत्य बोलना बड़ा मुश्किल का काम होता है, क्योंकि हर आदमी जो महिला है वहाँ पे सर को हिला रही है, मैं इस बात को आपको समझ सकता हूँ, क्योंकि झूठ तो बोला जा सकता है और कुछ भी कह सकता, मौका मिलने पे आप किसी की तारीफ कर दें, जो जिसके सामने आए उसकी तारीफ कर दें तो बोलिए आपके लिए तालियां बजाएगा ही, और पीठ पीछे कुछ भी कह दिए तो उसे पता क्या कि आप क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। मैं चूंकि डॉक्टर हूं और डॉक्टर के नाते में आप सब लोगों को एक यही बात कहूंगा कि भोजन शिक्षा स्वास्थ्य सबकी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, और मैं समझता हूं ये सबको मिलना चाहिए। यदि आप लोग यहां पे शिक्षित ना होते तो शायद मैं समझता हूं मैं यहां आप लोग यहां पे ना होते, और उससे भी ज्यादा यदि स्वस्थ ना होते तो यहां पे ना आ पाते, और यदि सोचिए कि बचपन में भोजन नहीं मिला होता तो हम लोग यहां पे होते भी नहीं। तो मैं समझता हूं सब लोगों को इनको होनी चाहिए, सरकार को समाज को इस तरह से करना चाहिए। अभी आपने बताया हमारे मुख्य अतिथि जी इस तरह का कोई काम कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा है यदि हमारा आपका अस्तित्व है क्या, तो हमारे अभी पद्मश्री भाव जी ने कहा हुआ है कि हमारा अस्तित्व सिर्फ है वो पर्यावरण से, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, तो हम सब लोगों को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। पेड़ ही नहीं, आप सोचे कि हम लोग बहुत है हमारे देश में, मैं डॉक्टर के नाते कहूंगा सर, यदि कोई गलत नहीं कह रहा हूं, अब घर घर में मोहल्ले में तो आपने देख ही लिया होगा किसी न किसी के कैंसर हो, और मोहल्ले पड़ोस में ये भी देख लिया हो किसी न किसी का एक्सीडेंट ना हुआ हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन अब समय ऐसा आ रहा है कि शायद हर किसी की दुर्घटना हो, हर किसी के फ्रैक्चर हो, और कोई बड़ी बात नहीं कि हर किसी के कैंसर हो। उसका कारण सुनिए क्या है, यदि हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो आत्मघाती हैं, यदि आप सोचे पांचवी मंजिल से हम नीचे गिरेंगे तो टूटेंगे कि नहीं, और यदि ये जानते बीजते हुए भी कोई हेलमेट नहीं लगा रहा, सीट बेल्ट नहीं लगा रहा, तो आप नहीं समझते वो आत्महत्या है, दुर्घटना कहाँ पर, पहले तो ये देखिए कि दुर्घटना है आत्महत्या। दूसरी बात मैं कहता हूँ, आपने देखा कैंसर का जो मुख्य कारण है, डॉक्टर के नाते कह रहे हैं, कोई दूसरा कारण ये है, सिर्फ मिलावट, हमारे भोजन में मिलावट है और पानी में कंटामिनेशन है, दूषण है, हवा में प्रदूषण, इन तीनों चीजों में मिलावट का ही कारण है वो है। पंजाब में आपने देखा होगा शहर ही है वो कैंसर से ग्रस्त है, और आपको इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, जो अभी आपने कहा कि जितना पेस्टिसाइड केमिकल्स और जितना हम खा रहे हैं वो नहीं है, मैं तो यही कहूंगा हम सब लोगों को अपने प्रकृति से ही और प्रकृति से लड़ने की जरूरत नहीं।
1: इस मौके पर पद्मश्री कालूराम बामणिया मध्य प्रदेश ने कबीर के भजनों की मनमोहक प्रस्तुति दी।

0: यूरोप से आई सिल्विया डेला रोजा सांचो अभिनेत्री थिएटर निर्देशक, आपने अपनी बात कबीरदास जी पर अंग्रेजी में रखी जिसका हिंदी अनुवाद मनीषा शुक्ला ने किया।
1: आई एम इन द नेक्स्ट सीट,
2: मैं तो तेरे पास में।
1: माय शुगर इज अगेंस्ट योर्स,
2: मैं तुम्हारे से कंधे से कंधा लगा के खड़ा हूँ।
1: आई विल नॉट फाइंड मी इन द स्टूपस,
2: ना मैं
1: यू विल नॉट फाइंड मी इन द स्टूपस,
2: ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद,
1: नॉट इन इंडियन श्राइन रूम्स, नॉट इन सिनेगोगा, नॉट इन कैथेड्रल्स,
2: ना काबे के लास्ट में,
1: नॉट इन मासेस, नॉट इन कीर्तन्स,
2: ना मैं लोगों में हूँ ना मैं कीर्तन में हूँ,
1: नॉट इन लेग्स विंडिंग अराउंड योर ओन नेक,
2: ना ही मैं तुम्हारे आसपास कहीं घूम रहा हूँ,
1: नॉट इन फास्ट,
2: ना मैं उपवास में।
1: व्हेन यू रियली लुक फॉर मी यू विल सी मी इंस्टेंटली,
2: खोजे हैं तो तुरंत ही मिलियो पल भर की तलाश में।
1: दैट्स अ कबीर पोएम दैट आई ऑफर यू। ओके, इट्स अ ग्रेट हॉनर फॉर मी टू पार्टिसिपेट इन दिस सेलिब्रेशन ऑफ कबीर जयंती बर्थ एनिवर्सरी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल गाइड्स इन द वर्ल्ड।
2: मेरे लिए यह बहुत गौरव की बात है कि मैं संत कबीर, जो कि दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरुओं में आते हैं, उनकी जयंती में, उनके जन्म उत्सव में भाग ले रही हूँ।
1: आई कम फ्रॉम बार्सिलोना स्पेन, आई डेडिकेटेड मच ऑफ माई लाइफ टू द वर्ल्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर एज एन एक्ट्रेस, स्टेज डायरेक्टर एंड थिएटर टीचर।
2: मैं यहाँ बार्सिलोना स्पेन से आई हूँ। मैंने अपना अधिकतर जीवन डेडिकेट किया है कला को, संस्कृति को, और एक अभिनेत्री के तौर पे या स्टेज डायरेक्टर के तौर पे या फिर थिएटर में शिक्षक के तौर पे।
1: सो दैट आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस, एंड इन दिस आई डिस्कवर्ड समथिंग एसेंशियल।
2: कला के जरिए मुझे यह अवसर मिला कि मैं अलग अलग जगह के लोगों से मिल पाऊँ, अलग अलग संस्कृति के लोगों से मिल पाऊँ, अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिल पाऊँ और अलग अलग परंपराओं के लोगों से मिल पाऊँ, और इन सबसे मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सीखी।
1: बियॉन्ड डिफरेंस वी शेयर द सेम ह्यूमन फील्स,
2: कि सारे ही हमारे बीच कितनी भी विभिन्नताएं हों, हमें एक एसेंशियल मानव क्वालिटी है, एक भावना है, मानवीय भावना जो हम सबको जोड़ती है।
0: हमें बताया
3: कोमल पालीवाल।
0: कोमल जी कहाँ से आए आप?
3: मैं नादवरा से आई हूँ।
0: तो आप क्या हैं?
3: मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और इंजीनियरिंग कॉलेज में HOD की पोस्ट पर हूँ।
0: तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए इस कबीर जयंती पे पधारे हैं, तो आपको ये लगाव कैसे रहा, कैसे आए आपको, कैसे मोटिवेशन मिला, थोड़ा बताएंगे आप?
3: हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है मुझे सभी लोग बहुत ज्यादा पुट अप करते हैं कि आप AI,
4: गजेंद्र जी, नीमराम जी,
3: आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब, ये वाला जो क्वेश्चन है मुझे सब लोग पुट अप करते हैं कि आप इंजीनियरिंग फील्ड से होकर भी आप कबीर के विचारों पे कैसे। तो देखो, ऐसा है कि ना, पढ़े लिखे से कोई महान विद्वान इंजीनियर नहीं बन जाता है। जो सबसे बड़ी जो चीज़ जो कबीर चीज़ हम जो सीखते हैं, वो बिना पढ़े होकर भी आज उनके ऊपर PhD करी जा रही है। तो इसलिए ये हम लोगों के युवाओं के लिए प्रेरणा की बात है। ये हम युवाओं के लिए प्रेरणा की बात है कि जो जिन्होंने बिना डिग्री ही हम लोगों को PhD कर जितना ज्ञान दे दिया, तो आज अगर उनके पास डिग्री होती तो पता नहीं हमारे देश कहाँ से कहाँ होता उनके ज्ञान की वजह से। और आज इंडिया ही नहीं, अमेरिका की जो एक यूनिवर्सिटी है उसमें एक कबीर नाम का जो एक अलग से ना डिपार्टमेंट बना रखा है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि कबीरों के विचारों को सिर्फ अपने ही देश में नहीं, पूरे विश्व में हम कबीरों के विचारों के बारे में स्टडी करी जा रही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग ए इंजीनियर यहाँ आना मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल रहा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू सर।
0: यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन राजस्थान के डायरेक्टर श्री शक्ति सिंह बांदीकोई ने अपने विचार व्यक्त करते हुए हमें कहा,
5: इन पिछले 2 वर्षों में लगभग 1000 से अधिक बेटे बेटियों को आदरणीय मेघराज सिंह साहब के नेतृत्व में इस यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन ने गोद लिया RS बनाने के लिए और IS बनाने के लिए। और आपको भी खुले में आमंत्रण देते हैं कि ऐसा कोई भी बेटा बेटी जिसके 12वीं क्लास में 85% से अधिक नंबर आए, उनके माता पिता पढ़ाने में सक्षम नहीं हो, उनकी स्थिति ठीक नहीं हो, उस बच्चे के मन में कल कोई एहसास ना आ जाए कि मेरे पिता की यदि स्थिति ठीक होती तो मैं भी पढ़ लिख के उन कुर्सियों पे जाके बैठता जहां से देश की नीतियां क्रियान्वयन होती है। ऐसे बच्चों को गोद लेने के प्रयास का नाम है मेघराज सिंह जी का यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन। और RS और IS के एग्जाम में एक बच्चे का एक सेशन की यदि बात की जाए तो एक सेशन का खर्चा 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए आता है। कंप्लीट रहना खाना, स्टेशनरी, कोचिंग फीस, पीजी फीस के अलावा वो तमाम समुचित सुविधाएं जो एक बालक को जिनकी महती आवश्यकता है। एक बालक का एक सेशन का खर्चा 4 से 5 लाख रुपए है। 1000 बालकों को आपने गोद लिया है, 1000 बालकों को जो तो अभी 2 वर्ष भी नहीं हुए, और इससे पूर्व की यदि अगर बात करें इन 2 वर्षों से पूर्व के 38 वर्षों की, तो ऐसे अनगिनत बेटे बेटियां जो कि आज जाकर देश की उन कुर्सियों पर जाकर बैठे हैं जहां से देश की नीतियां बनती हैं, चाहे डॉक्टर साहब बताऊं, अनेक अनेक डॉक्टर, फौज में अधिकारी, आरएएस कर्मचारी, लिपिक, हर एक फील्ड में ऐसे ऐसे बेटे बेटियां जिन्होंने कि जाकर मां भारती के उन कुर्सियों पर बैठकर परचम फहराया है, उन शख्सियत का नाम है मेघराज सिंह जी और ये यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन। शिक्षा के क्षेत्र में और बात करें तो राजस्थान का एक भी जिला ऐसा नहीं होगा, जिला मुख्यालय और जिला मुख्यालयों से भी बढ़कर आगे बात करूं तो संभवतः एक भी विधानसभा मुख्यालय ऐसा नहीं होगा जहां की शिक्षा के क्षेत्र में बिल्डिंग बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला बनाने के लिए, लोगों के रहने की व्यवस्था कराने के लिए, भवन बनाने के लिए मेघराज सिंह जी के निजी खर्च से पैसा जहां नहीं लगा हो, एक भी मुख्यालय ऐसा नहीं होगा। और अभी फिलहाल 1 महीने पहले ही जोधपुर में ओपनिंग की एक महल नुमा, एक 3 स्टार फैसिलिटी वाले एक हॉस्टल की, आप यदि उसे देखेंगे तो मेरा दावा है कि इन 9 से 10 राज्यों का तो मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि ऐसा एक भी हॉस्टल नहीं बना जो कि महल नुमा, और मारवाड़ की धरती पर हम हैं, मारवाड़ की परंपरागत जो शैली है, स्थापत्य शैली, उसके अंदर बना हुआ, जहां की रिनोवेशन में भी अगले 100 से 200 वर्षों तक एक कील लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उससे भी आगे बढ़कर जो परंपरागत शैली है हमारी उसी के अंदर बनाया, सीमेंट का इस्तेमाल बहुत कम किया, चूने और मिट्टी और उस परंपरागत शैली से, जहां ये दीगर एसी कंप्लीट उसमें एसी लगा कर दिए हैं ताकि बेटे बेटियां 180 से अधिक बेटे बेटियों की पढ़ने की सुविधा के लिए वो एक महलनुमा हॉस्टल बनाकर आपने दिया।
0: साई इतना दीजिए जामे कुटुम सबाई, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। आइए प्रेम सद्भाव समानता और मानवता के अमर संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के इस पुनीत आयोजन का हिस्सा बने। बाला फेरत जुग भैया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। संत कबीर की वाणी हमें सत्य प्रेम और भाईचारे का मार्ग दिखाती है। कबीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए कबीर के विचारों को जीवन में उतारें हर दम हर पल। आपके साथ महंत डॉक्टर नानक दास जी महाराज, बड़ी खाटू। मथुरा से आए अखंड हिंद फौज प्राथमिक सैन्य प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें अनेक विद्यार्थियों ने भाग लिया। आप हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मेघराज सिंह रॉयल, चेयरमैन यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन राजस्थान। आपने हमें बताया
6: लोगों को शिक्षित कैसे करोगे, किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, और ये जातिवाद का जो जहर है ये समुद्र का पानी है, मर्जी है उसमें उतना मीठा डाल लो, कभी मीठे पीने लायक नहीं होगा। हम 3 सब्जेक्ट काम कर रहे हैं, तो जातिवाद का मन भेद मत भेद खत्म करने के लिए अभी इसी महीने के अंदर 1300 से लेकर 1400 बच्चे हमारे पास में हो जाएंगे, जिनकी शक्ति श्री बता दिया, जिनको हम आईएएस आईपीएस आरएएस, वो गरीब बच्चे जो गांव में 12वीं क्लास पढ़ तो लिए पर माँ बापों के पैसे नहीं है, इसलिए उनकी योग्यता गांव की गांव में खत्म नहीं हो जाए, इसलिए ये इस कारण डिसीजन लिया क्योंकि पहले में आज फर्क आ गया, देश में आरक्षण लागू किया गया। देश में जब आरक्षण लागू किया गया, जब ये नहीं सोचा कि हिंदुस्तान की जो 70-80% जनता गांव में रह रही है उनको आरक्षण कैसे मिलेगा, उस टाइम स्कूल कॉलेज शहरों में होते थे और शहरों में जितने लोग थे वो साधन संपन्न थे, उनको जितने नंबर मिले उतने में आरक्षण के माध्यम से चले गए, तो देश में बहुत भारी बड़ी असमानता फैल गई, एक तो योग्य और एक मध्यम।
0: और इस प्रकार सदगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान बड़ी खाटू में भव्य कार्यक्रम का आयोजन का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया प्रतीक कुमार वर्मा ने, वाचक और प्रस्तुति सहयोग मोहम्मद शरीफ छिपा का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अशोक कुमार गोयल। अब इजाजत दें, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत डॉक्टर नानक दास जी महाराज, अखिल भारतीय कबीर मठ सदगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान बड़ी खाटू, जिला नागौर, राजस्थान। What?

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान बड़ी खाटू में आयोजित कबीर जयंती समारोह की रेडियो रिपोर्ट अभी आप सुन रहे थे, जिसमें वाचक और प्रस्तुति सहायक थे मोहम्मद शरीफ छिपा और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अशोक कुमार गोयल। FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: किसान वाणी सुनला सगला बाया ने, भाया ने, टावरा ने, राधेश्याम भाई रा घना हेतु और कोडू राम राम। और मारे सागे आज मनोज भाई। मनोज भाई राम राम।
7: राम राम राधेश्याम भाई आपने और किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाला सगला भाया भाया और नैना टावरा ने घना हेतु घना कोडू राम राम।
6: तो देखो भाई मनोज भाई, यूं तो प्रकृति की मेहरबानी है, सब ठीक ही है, पर अब के जो मौसम मेक में खबर मिले भाई, अब के काई है कि आपा तो घना की जाना कौन बे हना हमजनार जका पढ़िया लिखा मिनक है बे घनी जाने भाई, अब के मानसून की आपकट कमजोर बता वो काई एक अलनीनो अलनीनो की कोई बने
7: नाम रहे
6: को चक्कर बीरी वजह कई जगह बिरखारो असर कम है, मानसून है जो को तेवरुडो टेम है चक्रवात बनिया छोटा चक्रवात प्री मानसून चक्रवात घनी थोड़ आप बिरखा होगी अरे अटे आमने नागौर के आगती पागती मनार लगन ठगे मारवाड़ में घनी जगह खेती भी होगी, तो अत बहुत खुशी की बात है। और आपा अभी चमक भाई खेती होगी कई थोड़ा हाल खेतियां होनी बाकी भी है,
7: बाकी है बट बरसात जरूर है।
6: हाँ बरसात, पर बरसात तो देखो कि जरूरत होती रही मारवाड़ी में कब थे कि मेवड़ा तो बूटा भला कि भाई बांध तो किसान वेर खेत में उब मैं बरसेर धोती तो बिजुड़ी और ऊपर देखे मैं पचो कदा फिर मनाली निकले को मेरी तो, पर बात आ है कि भाई अब टेम के साथ जे मनोज भाई बदलाव नहीं कराना चल देखो कि पच घना पिछड़ जाऊ
7: बिल्कुल सही
6: कि हमने बस में नहीं बात आप कांड कौन कर सकते, बस में वे जकी चीज आप करनी
7: चाहिए।
6: और भाई बात क्यों की जकी बडेरा खेती करता परंपरागत खेती और भी परंपरागत खेती में की थोड़ा गुणों बदलाव कर आजकल जका नया तरीका है जका ने आधुनिक कृषि के
7: बिल्कुल
6: आधुनिक कृषि में की नकी आपने परिवर्तन कर आधुनिक कृषि का जका तरीका भी अगर किसान भाई अपना ही
7: बिल्कुल
6: तो माने देखो कि मुनाफो भी ज्यादा हुई
7: बिल्कुल
6: खर्चो भी कम हुई
7: भी
6: और मेहनत भी कम हुई और फायदो भी गणो हुई, तो इरे ऐसा कई आधुनिक जका तरीका है अपनाना चाहिए। और बेड़ा भी तरीका में देखो एक बोलिया करे बिना अंग्रेजी नाम है प्रिसीजन फार्मिंग भी मैं कहीं वे कि आजकल भाई वो एक सैटेलाइट टू एडा लाइगुड़ा बे जीपीएस सिस्टम जो गाड़ी में बैठा है मापन रस्तो बतावे नहीं भाई अब आगे आऊं जीवनो मुड़नो डावो मुड़नो आगे 10 किलोमीटर भाई गांव है भी हिसाब खेती में भी आजकल भी जीपीएस हुआ पतो लगन ढोगो भाई कट है के फसल की बढ़वार हो रही है कट बढ़वार कम हो रही है ऐसी आपने भी चीज जुड़ना चाहिए।
7: और भाई चीज मैंने आप ड्रोन भी चल है मान लो 100 बीघा जमीन है आदमी सो तो बीमारी कट लगी है कट सूखो है कट थोड़ा पानी पड़ियो है कना सोदे एक भी ड्रोन उड़ा श्याम भाई फोटो आज और अपन ठा पड़ जाए फलाने खेचड़ी कने इतना मीटर दूर माते
6: भाई फोटो नहीं है ड्रोन आले एड़ा आएगा कि खेत में दवाई छिड़कन को काम भी ड्रोन करे
7: बिल्कुल करे
6: खेत में खाद छिड़कन को काम भी ड्रोन करे और खेतरी रुकाली रो काम भी ड्रोन करे कटी खेत में कोई भाई दाव डंडो बड़गो है तो आ तकनीक अपन है पूरी काम आवे। और मेरे साथ भाई अब तो एड़ो जमानो आएगो कि भाई पहली तो कहता कि माटी है जकी भाई माते धरती में माथो दीवड़ा धरती माता रेत है जो को धान पैदा करे, अब भाई एड़ी तकनीक आएगी मनोज भाई जैसे हाइड्रोपोनिक्स बोले भी में माटी की जरूरत ही कोनी
7: खाली पानी में हो गया
6: पानी में पोषक तत्व मिला परार एड़ा बे गमला में एड़ी बोतल में चीजा पैदा हो जाए जो आलू है आलू तो भी हाइड्रोपोनिक्स तकनीक इतना बढ़िया और साफ सुथरा बढ़िया पौष्टिक बने कि हमने जमीन में तो पैदा 1 बीघे में वे जीती थी 1 10

0: भाई इधर सिर्फ कमरे में पैदा
1: कमरे में करता है। बहुत सही बात।
0: तो अभी एक तकनीक
1: बात बताइए, हमारे जान बिना पानी की वर्टिकल खेती भी करना
0: बात ठीक भाई। देखो ढलान बने नहीं, तीन मंजिलो मकान है जो बालकोनी में भी अलग अलग सीढ़िया टाइप बना ली, के मायने भी
1: बना लो। तो कहीं है जान सब्जी उगावे, दूजी कोई फसल छोटी मोटी कोई उगावे, छोटी छोटी फसल ले
0: भाई घर में आप रे साग सब्जी घर वास्ते आपकी कोई सोसाइटी वास्ते बैठा बार वास्ते तो किचन गार्डन जके ने वो तो बनी जावे,
1: छोटो मोटो खर्चो भी निकल जावे।
0: हाँ बिल्कुल भाई, खर्चो खाऊन कोई तो है, घर में खाऊन की चीज फोगट में मिल जाए जन की तो खर्चो आप ही कम हो
1: जाए।
0: पच देखो आजकल साले भाई ड्रिप और स्प्रिंकलर फुहारा सिस्टम ये तो है ही। देखो अब इनका सिंचाई होगी, सिंचाई में पानी बचाने वास्ते बहुत जरूरी है। अगर आप पानी की बूंद बूंद सिंचाई करा और अगर फुहारा सिंचाई करा तो पानी लंगे टंगे 30-40% कम लागे,
1: बिल्कुल
0: और पानी कम लागे जन धरती रो पानी दी जबकि पूर्ति एबा भी पूरी हो जावे, फसल भी आपने ठीक दरू पाके। फालतू कटी पानी भारी है तो ज्यादा पानी अगर जमीन में डूड़गो भी हो, जमीन खराब हुए तो बा होने में भी बच जावे।
1: एक बार राजेश भाई आप क्या होगा पानी के मायने फसल उगावा प्यान एक्वापोनिक्स।
0: हाँ
1: जी की गाय मछली पालन
0: है भी,
1: अभी मछली पालन और हाइड्रोपोनिक्स यानी पानी की दोनों खेती है, मछली भी खेती है,
0: खेती है
1: दोनों को एकीकरण है। अब मछलियां का जी का अवशिष्ट पदार्थ हुआ है खेती में या भी पानी के मायने भी पोषक तत्व बढ़ा दे,
0: बिल्कुल ठीक है। वो पहली मछली पालन करें मछली जका आपका अवशिष्ट पदार्थ छोड़ दे जन वो पानी है जो को पौष्टिक बन जावे, बीमें फसल वास्ते पौष्टिक तत्व मौजूद हो जाए। बीमें हाइड्रोपोनिक्स तरीके अगर आप कोई चीज उगावा वो पानी काम में लेवा तो भी रोई फायदो।
1: तो क्यों मतलब है राधेश्याम भाई मशीनीकरण आधुनिक कृषि का मतलब क्यों मशीन और इलेक्ट्रॉनिक साधना खेती करना,
0: बिल्कुल भाई अब
1: जमाना पहले तो आप बड़ना खेती करता, अब ट्रैक्टर लेवन ला गया, ड्रोन लेवन ला गया, हार्वेस्टर लेवन ला गया, तरह तरह का नई मशीन आएगी। बैंक में आप खेती करा तो कम लागत कम समय कम मेहनत ज्यादा
0: ही पड़ी भाई। आधुनिक तकनीकी नहीं अपनावा तो आप घना पिछड़ गया और बेड़ा भी खाली भी नहीं है। आजकल बीज है कभी बड़ा तकड़ा उठूगा, जीएम बोले जीएम मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड हाइब्रिड न्यारो वह भी जीन में एड़ी तकनीकी आएगी मनोज भाई की एड़ो कोई बीमारी होनालो जके कारण बीमारी हुए वो बीमारी आलो वो जो तत्व है बीमारी जीन भी रुमायनू बार काट दे बार काट दे जन वो है जो फसल है जी बिना
1: बीमारी
0: निरोगी पैदा हो। तो एड़ा उन्नत किस्म का बीज भी आऊंगा मॉडिफाइड वे भी अपने काम में लेना चाहिए। तो बात आप करिए जामा की हते ही कोई भाईड़ा ने कोई भाई बात आती कौन पता होना
1: भाया की दवा आज सही गया गाँव जो शायद भाया तो करा
0: भाई जी का मिलिया अपने घेवर भाई कहते हुई बा भाया थी पूछती करा तो सुनो भाया हता ही
2: राम राम टेम टेम सारू किसान भाया कने जाया करा बहु अताई करा और मारी बात है भाया थी पुगती करिया करा। तो इनी कड़ी में आज जो शायद में प्रगतिशील किसान घेवर जी अताई करने को मौका मिलियो। राम राम सा
3: राम राम सा राम राम सा
2: काई काम धंधा भैया घेवर जी आले
3: पानी।
2: अच्छा तो घेवर जी बरसात केड़ी कहीं है बार चौमासा जबकि पके वहाँ खरीफ की फसल है तो बिना सिंचाई की लंगे तंगे पूरी खेती होगी तो अब के जकी अगे ती बरसात है आपा के वांगे भाई चक्रवात की बरसात हुई जना खास तौरू आपा के यूं तो जमीन में आप किसान भाई जका आपके जरूरत के हिसाब हूँ या खेत के हिसाब हूँ जको उपज लिया करे पण आपा रे अबगार काई फसल पैडी है
3: बाजरी मूंग गवार
2: एम बाजरी मूंग गवार है गवार की हाल आगत कोनी
3: हलाई भाजी सा लोग तो कटे कटे गवार है भाई जी आगत की कोनी अब बरसात होड़ी है मौसम री
2: बरसात आगे तुगे जना थे देखो भी गंवार भी बाद दिया। तो घेवर जी आपा कहते हैं जमीन में परंपरागत रूप में ज्यादा लोग बाजरी और आसाला में की मूंग बाउं डुका है और गंवार को जो को रकबो है लारला कई बरसा में कम हूं लागो तो अब के गंवार को की जो को रुझान ज्यादा है कहीं
3: नहीं कोई विशेष कौन ज्यादा को मूंग भाई बाजरी मूंग भाई पर कोई कोई खेत हल्ला है जो कर गंवार भाई
2: तो गंवार अपा के थारे तो गेव जी या ट्यूबेल भी दिखे तो इस ट्यूबेल में गंवार की फसल बाओ जना इमें पाछो की हियाले में फसल ले जकी बाओ आपा रबी की फसल भी में की फायदो वे के
3: गुआर तो के साथ खेत मोयो हुए फण यूं खेत उतरे कोनी के गुआर खेत हुए और गुआर ही चोक हुए जना ठीक हुए।

0: तो इम गवार में भाई आप रे के उनको मतलब है कि गवार की फसल आप बावा जने इम खेत नू हो गए आप कहते जकी खाद हुए जकी देसी खाद या अंग्रेजी खाद बा अगली फसल में कम नाकन की जरूरत पड़े तो बढ़िया। इम गवार को भी कोई बीज की जब बात करा गेवर जी तो थे कोई घर कोई राख्यो या इमे भी कोई हाइब्रिड या कोई चाइनीज बीज मंगायो?
1: हाइब्रिड बीज।
0: चलो हाइब्रिड बीज मंगाओ तो हाइब्रिड बीज जो को थे ले रहा हो भाई बाजार हूँ बी में अलग अलग किस्म आवे तो ए जकी किस्मत है ले रहे हो ए पहली कोई परख्यूड़ी है कि या पहली बार ले आओ?
1: पहले मारे अट भौड़ी है सोखी ठेठ जड़ियों में फलियां चालू हुए।
0: अच्छा तो ओ कोई डाल आलो गवार है इन जड़ियों में फलियां चालू हुए एक भाई एक एक डाली कोई वे
1: सिंगल ही बड़े डाली आलो बड़े अलग अलग वैरायटी री हुए।
0: तो इरो जो को थे बात बताओ भाई जो को चयनित किस्म को शंकर जो को बीज ले रहा हो ई गंवार में अपा देखी जे तैयारी ते करी क्योंकि गंवार की तो बेगो अगले टाइम भी आगे आल भी गंवार की रुत है लोग बाई तो इनमें कोई खास तैयारी करने की जरूरत पड़े कहीं या अपा के बाजरी मूंग बावा जी बाय दें या गंवार में कोई अलग तैयारी करनी पड़े?
1: बाजरी मूंग बावा ध्यान नहीं भाणो पड़े खेत तैयार कर शेड्यूल बीज दवा
0: बीज की जो मात्रा करो तो शेड्यूल की बात की हो भाई शेड्यूल बीज बीजो तो शेड्यूल में बीज बीजो जन इमें जो बाजरी की अलग मात्रा पड़े मूंग की अलग पड़े गंवार को जो को वो बीज है और वो हाइब्रिड बीज है और आप देसी बीज भी पहले यहाँ पा बाऊ था तो एक को जो को हाइब्रिड बीज है वो थे हिसाब बीघे में कितो पड़ना चाहिए?
1: हाँ दो ढाई किला
0: वो जो को हाइब्रिड है वो दो ढाई किला नाकनो पड़े और देसी भी गंवार बावा तो वो
1: आजकल तो शेड्यूल हाई जी नंबर अकनो सीज है बेस्ट नंबर लाइक जुड़ है शेड्यूल माते अच्छा। माते बाजरी माते गुआरी माते जुआर
0: ठीक है हिसाब वो बीज बने बिल्कुल ठीक बात है। तो अब बात तो ठीक होगी अब जो गंवार की बात है कि भाई गंवार में भी मूंगा में भी जो कि फसल बावे कई बार हरी बीमारी वे और स्प्रे भी करना पड़े तो गंवार में भी कोई हरी बीमारी की गुंजाइश रहे
1: वगैरह फड़े गुआर में बनने वाली शिकायत हुए
0: अपन की इलाज करना पड़े तो ओ देखो गंवार
1: को इस तरह करना पड़े
0: ठीक बात गंवार देखो आप बारी हो हाइब्रिड किस्म को इरो उत्पादन आपा के अगर ठीक डाक भाई कैसे कसनी आदमी और खाद बीज की अगर सुविधा ठीक हुए तो एक उत्पादन बीघे में लंगे टन कितो को जावे?
1: बीघे में 4-5 क्विंटल
0: 4-5 किलो देना तो ठीक है मामलो भाई तो मूंगा को उत्पादन तो चाहिए तो बीघे में हुए कौन ही
1: बीघे में बीघे मूंग 3-1 क्विंटल हुए
0: और गंवार 4 क्विंटल तक हो जाए
1: को भारी हुए आजकल हाइब्रिड बीज जिसकी फलियां जबरदस्त लगे।
0: अच्छा तो वो जो को गंवार आपको हाइब्रिड बीज है उत्पादन भी ठीक हुए अब इनमें बात जो चारे की करा तो पशुओं वास्ते पशु रकार पशुओं वास्ते चारे की जरूरत पड़े तो घर में जो को उत्पादन वे वो ही चारों काम में लेवा तो गंवार को चारो और मूंग को चारो है अब मैं आप किस चारे ने पशुओं वास्ते बढ़िया मान
1: गाय वास्ते भेड़ बकरियां वास्ते
0: नहीं गाय और भेड़ बकरियां वास्ते गंवार को चारो बढ़िया मानो इनमें गाय और भेड़ बकरी में गंवार के चारे में मूंग की तुलना में थांगे हिसाब में पौष्टिकता ज्यादा हुए। अब बात तो आप एक ही होगी अब जो गंवार की है ई गंवार की विशेषता आप अब भी मान ली भाई बरसात की जब बात करा तो पानी में इम गंवार में और बाजरी और जब मूंग बावा तो पानी तीनों में लगभग बराबर ही पानी सही जाए इम कहीं कम पानी हो सके
1: थोड़ा बहुत 19-20 रो फर्क रहे कम पानी छाले पर टाइमली बरसात हुए जना बस हो जाए हर फसल टाइम सिंचाई या टाइम बरसात हुई जना थोड़ी थोड़ी बरसात कम ही छाल जाए
0: मूंगा की और बाजरी की तुलना में थोड़ो कम बरसात हुए तो आ फसल है जी हमने की पैदावार दे दे तो इमें गंवार की जो बात करा गेवर जी तो ओ आपा के भाई बरसात हो तो वही है इमें कहीं सिंचाई भी कर सका?
1: हाँ सिंचाई कर सका सिंचाई और गुआर घने भावे।
0: अच्छा तो आपा के ट्यूबवेल थे सिंचाई को गंवार कने भाई
1: सिंचाई भाई गुआर
0: वो गंवार भाई कई उद्देश्य होते एक तो फसल वास्ते बहो के या बिन कोई हरी खाद करने वास्ते के हिसाब बहु सिंचाई को गंवार
1: खाद फसल वास्ते बावा।
0: अच्छा अच्छा मतलब फसल है जो की उत्पादन ठीक हो जाए और वो पानी है जो को मान ले वो पानी जो को गेवर जी आपा के ट्यूबवेल को है अगर आप गंवार में तो बात सको और बाजरी तो आपा के हो रही है अगर मूंग की फसल बावा तो मूंग की फसल का ट्यूबवेल के पानी में हो सके?
1: मूंग की फसल शायद यहाँ तो हो सके बारिश ट्यूबवेल खेत में मूंग बाने में बारिश को पानी

0: हाँ तो मनोज भाई देखो, हरिनारायण जी शास्त्री और मारे साथियारो गायडो और लोग भजन मनवा कुसंगत में मत जा। और अब देखो कि अपा बात तो करा पर एक थोड़ा सो ब्रेक ले।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना
2: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर।
0: किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: तो देखो मनोज भाई, अब अपा खेती बाड़ी की बात करी और खेती जी की बात करा मनोज, तो आज के टाइम में जकी मिश्रित खेती है भी खेती बिना भाई कोई पार कौन पड़े।
4: सही बात।
3: मिश्रित खेती को मतलब है कि खेती के साथ साथ किन की आपा साइड में दूजो धंधो
4: पशु,
3: हाँ पशुपालन करा, कोई कोई

0: मधुमक्खी पालन करा, कोई मुर्गी पालन करे, कोई मछली, जो भी बन ठीक लगे। खाली क्योंकि खेती में कोई एक फसल लेवे, कोई ज्यादा हो जाता दो फसल, तो एक फसल तीन महीना में लंगे टंगे पाक जाए, दो फसल लेते छह महीना में, तो छह महीना बाकी टाइम में आदमी निकमो बैठो रहे, तो निकमो बैठो को कहीं टाइम रुपये करे, तो भी टाइम में अपन की इनकी दूसरी साइड में काम हुए ना चना भी को फायदा हो। और कई बार यह हुए कि खेती के साथ ऐडी चीजा करा जगह में खेती खुद में भी फायदा हो जाए और अपने कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी और मिल जाए
1: और घनी मेहनत भी दूजी करनी
0: पड़े। हाँ, और एडो एक काम है मधुमक्खी पालन, एपिकल्चर के नाम। तो एपिकल्चर या मधुमक्खी पालन किसान वास्ते एक अतिरिक्त आय को एक एडो जरियो है, जिसके में कम पैसा हाव थोड़ा पैसा लगे और बिना कोई खर्चे के भी मैं उत्पादन कर
1: सका।
0: तो कहीं वे देखो कि एक तो अपन खेती के साथ साथ अतिरिक्त जो को एक्स्ट्रा फायदा हो जाए, एक आपा की फसल बाइड हुए, फसल में कहीं व्या करे कि भंवरार तितलियार फूंदियार ए मधुमक्खियार आपा दे कहां भी भां पर ऊपर बे मंडरावे।
1: बिल्कुल सही।
0: आपा पहले तो होचा में भी मंडरा था, पर बे मंडरावे तो एक भाई भी फूलों को बे की इनकी थोड़ो ना रस चूसे, और भी रस चूसन के साथ साथ बे फसल में परागण को काम करे।
1: बिल्कुल सही।
0: और परागण करे जनाब जकी पैदावार है डेडी हो जावे। अगर कोई फसल में जो आमने सरसों की फसल की बात करना
1: है,
0: तो अगर कोई पौधे माते 100 फली लागनी है, तो अगर भी मैं मधुमक्खियां परागण कर दियो तो 100 की जगह अभी 150 परागण,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो फिर उत्पादन सवाय हो जावे।
1: तो ताकण मतलब है मधुमक्खी पालन आप करा तो राधेश्याम भाई देखो कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त कर दे, फसल की उत्पादन क्षमता तहजान की डेढ़ गुणी हो जाए और पोषण युक्त शहद प्राप्त हो जाए।
0: हाँ।
1: और अपना गाँव को विकास होने लग जाए और मधु मोम भी प्राप्त होने लग जाए और परागण अगर त्यौहार बात बताई फूल का रस चूसे यानी कि फसल का रस चूसे तो परागण बढ़ पड़ा और फसल की उपज आ जाएगी।
0: ये वास्ते घणो खर्चो कोनी, एक बक्सा आया करे जब एक बक्से की कीमत लंगे टंगे 4000 हुए, एक शुरू 10-1 बक्सा ले पर वो आप व्यवसाय शुरू करा 40000 खर्चो, 10-1000 का दूजा उपकरण आवे 50000, इनमें भी सरकार है जिकी लंगे टंगे 60% थाने सब्सिडी देवे, तो 30000 की सब्सिडी 20000 घरों लागे, एक साल में ही 10 डब्बा लगा दिया तो मेरी पैदावार लागत है जगह हमने उठ जाओ पर सालों साल फोगट में बैठा और गर्रा टाबर शहद खावे जो फोगट में बतो।
1: राधेश्याम भाई बात करा, मैं देखो पिछला सप्ताह मंगलवार ने अपा घटो प्रश्न पूछी जो चौपाल हूँ, कोई एक आधुनिक सिंचाई प्रणाली का नाम बताओ। बड़ोतर मैं ही बता दूं,
0: बिल्कुल बताओ,
1: बूंद बूंद सिंचाई जी की अपन रोजाना चर्चा भी करा। हाँ। अभी एक आधुनिक सिंचाई है, इन अपा टपक सिंचाई भी किया करा। लगता आती आज को प्रश्न अगर भाई ध्यान सुने हुए, मधुमक्खी पालन से कोई एक लाभ हमारा अपा बता करी कहीं कहीं लाभ हुआ भाई, अगर पड़ोतर अपन भेजे तो मेरे को नाम ले रहा पाऊ था मंगलवार ने चौपाल जरूर
0: बता। और टेम आज ऋषिक्री तो आज ऋषिक है कि छोटो पौधो बड़ो भविष्य, एक पौधो वे वो इस धरती पर कितना ही जीवन पालन करे तो सुखद भविष्य वाते ज्यादा ज्यादा बरकारी ऋतु है, पेड़ लगावा जना धरती रो श्रृंगार हुई और किसान आरी समृद्धि हुई।
1: बिल्कुल।
0: और अब घड़ी का ने देखा तो देवड़ियो टेम उरियो पूरो राधेश्याम भाई ने
1: और मनोज भाई ने
0: सीख करा। राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 4:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
0: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: संजय मार्केंडे जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान। ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
2: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
0: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
2: जी,
0: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
2: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
0: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है,
2: जी,
0: जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
2: जी श्रोताओ, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
0: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
0: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
2: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
0: जी जी।
2: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
0: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे, जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
2: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
0: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
2: जी,
0: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
2: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
0: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओं, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है, वो

0: करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है, यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
1: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए, वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
0: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
1: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात यह है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
0: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
1: जी।
0: तो श्रोताओं, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप सोशल मीडिया पर भी, यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, सीखो।
1: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
0: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
0: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
0: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
2: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
2: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।

बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।

0: थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
1: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करें खत्म।
0: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
2: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
3: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, काओ काओ काओ।
4: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों, है ना कोयल बहन?
5: कू कू।
6: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता।
5: कू कू।
7: मेरा भी कुछ यही हाल है।
3: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो। काम काम काम।
7: क्या
5: क्या
7: क्या?
3: पूजा सब तक कोयल गाए,
5: पूजा
3: सब तक सब सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना। काम
0: हाँ हाँ, यही करो तुम दोनों।
6: जो आज्ञा महाराज।
5: दम लगा के कू।
7: हईशा।
5: दम लगा के कू।
7: हईशा।
3: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? आ, करता होगा पड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। काम काम काम काम काम काम काम। ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा। काम काम काम। अरे पपीहे, ऐसे क्यों बैठा है भैये? सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है? काम काम काम।
7: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
3: काँ, काँ, काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डटकर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
7: ताल खोदने में, इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब। ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको? अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
3: का का का।
8: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने

0: तो बस रट ही पकड़ ली।
1: भौ भौ भौ, अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
0: अरे
1: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भौ भौ, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं?
0: काँ, काँ, काँ। कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। काँ, काँ, शेर महाराज, अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते?
2: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
1: इसकी यही सजा हो, इसको यही दंड हो।
3: अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
0: काँ, काँ, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है। काँ।
4: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं। भयानक गर्मी है ना
5: भाई? मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
0: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
5: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
4: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब। तुम हंस क्यों रहे हो कौवे, क्या मैंने गलत कहा?
0: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
4: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल इतनी गर्मी में?

0: कैसे काम चलता है उसका।
1: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है, रोने जैसे गाने की।
2: काँव काँव। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपीहे के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।
0: हाँ, चलो
3: पिए दूजा पानी।

0: क्या ये मर गया?
1: क्या पता,
0: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
1: हाँ, चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
0: हाँ, ये ठीक रहेगा।
1: पपी है, अरे देखो तो हम आए हैं तुम्हें लेने। बाहू कौआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
2: पानी,
1: अरे
0: पपी है भाई।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। अब युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी और मैं हूं आपकी आरजी दोस्त नेहा नारायण सोनी। दोस्तों, हर नया दिन अपने साथ नई उम्मीदें, नए अवसर और कुछ नया सीखने का संदेश लेकर आता है। युवाणी भी एक ऐसा ही मंच है जहां हम बात करते हैं युवाओं के सपनों की, उनके संघर्षों की, नई संभावना

0: द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। हजारों संथाल आदिवासियों ने इस आंदोलन में भाग लिया और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। हूल का अर्थ होता है क्रांति या विद्रोह। देश की आजादी और समाज के विकास में आदिवासी समाज का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, रानी दुर्गावती और गोविंद गुरु जैसे अनेक आदिवासी वीरों ने अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया और देश के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। हूल दिवस हमें आदिवासी वीरों के बलिदान, साहस और आत्मसम्मान की याद दिलाता है। यह दिन हमें उनके इतिहास को जानने, उनकी संस्कृति को सम्मान करने और उनके अधिकारों तथा समावेशी विकास में के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की भी प्रेरणा देता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है मंगलवार और आज हमारा स्पेशल कार्यक्रम हेलो फरमाइश भी प्रस्तुत किया जाएगा। वो कार्यक्रम हम प्रस्तुत करेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, आज की सबसे पहली फरमाइश की है अनवर हुसैन ने बीआर मिर्धा कॉलेज से। तो आइए सुनते हैं रोटी कपड़ा मकान का ये गाना।

दोस्तों अगली फरमाइश की है मुकेश शर्मा ने झुके आसमान के गाने की, जो कि है अमर सिंह कॉलोनी से। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagaur@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagaur@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।
1: दोस्तों, अगली फरमाइश की है पप्पू हलवाई, राजेश कुमावत, सुरेश चौधरी और हुली चंद ने टेलीवाड़ा से। तो आइए सुनते हैं ब्लैकमेल मूवी का ये गीत।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 015-82-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: दोस्तों, अगली फरमाइश की है कोमल ने नया दरवाजा से, तो आइए सुनते हैं नाम मूवी का ये गीत।

दोस्तों अगली फरमाइश की है लव्या सोनी ने, प्रिया और युवराज चौधरी ने, न्यू कॉलोनी नागौर से। तो आइए सुनते हैं जग्गा जासूस मूवी का ये गीत।

दोस्तों, समय की कमी के कारण आप सभी के गाने हम शामिल नहीं कर पाए, लेकिन आप सभी का नाम जरूर मैं इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहूंगी। मोहम्मद हुसैन गांधी चौक से, अनूप सिंह अड़ाए से, और चांद मोहम्मद अजमेरी गेट से, और कुंभाराम चावला नागौर से। तो इसी गानों के साथ, इसी सफर के साथ मैं नेहा नारायण सोनी लेती हूँ आपसे विदा। मुलाकात होगी जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम महिला जगत में। आज एक बार फिर से आपके साथ है आपकी रेडियो सखी, और आज के इस कार्यक्रम की सूत्रधार मैं संगीता सिखवाल। आप सभी सखियों का, सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सखियों, कार्यक्रम की शुरुआत से पहले एक बेहद सुंदर बात आप सभी के लिए। पानी को अगर कसकर पकड़ोगे तो वो हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आए ना, तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव से और तटस्थ होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। ईश्वर पे हमें इतना भरोसा तो रखना ही चाहिए कि जिन्होंने जीवन दिया है उन्होंने कुछ ना कुछ तो हमारे लिए खास सोच रखा है। तो इतनी ज़्यादा इस छोटे से जीवन में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इजी गोइंग सब कुछ होना चाहिए, लेकिन हाँ, जो परिस्थितियाँ हमारे वश में हैं उन पर हमें ज़रूर विश्वास करना चाहिए और उन पे विचार भी करना चाहिए। तो ये थी कार्यक्रम की शुरुआत। अब आज की बात में हम चर्चा लेकर आए हैं विश्व सोशल मीडिया दिवस। जी हाँ श्रोताओं, आज संपूर्ण विश्व भर में सोशल मीडिया दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य वैश्विक संचार, आपसे जुड़ाव और नवाचार पर सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभावों का जश्न मनाना है। वैसे तो वर्तमान समय डिजिटल एरा ही है, जिसमें हमारे लगभग सभी काम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। जहां एक तरफ ये हमारे जीवन में वरदान साबित हुआ है, लेकिन साथ ही कुछ हानिकारक प्रभाव भी साथ लेकर आया है। ऐसे में अपने सभी काम डिजिटली करें, परंतु सावधानी और सतर्कता के साथ। आइए जानें कि 30 जून यानी आज ही के दिन को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला जो ये विश्व सोशल मीडिया दिवस है, इसकी क्या खास बात है। वर्ल्ड सोशल मीडिया डे की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सखियों, विश्व सोशल मीडिया दिवस की शुरुआत 30 जून 2010 को लोकप्रिय डिजिटल प्लेटफॉर्म और समाचार साइट मैशबल द्वारा की गई थी। इसका मकसद लोगों को ये बताना था कि सोशल मीडिया कैसे दुनिया भर की संस्कृतियों, विचारों और आंदोलनों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करते हैं श्रोताओं कि आखिर क्यों मनाया जाता है ये दिवस। इसका कारण हो सकता है वैश्विक संचार। जी हाँ, सोशल मीडिया ने दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोगों से संपर्क साधना बेहद आसान और तेज बना दिया है। इसके साथ ही सूचना और जन जागरूकता, जी हाँ, ये लोगों तक जानकारी पहुंचाने और सामाजिक अभियानों को गति देने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। इसके अलावा इसका और क्या उद्देश्य हो सकता है, ये है व्यापार और रोजगार। जी हाँ, छोटे व्यवसायों से लेकर वैश्विक एमएनसीज तक के लिए ये मार्केटिंग और क्रिएटर इकोनॉमी का सबसे बड़ा मंच है। जी हाँ, इस सोशल मीडिया के दो पहलू हैं। पहला कि ये लोगों को जोड़ने और अपनी बात रखने का बेहतरीन मंच है, वहीं इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखे जाते हैं। डिजिटल दुनिया में अत्यधिक समय बिताना और फेक न्यूज जैसी समस्याएं आज सबसे बड़ी चिंता का विषय है सोशल मीडिया के जमाने में। तो ये थी हमारे कार्यक्रम की आज की बात में शुरुआती चर्चा, विश्व सोशल मीडिया दिवस जो आज पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। तो अब आपको ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं लता मंगेशकर की बेहद खूबसूरत आवाज में फिल्म वो कौन थी से ये गीत।

0: प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।
1: आप सुन रहे हैं चिरमी चैनल का एक बेहद खूबसूरत और महिलाओं का खास कार्यक्रम महिला जगत। सखियो, आज की चर्चा है राष्ट्रीय शिशु गृह योजना के बारे में। जी हाँ सखियो, नेशनल क्रेच स्कीम यानी कि राष्ट्रीय शिशु गृह योजना भारत सरकार द्वारा कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए दिन भर सुरक्षित डे केयर यानी कि देखभाल की सुविधा प्रदान करने वाली एक केंद्रीय प्रायोजित योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है कामकाजी महिलाओं को अपने बच्चों की उचित देखभाल की चिंता किए बिना रोजगार के अवसर तलाशने में सक्षम बनाना। आइए जानते हैं कि इस योजना की क्या मुख्य विशेषताएं हैं। जी हाँ सखियो, इसमें बहुत सी सुविधाएं हैं, जैसे कि कामकाजी लेडीज के बच्चों को दिन में सोने की सुविधा उपलब्ध रहती है, पूरक पोषण की सुविधा रहती है, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और बुनियादी स्वास्थ्य निगरानी यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा शिक्षा में यहाँ पर 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूल पूर्व यानी प्री स्कूल शिक्षा प्रदान की जाती है। इसका समय और क्षमता क्या है, आइए जानते हैं। एक शिशु गृह महीने में 26 दिन और प्रतिदिन 7.5 घंटे खुला रहता है। एक केंद्र पर अधिकतम 25 बच्चों पर एक कार्यकर्ता और अधिकतम 25 बच्चों पर एक कार्यकर्ता और एक सहायक नियुक्त होते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए बहुत ही कम शुल्क देनी होती है। आइए थोड़ी चर्चा इस पे भी कर लेते हैं। इसमें समुदाय की भागीदारी के लिए परिवारों की आय के आधार पर मामूली सा शुल्क लिया जाता है, जैसे कि बीपीएल परिवार से 20 रुपए प्रति बच्चा लिया जाता है, 12,000 तक की मासिक आय वाले परिवारों से 100 रुपए प्रति बच्चा लिया जाता है और 12,000 से अधिक मासिक आय वाले परिवार से 200 रुपए प्रति बच्चा शुल्क ली जाती है। ये योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से लागू की जाती है। इसे पहले राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना के नाम से भी जाना जाता था। तो ये थी आज की हमारी चर्चा में एक बेहद खास और महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी जो राष्ट्रीय शिशु गृह योजना के बारे में हमने चर्चा की। अब आपको लिए चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं अलीशा चिनॉय की आवाज में फिल्म करम से ये गीत।

0: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
1: एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन। आपने ट्यून कर रखा है अपना रेडियो स्टेशन नागौर आकाशवाणी और जिस पर चल रहा है अभी महिलाओं का एक बेहद खास कार्यक्रम महिला जगत। सखियों, आज है मंगलवार और मंगलवार को हम हमारी सखियों के लिए लेकर आते हैं स्वास्थ्य टिप्स में कोई स्पेशल बातें। और आज मैं एक ऐसी चर्चा लेकर आई हूँ जो हम लगभग सभी महिलाओं को, हमारी बच्चियों को इस दर्द से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये सब कुछ सामान्य है। चलिए इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है महावारी का दर्द, कारण और उपचार। जी हाँ सखियों, महावारी यानी कि पीरियड्स के दौरान पेट दर्द या फिर पेट में ऐंठन का होना बहुत से कारण होते हैं, लेकिन इसका जो मुख्य कारण है वो प्रोस्टाग्लैंडिंस नामक हार्मोन होता है। इससे गर्भाशय की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और कुछ घरेलू उपचार होते हैं जैसे कि गर्म पानी की सिकाई की जा सकती है, अदरक की चाय या फिर भरपूर पानी पीने से इसमें तुरंत राहत मिलती है। तो आइए इस पे कुछ विस्तार से चर्चा करते हैं। सखियों, वैसे तो मेंसेस में दर्द के कई कारण होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ प्रमुख जो हो सकते हैं वो है कि पीरियड्स के दौरान बनने वाला एक प्राकृतिक हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिंस हार्मोन गर्भाशय की परत को बाहर निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करता है जिससे दर्द या सूजन हो सकती है। तो दर्द का एक कारण ये हो सकता है। और कभी कभी गर्भाशय के टिश्यूज जब गर्भाशय के बाहर बढ़ने लगते हैं, जिन्हें एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है साइंस की भाषा में, ये भी दर्द की वजह हो सकता है। इसके अलावा गर्भाशय में कुछ सामान्य गांठें जो कैंसर रहित होती है या जिन्हें रसोली भी कहा जाता है, जिन्हें फाइब्रॉइड्स के नाम से जाना जाता है, ये भी कई बार महिलाओं के गर्भाशय में बन जाती है और दर्द का कारण बनती है। इसके अलावा गर्भाशय के आसपास के अंगों में संक्रमण जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, जिसकी वजह से भी हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा पीरियड्स के दौरान पेन होता है। सखियों, वैसे तो बहुत से हमारी जो बड़ी दादी नानी, हमारी मम्मी हमें बहुत से घरेलू उपचार करवाती भी है और हम कोशिश यही करते हैं कि हम मेडिसिंस कम से कम लें, क्योंकि ये बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये हर महीने का काम है। इसलिए ज़्यादा मेडिसिंस लेने की बजाय हम कुछ छोटे छोटे घरेलू उपचार कर सकते हैं और उनसे राहत पाई जा सकती है। जैसे कि गर्म पानी की सिकाई, हीट थेरेपी। जी हाँ, पेट के निचले हिस्से में या पीठ पर हीटिंग पैड या फिर गर्म पानी की बोतल रखने से मसल्स को काफी आराम मिलता है, वो लूज हो जाते हैं और इजीली हमें जो पेन होता है वो काफी रिलीज हो जाता है। इसके अलावा जो घरेलू हमारी किचन का जो सबसे जो हमारे मसाले बड़े ही फायदेमंद है, उनमें से दो मसाले हैं, एक अदरक और एक हल्दी। दोनों का क्या उपयोग हम इस दौरान कर सकते हैं? आप अदरक वाली चाय पी सकते हैं, उससे देखना आपको काफी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आप निवाया या यूं कहे हल्का गुनगुना दूध लीजिए, उसमें आधा चम्मच हल्दी डालकर उसको पीने से भी काफी आराम मिलता है। पीरियड्स के दौरान हाइड्रेशन के लिए आप दिन भर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिए। नारियल पानी या फिर नींबू पानी भी काफी फायदेमंद होता है। लेकिन ऐसे में कई बार हमारी बहनें या हमारी सखियां क्या करती है कि कोल्ड ड्रिंक या फिर ऐसा कुछ जो होता है ना, एनर्जी ड्रिंक, ऐसा कुछ ले लेती है। सखियों, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, यह आपकी तकलीफ को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि वैसे भी इस टाइम में हमारे हार्मोन्स बहुत तरह के बनते हैं, बहुत तरह के रिलीज होते हैं, तो हमें बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत है। एक छोटी सी लापरवाही हमें बहुत बड़ी तकलीफ दे सकता है, इसलिए खूब सारा नॉर्मल पानी पिए, सामान्य पानी पीना है आपको। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आप एनर्जी आपकी बहुत कम फील हो रही है, तो आप ऐसे में नींबू पानी पीजिए, आप नारियल पानी पीजिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। इसके अलावा जो सबसे खास बात है वो ये है कि हमें हल्का फुल्का व्यायाम और योग भी करना चाहिए, वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए। नियमित टहलना जिनकी आदत में होता है या फिर योगासन करना जिनकी आदत में होता है, उनको ये देखा गया है एक रिसर्च में कि उनको पीरियड्स के दौरान बहुत कम तकलीफ होती है। तो वैसे तो ये हेरिडिटी भी होता है कि अगर हमारी जो दादी नानी हैं, हमारी जो मदर्स हैं, उनको अगर पेनफुल पीरियड्स है तो ये हमें भी हो सकता है काफ़ी हद तक, और हमारी जो डॉटर्स हैं उनको भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा ही ऐसा हो। जैसे कि हमने ऊपर बहुत सारे कारण पे डिस्कस किया कि इनमें से कुछ कारण हो सकते हैं, पर ये कारण हमें सिर्फ तभी पता चल सकता है जब हम डॉक्टर्स के पास जाएं, कंसल्ट करें, हमारी सोनोग्राफी हो या जो भी जांच इन सब चीज़ों के लिए होती है, तो डॉक्टर ही हमें बता सकते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या सलूशन है। लेकिन नॉर्मली घरेलू जो उपचार हम चर्चा कर ही रहे हैं, हमें ऐसे में जो रोज़ाना जो करना चाहिए, वैसे सभी को करना चाहिए, और छोटे छोटे बच्चियों में, हम छोटे बच्चों में ये हैबिट डाल दें कि वो नियमित रूप से व्यायाम करें सुबह अपने दैनिक कार्यों से फ्री होकर, और अगर आप योग प्राणायाम कुछ योगासन कुछ मुद्राएं ऐसी करें तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छी तरह से बेहतर तरीके से हो जाता है, जिससे हमें हर परेशानी में आराम

मिलता है और ये जो पीरियड की प्रॉब्लम है इसमें तो बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। लेकिन हमने अगर मान लेते हैं कि इस तकलीफ़ के दौरान, इस परेशानी या ये जो हमारे जो रूटीन में चलती है पीरियड्स पेन की ये परेशानी, इसमें अगर फिर भी आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है, आपको लगता है कि अनबेरेबल पेन हो रहा है आपको और आप मतलब किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही हैं, कई बार तो मैंने मेरी सखियों को देखा कि उन्हें वोमिट्स होने लग जाती हैं, लूज़ मोशंस होने लग जाती है और ऐसी बहुत सी छोटी मोटी दिक्कतें होने लग जाती इस टाइम के दौरान। तो ऐसे में सखियों बिल्कुल भी लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको आपकी बॉडी और आपके अकॉर्डिंग, आपकी एज उसके अकॉर्डिंग आपको पेन किलर देंगे, आपको उससे ज़रूर आराम मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर उन्हें महसूस होगा डॉक्टर्स को कि आपको कोई दूसरी तकलीफ़ है इससे जुड़ी, तो वो आपकी जाँच करके आपको सही सुझाव देंगे। तो डॉक्टर से कंसल्ट करने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वैसे तो आजकल मेरी सखिया बहुत ही समझदार है, अपने पर्सनल हाइजीन को लेकर योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, एवरीथिंग वो बहुत ही केयरफुल है। लेकिन फिर भी कई बार हम घर के कामकाज, बच्चों की जिम्मेदारी, बड़ों की जिम्मेदारी, खुद की जो अगर हम वर्किंग है या नॉन वर्किंग है तो भी बहुत काम होता है हमारे पास, तो हर स्थिति में हम कभी कभी खुद के लिए थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। तो सखियों लापरवाह होना अच्छी बात नहीं है, तो कोशिश करें कि जब भी आप किसी को अच्छा गाइड भी करें, जो आपकी छोटी बच्ची है उसको अभी से ही आप हैबिट में डाल दें कि अच्छे से एक्सरसाइज करें, और अगर आप खुद या आपकी कोई बहन, आपके कोई नोन परेशान है पीरियड्स के पेन से, तो उन्हें ये छोटी छोटी बातें उनके साथ ज़रूर शेयर करें। आशा करती हूँ कि आज का ये जो महिलाओं का खास टॉपिक था ये मेरी सखियों को पसंद आएगा। चलिए अब इसी दौरान हमने एक बहुत ही प्यारा सा गाना चुना है आपके लिए, सुनिधि चौहान ने जिसको गाया है, फिल्म है चमेली।

इस खूबसूरत गीत के साथ ही आज कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, तो दीजिए इजाजत आपकी रेडियो सखी संगीता सिकवाल को। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 6 बजे हैं। अब हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि इस मंच के शुरू होने के बाद से अब तक 50 लाख से अधिक आव्रजन मंजूरियां जारी की जा चुकी हैं। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात

0: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से शिक्षा को न्यायसंगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पख्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने पाकिस्तान से अफगान क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। तालिबान के उपप्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के अनुसार 28 जून की रात को हुए इन हवाई हमलों में 36 लोगों की मौत हुई और 163 अन्य घायल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 103.7 MHz पर यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का ये पहला गीत है फिल्म जुड़वा से, और इसमें आवाज़ है नेहा कक्कड़ और अन्नू मलिक की।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत एफएम एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 6:20 हुए हैं, आइए सुनते हैं माटी के स्वर, जिसमें आज कलाकार हैं कालूराम प्रजापति।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी के स्वर, जिसमें आज कलाकार थे कालूराम प्रजापति। यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। उसके बाद 6:45 पर आप सुनिए राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने को कहा। सड़क हादसों के घायलों की मदद करने और उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाने की अपील की। वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से देश भर में लागू होगा, ये मनरेगा का स्थान लेगा। जनरल धीरज सेठ ने देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा की गहनता से जांच की जाएगी और प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में मॉनसून के प्रवेश के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। देश भर में दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट और भूस्खलन संभावित सड़कों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की लागत से इनके सुधार का काम शुरू किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर आयोजित एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उचित साइनेज, लेन मार्किंग और अंडरपास के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सड़क इंजीनियरिंग बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। श्री गडकरी ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से सड़क हादसे के घायलों की मदद करने और उन्हें सही समय पर अस्पताल पहुंचाने को कहा।
2: हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट होते हैं तो हम तुरंत उनको अगर अस्पताल लेके जाएंगे तो हम 50,000 लोगों की जान बचा सकते हैं, और इसलिए हमने एक योजना शुरू की है कि कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट होने के बाद, पहले लोगों के मन में गलत फहमी है कि पुलिस पीछे लग जाएंगे, तकलीफ होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया, डिपार्टमेंट ने भी निर्णय किया है कि कोई तकलीफ नहीं होगी, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। आप तुरंत उसको उठाइए, किसी भी अस्पताल में पहुंचाइए, उसको मदद करने वाले व्यक्ति को हम राहगीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपए का अवार्ड देंगे।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार मिट्टी और उसके लिए जरूरी उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप विकसित कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री आज हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने किसानों से मिट्टी में उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों का संतुलित उपयोग करने का आग्रह किया। श्री चौहान ने कहा कि सरकार अल नीनो प्रभाव से कम वर्षा की आशंका के मद्देनजर बचाव के तरीकों पर विचार कर रही है।
3: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है, और उसमें उत्पादित जो फल, सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
1: विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी देश भर में कल से लागू होने जा रहा है। ये देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समावेशी और मजबूत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। वीबीजी रामजी पर पेश है न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी सुदर्शन नाहर की रिपोर्ट।
4: वीबीजी रामजी मनरेगा का स्थान लेगा। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिन से बढ़ाकर अब एक साल में 125 दिन का गारंटी शुदा रोजगार मिलेगा। पहले श्रमिकों को 15 दिन में भुगतान किया जाता था, अब इसमें साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान किया गया है। ये राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। वहीं निर्धारित समय में रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी भुगतान में देरी होने पर क्षतिपूर्ति का वैधानिक प्रावधान रहेगा। कृषि मौसम में बुआई और कटाई के लिए मजदूरों की कमी नहीं हो इसके लिए 60 दिन की राहत दी गई है। ये योजना ग्रामीण आय में बढ़ोतरी और आजीविका सुरक्षा को सशक्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 की प्रावधानों के अनुसार कल से काम का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक विश्राम काल रहेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज सेवानिवृत्त हो गए। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने भरोसा जताया कि उनके नेतृत्व में सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं और व्यावसायिकता को कायम रखते हुए ऊंचाइयां छुएगी। सेना की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सैन्य बलों को उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से शक्ति मिलती है।
5: भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: सेना की दक्षिण पश्चिम कमान सप्तशक्ति के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह भी आज सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने जयपुर सैन्य स्टेशन के प्रेरणा स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि लगभग 4 दशकों की सैन्य सेवा के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने जम्मू कश्मीर और पश्चिमी सीमा पर कई अहम और चुनौतीपूर्ण कमान और स्टाफ जिम्मेदारियां निभाई। इसके अलावा उन्होंने इन्फेंट्री डिवीजन और डेजर्ट स्ट्राइक कोर की जिम्मेदारी भी कामयाबी के साथ पूरी की। नई दिल्ली में कल हुए ऐतिहासिक यमुना जल समझौते के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जयपुर आगमन पर आज उनका शहर के विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस समझौते से प्रदेश में जल सुरक्षा और समग्र विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शेखावाटी क्षेत्र के लाखों परिवारों के जीवन में ये समझौता खुशहाली का नया अध्याय लिखेगा, साथ ही विकसित राजस्थान की मजबूत नींव बनेगा। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार जनता से किए हर वादे को पूरा करने की कोशिश कर रही है।
6: जनता के जो काम है वो हम कार्यकर्ता और हमारी सरकार की सबकी प्राथमिकता है, हमें उनको प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमें यह विचार भी करना चाहिए क्योंकि आपने देखा है पड़ोसी राज्यों में विकास की गति हमसे ज्यादा है, विकास की रेस में आगे चलते हुए हमारे राजस्थान को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। और मेरे भाइयों, उस विश्वास को हमें कायम रखते हुए हमें जनता के बीच में जाना है। सामाजिक सरोकार के कार्य हो, सार्वजनिक कार्य हो, उनको बताना है और बताना ही नहीं उनको करवाना है।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा और मरम्मत कार्यों को लेकर आज जयपुर में समीक्षा बैठक हुई। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने बैठक में विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी स्थिति में जर्जर और असुरक्षित भवनों का उपयोग नहीं किया जाए। श्री यादव ने सभी स्कूल भवनों की गहनता से जांच करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में 2000 से ज्यादा विद्यालयों से संबंधित विकास और निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। वहीं चालू वित्त वर्ष में करीब 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण और विकास के काम करवाए जाएंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में होगा। 2 दिन के सम्मेलन का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। ये सम्मेलन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित किया जा रहा है। नेस्कॉम और MNIT जयपुर इसके नॉलेज पार्टनर है। सम्मेलन की थीम विकसित भारत 2047 AI एनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर NCEG प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न नवाचारों की लॉन्चिंग होगी। सम्मेलन के दूसरे दिन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए नवाचारों और डिजिटल सेवाओं को साझा करने में ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा।
7: राजस्थान सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास है कि ई गवर्नेंस राज्य में प्रमोट हो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे सामने प्रेजेंट किए जाएंगे इनको रेप्लिकेट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आम आदमी को किस प्रकार से सरकार और आम आदमी के बीच में जो नजदीक टू टेक्नोलॉजी ला सकते हैं इस प्रयास करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पॉलिसी है अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार, इसका मतलब है कि डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसको रियलाइज करने में ये कॉन्फ्रेंस एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: सम्मेलन के बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
8: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे, वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: प्रदेश में अगले 3-4 दिनों में मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 से 4 जुलाई के बीच राजस्थान में मॉनसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इस दौरान राज्य के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार हैं। कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बरसात भी हो सकती है। हालांकि फिलहाल कई स्थानों पर भीषण गर्मी और उमस का असर है। बीते 24 घंटों में श्रीगंगानगर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज हुआ। बीकानेर, चूरू, बाड़मेर और फलौदी में भी दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। उधर बाड़मेर में आज धूल भरी आंधी चली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने को कहा। सड़क हादसों के घायलों की मदद करने और उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाने की अपील की। वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से देशभर में लागू होगा, ये मनरेगा का स्थान लेगा। जनरल धीरज सेठ ने देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा की गहनता से जांच की जाएगी। और प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में मॉनसून के प्रवेश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से धौलपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख गौरव शर्मा ने तैयार किया है। जिले में जून माह के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, कृषि और जनकल्याण से जुड़ी अनेक गतिविधियां आयोजित की गईं। प्रशासनिक स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा और क्रियान्वयन जारी रहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में सामूहिक योगाभ्यास के आयोजन हुए। मुख्य समारोह मचकुंड रोड स्थित परशुराम धर्मशाला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लिया। योग अभ्यास का संचालन पतंजलि योग पीठ से जुड़े योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में किया गया। इस अवसर पर योग के महत्व और नियमित योग अभ्यास के लाभों की जानकारी दी गई। जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और न्यायालय परिसरों में भी योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष योग दिवस कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। धौलपुर जिले से गुजरने वाले आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे को लेकर चल रहा विवाद सुलझ गया है। जिला प्रशासन, NHAI और निर्माण कंपनी के बीच सहमति बनने के बाद किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है। इससे परियोजना का रास्ता साफ हो गया है और निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने की संभावना है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले भर में 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। चिकित्सा विभाग के अनुसार जिले में 2 लाख से अधिक बच्चों को अभियान के तहत शामिल किया गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर विशेष बूथ लगाए गए। इसके बाद स्वास्थ्य टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाई। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व क्षेत्र में इन दिनों वन्य जीवों की गतिविधियां बढ़ी हैं। विभिन्न वन क्षेत्रों से बाघों का मूवमेंट लगातार दर्ज किया जा रहा है। हाल ही में एक मादा बाघ ने वन क्षेत्र में गश्त कर रहे एक वनकर्मी पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। वन विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में हॉकी मैत्री मैच आयोजित किया गया। मैच का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना और खेलों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना था। खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक प्रतियोगिता में भाग लिया। री नीट परीक्षा जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा में 2000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा के दौरान सुरक्षा और निगरानी के विशेष प्रबंध किए गए। प्रशासन और परीक्षा एजेंसी के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से व्यवस्थाओं की निगरानी की। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस सप्ताह के अवसर पर जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान रैलियां, शपथ कार्यक्रम, संगोष्ठियां और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। जिला प्रशासन ने आमजन से नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की। जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत पहले चरण के दौरान मकान सूचीकरण और आवास गणना काम में धौलपुर जिले ने राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि पर जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। जिला प्रशासन ने इसे टीम वर्क और बेहतर समन्वय का परिणाम बताया। जिले के युवा क्रिकेट खिलाड़ी रजत बघेल का भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। विकेट कीपर के रूप में उनका चयन होने पर जिले में खुशी का माहौल है। भारतीय टीम इन दिनों श्रीलंका दौरे पर है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले भर में पौधरोपण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक पेड़ लोकतंत्र के नाम अभियान के तहत सरकारी और निजी संस्थानों में पौधे लगाए गए। विभिन्न सामाजिक संगठनों और विद्यार्थियों ने इसमें भागीदारी की। जिले में मुहर्रम का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। विभिन्न क्षेत्रों से ताजिए निकाले गए और निर्धारित मार्गों से होते हुए करबला तक पहुंचाए गए। तीजा जुलूस के दौरान युवाओं ने पारंपरिक कर्तव्यों का प्रदर्शन किया। वहीं जिला मुख्यालय पर भगवान परशुराम की शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। धौलपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
4: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जनताओं सड़कां माथे हिफाजत ने बधावन सारू कहो। सड़क हादसा में जख्मी लोगों ने मदद करण अरवाना टेमसर अस्पताल पुगावन री अपील कीनी। वीबीजी रामजी कानून 2025 कालों देश भर में लागू भेजावेला। मनरेगा री ठौर लेवेला। जनरल धीरज सेठ देश रा 31वां सेना अध्यक्ष रा ओहदारो कामकाज संभाल्यो। राज्य री सगली सरकारी स्कूलां रा भवनां री हिफाजत रा लिहाज गहरी जांच करी जावेला। और प्रदेश में आवता 2-3 दिन में चौमासा री बिरखा शुरू होवण रा आसार। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। देश में हादसा भवन और जमीन धस जावन री शंका वाली सड़कां ने पिछाण करी ची है। केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपया खर्चो आना सुधार रो काम शुरू कीनो है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नई दिल्ली में सड़का माथे हिफाजत रे बारे में राखी जाए कार्यक्रम में आ जानकारी दीनी। गडकरी कहो के उचित निशान लेन मार्किंग और अंडरपास बनावन सागे अंतर्राष्ट्रीय मानकान मुजब सड़क इंजीनियरिंग काम लेवन री कोशिश करी जा रही है। श्री गडकरी सड़का माथा हिफाजत ने बधावो देवन में जनतारी भागीदारी बधावन और मोटर गाड़ियां चलावन वालाओं यातायात नियमों री पालना करण री अरज कीनी। वह लोगों सड़क हादसा में जख्मी वेवन वाला री मदद करण अरवाने सही भगत परा अस्पताल पुगावन री अरज कीनी।
2: हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट होते हैं तो हम तुरंत उनको अगर अस्पताल लेके जाएंगे तो हम 50,000 लोगों की जान बचा सकते हैं। और इसलिए हमने एक योजना शुरू की है कि कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट होने के बाद पहले लोगों के मन में गलत फहमी है कि पुलिस पीछे लग जाएंगे, तकलीफ होगी, अब सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया, डिपार्टमेंट ने भी निर्णय किया है कि कोई तकलीफ नहीं होगी, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी, आप तुरंत उसको उठाइए, किसी भी अस्पताल में पहुंचाइए, उसको मदद करने वाले व्यक्ति को हम राहगीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपए का अवार्ड देंगे।
4: सरकार मिट्टी और वहां सारू जरूरी खाद री मात्रा री जानकारी देवन बाबत मोबाइल ऐप विकसित कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा रा हिसार माए खेत बचाओ अभियान रा समापन समारोह माए आ जानकारी दीनी। वह किसानों मिट्टी री उत्पादकता बनाई रखन सारू खाद और कीड़ा मारन री दवाइयां जरूरत रा आधार काम लेवन री अर्ज कीनी। कृषि मंत्री कहो कि सरकार अल नीनो रा असर कम बिरखा वेवन री शंका न ध्यान रखता थका जरूरी इंतजाम कर रही है।
3: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
4: देश में काल 1 जुलाई विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी राम जी लागू भे जावेला। आ देश का गांवई हलका माए माली व्यवस्था ने समावेशी और मजबूत बनावन सारू मील रो पत्थर साबित फैला। वीबीजी राम जी रबारा माए पेश है न्यूज डेस्क सालेहा गाजी री रपट।
9: वीबी जी रामजी मनरेगा री ठोड़ लेवेला इरा तहत गांवाई हलका माए लोगा ने 100 री बजाय 125 दिन रा काम री गारंटी मिलेला। वीबी जी रामजी रा तहत मजूरा ने हर हफ्ता मजूरू रो चुकारो सीधो खाता माए करियो जावेला। तय मियाद माए काम मुहैया नी करावन री सूरत माए बेरोजगारी भत्ता मजूरी रा चुकारा माए मोड़ो वेवन परा क्षतिपूर्ति रो वैधानिक प्रावधान ही करियो जावे है। खेतीबाड़ी री रुत माए बुवाई कटाई सारू मजूरा री कमी रोकन सारू 60 दिन री राहत दिरी जी है। वीबीजी रामजी गावाई हलका माए आमदनी बढ़ावन और काम धंधा री हिफाजत मजबूत बनावन री दिशा माए खास जतन है।
4: वीबीजी रामजी 2025 रा प्रावधान रा मुजब कालू काम रो बगत सवारे 9:05 बजे ताई रहवेला। सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज सेना प्रमुख रा ओहदा रिटायर वे गया। इस मौके वे कहो कि फौज ने फौजियां कमांडरां पहले वाला फौजियां वारा परिवारां और देश री जनता रा अटूट भरोसा ताकत मिले है। जनरल द्विवेदी कहो कि भारतीय सेना लारला 2 साल माए हर मोर्चा माथे तुरंत काम करन रा बूता संतुलन और सावचेती लगातार बनाई रखी।
5: भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों कमांडरों पूर्व सैनिकों परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूं।
4: जनरल द्विवेदी नुआ सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने जिम्मेदारी सौंपता थका। जनरल सेठ री अगुवाई माए भारतीय सेना री माथो ऊंचो करण वाले परंपरावां बनाई रखता थका व्यावसायिकता और पक्का इरादाओं नई ऊंचाइयां हासिल करने रो भरोसो जतायो। सेनारी दक्षिण पश्चिम कमान रा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मंजिंदर सिंह आज रिटायर भे गया। इस मौके वे जयपुर सैन्य स्टेशन रा प्रेरणा स्थल माथे शहीदा ने श्रद्धा भाव सागर याद कीना। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन बतायो कि करीब 40 साल री सेवा रे दौरान लेफ्टिनेंट जनरल मंजिंदर सिंह जम्मू कश्मीर और आतुणी सरहद माथे के खास कमान और स्टाफ री जिम्मेदारियां निभाई। वह इन्फेंट्री डिवीजन और डेजर्ट स्ट्राइक कोर री जिम्मेदारी कामयाबी सागे पूरी कीनी। नई दिल्ली माए काल भया ऐतिहासिक यमुना जल समझौता पाछे जयपुर आवन परा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रो शहर माए न्यारी न्यारी ठोड़ा स्वागत करीचियो। मुख्यमंत्री राज्य माए जल सुरक्षा और पूरा विकास माथे पड़वा वाला सकारात्मक असर बारा माए विचार बताया। वो कहो के ओ करार विकसित राजस्थान री मजबूत नींव बनेला। श्री शर्मा कहो के सरकार जनताओं करीचे हर वायदा न पूरो करन री कोशिश कर रही है।
6: जनता के जो काम है वो हम कार्यकर्ता और हमारी सरकार की सबकी प्राथमिकता है, हमें उनको प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमें यह विचार भी करना चाहिए क्योंकि आपने देखा है पड़ोसी राज्यों में विकास की गति हमसे ज्यादा है, विकास की रेस में आगे चलते हुए हमारे राजस्थान को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। और मेरे भाइयों, उस विश्वास को हमें कायम रखते हुए हमें जनता के बीच में जाना है, सामाजिक सरोकार के कार्य हों, सार्वजनिक कार्य हों, उनको बताना है और बताना ही नहीं उनको करवाना है।
4: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मत है AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। इस आगे आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in मत है समाचार सुन सको हो और वहां जुड़िया फोटो और वीडियो देख सको हो। राज्य री सरकारी स्कूलां सारू किणी हालात माय हर जर्जर और असुरक्षित भवन काम नी लेवण रा हुकम दिया चिया है। स्कूल भवना री हिफाजत और मरम्मत रा कामा रो जायजो लेवण सारू आज जयपुर माय राखी जी मीटिंग माय प्रारंभिक शिक्षा विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव आ जानकारी दीनी। यादव सगली स्कूलां रा भवन री गहराई उ जांच करावण रा हुकम दीना। वे बतायो कि लाडला माली साल माए 2032 स्कूलों जुड़िया विकास और बनाई चुनाई रा काम करी जिया, जबकि चालू माली साल माए करीब 550 करोड़ रुपया रा खर्च वाला काम कराया जावेला। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन काल जयपुर माए शुरू भेला। विकसित भारत 2047 एआई एनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस मुद्दा माथा विवरण वाला ई सम्मेलन रो उद्घाटन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करेला। ई मौके एनसीईजी प्रदर्शनी लगाई जावेला और राज्य सरकार रा न्यारा न्यारा नुआ कामा री शुरुआत फैला। सम्मेलन रा दूजा दिन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया जावेला। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह रोई इन कार्यक्रम माए शिरकत करण रो कार्यक्रम है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में खबर नवीसा सागे बातचीत दौरान आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि सरकारी सेवा बेहतर तरीकों पुगावण नुआ कामा और डिजिटल सेवावां री पहुंच जनता ताई बधावण माए ओ सम्मेलन खास साबित फैला।
7: राजस्थान सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास है कि ई गवर्नेंस राज्य में प्रमोट हो, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से

0: जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे सामने प्रेजेंट किए जाएंगे इनको रेप्लिकेट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आम आदमी को किस प्रकार से सरकार और आम आदमी के बीच में जो नजदीक टू टेक्नोलॉजी ला सकते हैं इस प्रयास करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पॉलिसी है अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार, इसका मतलब है कि डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसको रियलाइज करने में ये कॉन्फ्रेंस एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: सम्मेलन रबारा में और ब्यूरो महाना खबर नवीसू।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे, वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: प्रदेश में आवता 3-4 दिन में चौमासा री बिरखा स्वरूप एवं राजचोखा हालात बनी उड़ा है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र 2-4 जुलाई बीच राज्य में चौमासा री बिरखा स्वरूप एवं आसार जताया है। इस दौरान प्रदेश रा लंकाऊ और लंकाऊ उगनी हिलका में आंधी बारिश हो जुड़ी हलचल में बढ़ोतरी री संभावना है। कोटा और उदयपुर संभाग में कठे कठे भारी बरसात रा आसार है। फिलहाल कई थोड़ा जबरदस्त गर्मी और उमस रो असर बनी उड़ो है। लाडला 24 घंटा में श्रीगंगानगर में पारो 45 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। बाड़मेर में आज अंधी चाली। आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ले रहा हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जनताओं सड़का माथे हिफाजत ने बधावन सारू कहो। सड़क हादसा में जख्मी लोगों की मदद करण अरवाना टीम सर अस्पताल पुगावन री अपील की नी। वीबीजी रामजी कानून 2025 काल देश भर में लागू भेजा वेला। जनरल धीरज सेठ देश रा 31वां सेना अध्यक्ष रा होदारो कामकाज संभालियो। कजरी सगली सरकारी स्कूलां रा भवनारी हिफाजत रा लिहाज उं गहरी जांच करी जावेला। और प्रदेश में आवता 2-3 दिन में चौमासारी बिरखा स्वरूप बन रा आसार। इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
3: FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत

0: लीजिए सुनिए भारतीय सेना गीत, गीतकार संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: सेना।
1: अभी आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर।
2: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

इल्जाम। इस फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं अनजान, संगीत है बप्पी लहरी का।

जवानी इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं गुलशन बावरा, संगीतकार हैं राहुल देवबर्मन।

साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में, नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: हर जाई इस फिल्म का गीत सुनिए।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जयमाला।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम इंद्रधनुष के अंतर्गत आज पॉप एक्सप्रेस में सुनिए कुछ पॉप गीत। आइए सुनते हैं के और महालक्ष्मी की आवाजों में विशाल ददलानी का लिखा गीत। संगीत है विशाल शेखर का, फिल्म का नाम है पॉपकॉर्न खाओ।

अभी आपने सुना पॉप गीत गुल सक्सेना की आवाज में। गीतकार संगीतकार थे किरण प्रगति और सौरभ ठाकुर।

0: ऐसी पर तू हेवन की चाबी है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस में कुछ पॉप गीत।

0: आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं नाटिका उनके महबूब। लेखिका हैं बिमला रैना, निर्देशक लोचन बख्शी।
1: मंजू, ओ मंजू, अरे मंजू कहाँ हो भाई, जल्दी आओ।
2: क्या है शील, बस जब आती है तो आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह चली जाती है। आखिर ऐसी क्या बात हुई जो आज तेरी आंखों में बिजलियाँ कौंध रही है?
1: अरे बिजली बिजली कहाँ कौंधी, मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि बहुत मजा आया।
2: तू इतना ही जान कर रुक जा, नहीं तो
1: नहीं तो मजे में दर्द भर जाएगा। अब तेरी शादी हो जाएगी। शादी वादी बच्चे बच्चे मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि लाइफ इज वंडरफुल फॉर मी। बात सुनो, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है लेकिन मैं तो अभी इंडिपेंडेंट हूँ। तुम दोनों को बारी बारी एक दूसरे का हुक्म मानना पड़ता है, फिर मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता। हाँ मेरा हुक्म मेरा राजा जरूर मानता है।
2: राजा? कौन राजा?
1: है एक राजा। हाय काश तुम भी चलती मेरे साथ टेनिस मैच में, इतना मजा आया कि।
2: मैं तो चाहती हूँ तू अब जल्दी से जल्दी अपना मैच बना ले। कितने रिश्ते आए पर तू अभी अकेली ही घूमती है। मैं पूछती हूँ आखिर तुझे कैसा लड़का चाहिए?
1: ओह लड़का, कैसा लड़का? जैसा मेरा राजा है।
2: अरे रे रे, ये किस राजा महाराजा के सपने देख रही है तू?
1: अपने राजा के। ओ मंजू हाउ ही लव्स मी।
2: हु? कौन? हु लव्स यू? कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या करता है, किसका बोटा है, किसका पोता है?
1: ओफो, तुम्हारे सवालों की तो बढ़ बढ़ती ही जा रही है, मेरे दिमाग में फ्लड आ गया। तो पहले किस बात का जवाब दूं? मुझे बताओ नहीं तो डूब जाऊंगी।
2: ओहो उसके खानदान का भी कुछ पता है?
1: अरे मंजू जी जी उसका खानदान पानदान पीकदान सबका पता है। मेरा राजा ऐसा वैसा नहीं है, भगवान कसम वो तो अकेला कमरे में दरवाजे पर टकटकी लगाए मेरे इंतजार में बैठा होगा।
2: टकटकी लगाए? उसे अपने साथ नहीं ले गई थी? किसका मैच देखने गई थी?

0: नहीं है, पर आपके घर तो शायद मैंने कभी नहीं देखा उसे।
1: तुझे मेरे पास आए अभी कौन ज्यादा दिन हुए हैं, और फिर तुझे अपने राजा से फुर्सत कहाँ है, आता है तीज त्योहार पर।
0: अच्छा, मुझे क्या मालूम, जहाँ भी जाऊँ दिखते तो रहते हैं, पर ठीक से कभी बात नहीं हुई, नहीं तो ये तो पता चल ही जाता कि वो आपके दीपक हैं। अच्छा मंजू, राजा बेचारा इंतजार करता होगा, बाय बाय। कर दिया।
2: भाभी भाभी भाभी, वो मतलब भाभी,
1: हाँ।
2: वो आपकी बहन है ना,
1: हाँ।
2: उससे मिलना चाहता हूँ।
1: क्यों, टेनिस चैंपियन हो गया है इसलिए?
2: अरे तुम्हें कैसे मालूम भाभी?
1: अरे वही बता रही थी, तुम्हारे खेल की बहुत तारीफ कर रही थी।
2: कौन? वो मेरे खेल की तारीफ?
1: हाँ हाँ, कह रही थी दीपक बहुत अच्छा खेला।
2: वो मेरा नाम जानती है?
1: क्या तुम उसका नाम नहीं जानते?
2: नहीं, मतलब हाँ, मतलब मैं उनका नाम जानता हूँ। दरअसल मंजू भाभी, बात यह है भाभी कि मैं उनके करीब से जब भी गुजरा बहुत चाह कि एक बार शील जी कहकर उन्हें पुकारूं, पर जाने क्या हो जाता है भाभी, मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, जुबान को जैसे लकवा मार जाता है। और फिर भाभी, अगर सबके सामने वो मेरी तरफ अजनबी निगाहों से देखकर मुंह मोड़ लेती है तो मेरा कलेजा फ्लैट हो जाता है। और भाभी, फिर पता चला वो तुम्हारे पास रहने लगी है तो
1: के बच्चे, तो तुझे भाभी की याद आई, चल कुछ कहेगा भी?
2: जरूर कहूंगा।
1: तो कहना।
2: कहूं? कह दू भाभी? भाभी असल में बात यह है भाभी, भाभी मैं उनसे
1: हाँ?
2: शादी करना चाहता हूँ। लो कह दिया, हाँ, कह दिया भाभी,
1: कह दिया। अब जब अपने राजा के गुण गाया करती है।
2: राजा के? कहाँ के राजा के?
1: अब ये तो तुम उसी से पूछो, और अगर पूछने की हिम्मत ना हो तो दुम दबा के चले जाओ। डरपोक कहेंगे, कब से मैंने सोच रखा था कि एक दिन शील और दीपक की सगाई करवाऊंगी, मगर वो निर्लज्ज शील राजा ने कहाँ से एक राजा नाम के लड़के को पकड़ लाई है और उसे अपने ही पास ठहराया हुआ है। निर्लज्ज कहेंगी, छोड़ उसका ख्याल।
2: भाभी ये सब तुम किसके लिए कह रही हो? भाभी वो तो देवी है देवी, कभी उसे किसी लड़के से हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा, इतनी कोमल गंभीरता, इतने आत्म गौरव से आती जाती है, तभी तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी बात करने।
1: अब मैं क्या करूं, जिसकी हिम्मत पड़ी वो आ गया, अब शील से मिलकर कौन सी पहलवानी दिखाओगे?
2: पर भाभी ये राजा है कौन, कब से उसके साथ रहता है?
1: मैं क्या जानू कौन राजा है निगोड़ा, ये बात तो अभी मालूम हुई जब वो तुम्हारा टेनिस मैच देख के लौटी।
2: ओ भाभी, शील जी मुझसे कभी नहीं बोली तो क्या, बरसों साथ एक ही कॉलेज में पढ़ी है, एक बार तुम मुझे मिलवा दो, प्लीज भाभी एक बार मिलवा दो मुझे, मैं अकेले में कुछ बातें कर लूं। भाभी आखिर मैं इंसान हूँ, कोई उल्लू तो नहीं हूँ, उन्हें मालूम तो हो जाए कि मैं भी उन्हें चाहता हूँ, फिर देखूं उनका राजा मेरे सामने कैसा लगता है।
1: अच्छा सुन दीपक, मुझे ख्याल आया।
2: क्या?
1: हा? मैं शील को बुलाती हूँ, और सुन उसे शेर शायरी का बहुत शौक है, जब वो आए तो तू उसे बेखबर सा बनकर कोई गजल वजल सुनाने।
2: तुम फिक्र ना करो भाभी, एक से एक बढ़िया शेर मुझे याद है, देखो तो सही उनका राजा मेरे आगे कैसे ठहरता है। भाभी ये राजा का नाम सुनकर तो मुझ में बजरंग बली का बल आ गया है, पर भाभी शील जी से मिलने से पहले मुझे एक झलक उनके महबूब की दिखा तो दो, आखिर मुझे मालूम तो हो जाए मुझे मुकाबला किससे करना है।
1: उस दरवाजे के पीछे शील का कमरा है। अरे उधर कहाँ जा रहा है? इधर आ, देख मैं नौकर को भेजकर उसे अभी बुलवाती हूँ।
2: अच्छा,
1: तू शेर शायरी का ध्यान रखना। अरे नंदू, ओ नंदू, जरा शील से कह मैंने बुलाया है, जरूरी काम है, जल्दी आ। अच्छा सुन, इधर आ, उधर पीठ कर ऐसे खड़े होकर कोई फड़कती हुई गजल गुनगुनाना शुरू कर दे।
2: अच्छा।
1: जैसे तुझे मालूम ही नहीं कि वो आ रही है।
2: तू छुप जा भाभी।

0: क्या हुआ?
1: शॉक लग गया बिजली का।
0: माफ करिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि आप आ रही हैं।
1: वरना आप मेन स्विच शायद ऑफ कर देते।
0: जी
1: नहीं तो कयामत आ जाती।
0: जी जी मैं आपका मतलब समझा नहीं शील जी।
1: शील सुन तो, ये वही हमारा दीपक है कि वो कोई दूसरा दीपक था? मैं क्या जानू, पर हाँ शायद यही थे। ये मेरी बहन शील है दीपक
0: जी। जानता हूँ जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी

0: मतलब ये जानता तो नहीं था, पर भाभी अब जान गया।
1: मैं भी कॉफी को कहा।
0: हाँ भाभी तुम कॉफी लेने जाओ। मंजू भाभी से सुना आपको टेनिस मैच बहुत पसंद आया।
1: जी
0: हजार हजार धन्यवाद शील जी।
1: हजार हजार किस बात के?
0: अरे हजार हजार बातों के।
1: पर मैंने तो आपसे पहले कभी बात नहीं की।
0: ओ शील जी, पर मैंने तो आपसे हजारों बातें की हैं, बहुत ख्वाब देखे हैं जिनमें आप शरीक थी।
1: ओ।
0: न जाने क्या क्या कहा मैंने, न जाने आपने मुझसे क्या क्या कहा, हजारों बातें।
1: हो सकता है, पर ख्वाबों का क्या?
0: एक शेर कहा है, सुना दूं?
1: जरूर।
0: हमें गिला न होता हकीकत से, ख्वाबों का अगर जरिया होता, वो सामने होते साहिल पर, जज्बातों का मैं दरिया होता। कभी मेरी तमन्ना भी सजकर

0: क्या होता।
1: वाह वाह,
0: पसंद आया?
1: क्या शेर है जी, बहुत अच्छा।
0: आपको मेरा खेल पसंद आया, मेरे शेर पसंद आए, बस मैं ही पसंद नहीं आया। सुना है कोई राजा साहब है जिन पर आपकी बड़ी इनायत है, क्या ये सच है शील जी?
1: जी जी हाँ, सच तो है।
0: सच है? तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ?
1: उनसे मिलकर क्या करेंगे, आप तो शायद मुझसे मिलना चाहते।
0: शील जी प्लीज मजाक मत करिए, असल में बात यह है कि मैं आपसे।
1: जी जी जी, क्या?
0: देखिए शील जी, अगर आप बीच में यूं ही टोकते रहीं तो मैं आपसे जो आज कहने का फैसला करके आया हूँ कह ना पाऊंगा। मुझे यूं ही ये बात कहने की हिम्मत बटोरने में इतने दिन लग गए, साय के समान आपका पीछा करता रहा पर आपसे भूल न सका। अब आप प्लीज उधर को मुंह कर लीजिए ना, जिससे मैं एक बार आपसे कहकर अपना जी तो हल्का कर लूं।
2: जी बहुत भारी है क्या?
0: शील जी प्लीज आप उधर देखिए ना। खैर कोई बात नहीं, आप नहीं देखती तो मैं ही इधर देख लेता हूँ और कहता हूँ। शील जी मैं मतलब आई मतलब मैं मतलब आई लव यू।
1: लेकिन क्यों?
0: क्यों क्यों क्या? राजा आपको क्यों लव करता है जी?
1: पता नहीं
0: तो आप उसे क्यों लव करती हैं जी?
1: क्योंकि वो मुझे बहुत लव करता है।
0: तो मैं भी तो आपको बहुत बहुत मतलब वेरी वेरी मच लव करता हूँ।
1: वो बहुत बहादुर है।
0: आपको मेरी बहादुरी पे शक है क्या?
1: पर वो बहुत वफादार, बहुत लॉयल है।
0: और मैं वफादार नहीं, मेरी लॉयल्टी पे शक है आपको? तो इम्तहान ले लीजिए, अपने राजा से एक बार मिलवा तो दीजिए, जरा मैं भी तो देखूं मैं उससे किस बात में कम हूँ।
1: वो मेरा हर हुक्म मानता है।
0: आप मुझे भी कोई हुक्म देकर देखिए।
1: देखो?
0: देखिए।
1: अच्छा देखूंगी।
0: शील जी आपके महबूब आपके कमरे में है क्या, मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ?
1: शौक से जाइए, मगर जरा संभल के जाइएगा, बड़े बड़े पहलवान भी उनसे डरते हैं।
0: आप फिक्र न करिए शील जी, वो कट लगाऊंगा कि मेरी गेंद उठाए ना उठेगी। और फिर शील जी अगर मैं मर भी जाऊं तो क्या, कम से कम आपको मेरी बहादुरी का यकीन तो आ जाएगा।
1: तो जाइए, कमरा खुला है।
0: कमरा खुला है लेकिन लेकिन आप साथ नहीं चलेंगी क्या?
1: हाय राम, आपको मेरे साथ उसने देख लिया तो आपकी जान पर बन आएगी। वो बहुत जेलस है। अच्छा। वैसे मेरी जरूरत पड़ी तो आ जाऊंगी।
0: कोई बात नहीं बहुत अच्छा, तो मैं ही जाता हूँ। आपके कमरे में जाने की इजाजत तो है ना?
1: मेरे कमरे में जाने की इजाजत तो राजा ही दे सकता है।
0: ये बात है, तो हो जाए आज फैसला। मेरी महबूबा के महबूब ने ललकारा है, मौत बेहतर है जिसे जिंदगी ने मारा है। अरे शील जी मैं जाता हूँ।
1: जाइए।
0: ओ माय गॉड, ये राजा इनका महबूब। सच में शील जी, ये कुत्ता तो बहुत हैंडसम है, बहुत बहुत ही हैंडसम, मुझसे भी ज्यादा, बहुत बहादुर है, बहुत वफादार है। शील जी आपने एक काम बड़ा अच्छा किया जो इसे चेन में बांध रखा था, नहीं तो ये तो सचमुच मेरे फाड़ गया।
1: राजा राजा बी क्वाइट, चुप हो जा मेरे राजा। देख लिया मेरे राजा को?
0: देख तो आया आपके राजा को, पर शील जी मतलब आप मतलब समझ गई ना?
1: समझ तो गई, पर आप मेरे राजा को मुझसे अलग तो नहीं करेंगे?
0: कभी नहीं कभी नहीं, तुम मेरी महबूबा हो, वो तुम्हारा महबूब सही। खुशी महबूबा की अपनी खुशी बना दूंगा, उनके महबूब के यानी कुत्ते के कदमों पे सर झुका।
3: उनके महबूब, अभी आपने विमला रैना की लिखी ये नाटिका सुनी, निर्देशक थे लोचन बख्शी। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए सुनिए सलमान खान श्रेया घोषाल की आवाजों में उस गीत को जिसे लिखा है कुमार ने। संगीत है मीत ब्रदर्स अनजान का और फिल्म का नाम है किक।

0: सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहित चौहान, तरन्नुम मलिक और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार हैं कौसर मुनीर, संगीत है सोहिल सेन का और फिल्म का नाम है एक था टाइगर।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आइए सुने शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत। संगीत है शांतनु मोइत्रा का, फिल्म का नाम है पीके।
1: बिन पूछे मेरा नाम और पता,

कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत है A.M. तुरास का, संगीत है संजय लीला भंसाली का, फिल्म का नाम है पद्मावत। नाम एक बार फिर सुनिए, इस गीत को लिखा है A.M. तुरास ने।

साथियों, चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं सिद्धार्थ महादेवन और शिल्पा राव की आवाजों में। गीत को लिखा है समीर अंजान ने और फिल्म का नाम है धूम 3।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक अब समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1000

0: 600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता e-migrate platform से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता e-migrate platform में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष

0: ऑनलाइन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
2: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्य प्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सस में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए मैं सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है राजकुमार।

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और

0: पर आ गए कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में वो नगमा जिसे लिखा है शवांद रिजवी ने। तर्ज है ओपी नैयर की, फिल्म का नाम है हम साया।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

अगला गीत है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, नगमा निगार हैं राजा मेहंदी अली खां, संगीत है मदन मोहन का, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। नगमा निगार हैं साहिर लुधियानवी, संगीत है रोशन का और फिल्म का नाम है बहू बेगम।

ये है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी। यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में।

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में, पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954 अचानक कल्याण जी वीर जी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीरजी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं आए थे।

0: हमको भी तुमसे है प्यार, रुमाल हमें दे के जाना।
1: सन 1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

उपकार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहाँ से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

सिने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं।

ढोल, ताशे और बांसुरी और साथ में ग्रुप वायलिन, सब कुछ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनूठा और निराला है।

कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले हिंदी ओजी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊंगा। तो हमने सोचा कि ये उनको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी ऐसी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गाना मन्ना डी जी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

فيلم سفر.

ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्या होगा हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूंगी कि आपके मुंह से ये गाना सुनूं। तो हमने उनको म्यूजिक हॉल पे बुला लिया, तो एक दफे सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफे उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफे जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे। प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत। ढोल बजा

चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।

0: फिल्म समझौता।
1: समझौता कमों से कर लो जिंदगी में,
2: समझौता कमों से कर लो जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। मैं बोला किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। बोला गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को आप करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफी उलझने कम हो जाती है।

आपको ये जानकर अचरज होगा कि कल्याण जी आनंद जी की इस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1974 में ये फिल्म थी कोरा कागज। कल्याण जी आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।

कल्याण जी आनंद जी की ये जोड़ी टूट गई है। टूटना शायद आपको सही शब्द ना लगे, ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं हैं, लेकिन आनंद जी हैं और है इस जोड़ी का अनूठा संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है और फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, लगता है तुझे चाहा। और शायद यही तो प्रेम की सच्ची और मासूम परिभाषा होती है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नजर, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है।

चलो वे एक ऐसा संसार बुने जहां सिर्फ प्यार की बारिश होती हो, झीलों पर एक हाउस बोट हो जहां गुजर जाए पूरी जिंदगी, जहां सुबह सुबह हाउस बोट की खिड़की पर कोई धर जाए फूलों की टोकरी, एक ऐसा जहां हो जहां सुबह खिले मुस्कानों के साथ, जहां प्यार भरी गुफ्तगू से नरम धूप खिल जाए, जहां सपनीली आंखों से आसमान की ओर देखें तो शाम खुशगवार हो जाए, मुस्कुराएं तो चांद खिल उठे।

जरा सी बात कहनी थी कि प्यार है तुमसे, पर सदी बीत गई, जुबान से शब्द नहीं फूटे, नहीं कह पाए प्यार है तुम्ही से। पलकों की पंखड़ी में ही बंद रही प्यार की पोटली, शायद सच्चे प्यार की यही है परिभाषा। वो प्यार ही क्या जिसका बार बार बखान किया जाए, वो याद ही क्या जिससे प्यार ना हो, वो याद ही क्या जो हर वक्त दिल के करीब ना हो।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। बंद लिफाफे की तरह है सच्चा प्यार, लिफाफा खुलते ही आंखों को दिख जाती है कागज पर लिखी इबारत। मन की किवाड़ का सांकल खटखटाते ही खुद को खबर हो जाती है कि मन प्यार की गिरफ्त में है। प्यार का वही जमाना भला था जब चुपके से होता था प्यार, पलकों के भीतर रेशमी ख्वाब की तरह बंद, छुई मुई की तरह नाजुक होता था प्यार का वो जमाना। जमाना कोई भी हो, प्यार में इंतजार, समर्पण, किसी के लिए मर मिटने की तड़प हमेशा बाकी रहती है। प्यार में इंतजार बड़ा ही मीठा लगता है।

ढलते हुए रात से गुफ्तगू, चांद का सफर जारी है। चांद का मुस्कुराना उस रोज भी कुछ ऐसा ही था जब हुई थी मुलाकात उनसे। तारों की ओढ़नी पहनकर रात निकल पड़ी थी सैर पर। खूबसूरत हो रात, मनमीत हो साथ, तो बस जिंदगी में और क्या चाहिए।

आंसू और मुस्कान से मिलकर बनती है जिंदगी, पर दिल नहीं मानता। मुस्कानों को अपना हमसफर बनाकर उसी के गले लगना चाहता है, पर कभी कभी आंसू की लड़ियां भी दिल को सहलाती हैं। कई बार ये यादों की घाटी में ले जाकर खुली हवा में छोड़ देती हैं, जहां लम्हों के बेहिसाब फूल होते हैं, जिन्हें छूकर हम हौले से मुस्कुरा देते हैं। आंसू और मुस्कान से बनी जिंदगी से फिर से बे इंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं।